हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरंजनी में अभी आप सुन रहे थे प्रभाकर नारायण पाठक का राग भैरव में ध्रुपद गायन। पखावज पर साथ दे रहे थे राहुल भट्टाचार्य। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुति

या शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एम्फसाइज्ड द नीड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन 2.0 एंड अंडरलाइन दैट द मिशन शुड मूव बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड इंश्योर मेजरेबल आउटकम्स थ्रू रेगुलर मॉनिटरिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड कन्वर्जेंस बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स। चेयरिंग द 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली, मिस्टर मोदी आस्क्ड स्टेट्स टू एक्सपेडाइट द कम्प्लीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड गोबर्धन प्लांट्स। During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including Russian transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Russian Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees at central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
2: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
1: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
0: यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान विल इनॉग्रेट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2026 इन न्यू दिल्ली टुडे। द टू डे प्रोग्राम इज एम्ड एट डिलिबरेटिंग स्ट्रेटजीज फॉर द फोर्थ कमिंग खरीफ सीजन विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एनहांस प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग एंड फार्मर prosperity. Union Home Minister Amit Shah will be on a visit to Gujarat today. During his visit, the minister is scheduled to inaugurate and lay the foundation stones of nearly a dozen public utility, education and rural infrastructure projects in Ahmedabad and Gandhinagar districts. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has rejected the allegations regarding the award of exam evolution contract to Hyderabad-based educational technology company Coempt EduTech. In a social media post, the CBSE said that the allegations are erroneous, misleading and not based on facts. The board said that it has followed the General Financial Rules Protocol scrupulously in the awarding of the contract to the agency. The West Bengal government has handed over 142 acres of land to the BSF for setting up outposts and barbed wire fencing infrastructure along the India-Bangladesh border. The handover is part of the BJP government's decision, taken at its first cabinet meeting on May 11th, to transfer 600 acres of land within 45 days for border fencing and related infrastructure projects. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has arrived in Cyprus to participate in the informal meeting of the EU Foreign Affairs Ministers, Gymnich. In a social media post, the External Affairs Minister thanked Vice President of the European Commission, Kaya Kallas, and Foreign Minister of Cyprus, Dr. Konstantinos Kombos, for the invitation. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminator match in New Chandigarh last night. Rajasthan Royals set the target of 244 runs against Sunrisers Hyderabad. In reply, Sunrisers Hyderabad could score only 196 runs in 19.2 overs. Vaibhav Suryavanshi has been adjudged as the player of the match. Eid-ul-Zuha, also known as the Festival of Sacrifices, being celebrated across the country. The holy occasion honors Prophet Ibrahim's absolute faith and is marked by the ritual of Qurbani. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion of Eid-ul-Zuha. In her message, the president said that festival symbolizes devotion, sacrifice and selflessness. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है सुबह के 6:10 और ठीक 16 सेकेंड। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं ये प्रस्तुति सुरेश वाडेकर की आवाज़ में।

कहा जाता है कि मन शांत हो तो हर परिस्थिति सरल लगती है। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन विश्वास और धैर्य हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। जब मन ईश्वर से जुड़ता है, तब चिंता कम और आत्मविश्वास अधिक होता है।

अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे ये भजन। एक संत से किसी ने पूछा, सफल जीवन का रहस्य क्या है? संत ने मुस्कुरा कर कहा, हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो और अंत आत्ममंथन से। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों के लिए भगवान को धन्यवाद देना सीख जाएं तो जीवन और सुंदर बन सकता है। वंदना कार्यक्रम में चलिए आगे सुनते हैं ये शब्द भाई तरलोचन सिंह रागी की आवाज़ में।

इसी के साथ आज का वंदना कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब सुनते हैं चिंतन भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचारों पर।

मातृभाषा के प्रति भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम जग जाहिर है। हिंदी भाषा के विकास और जन जन के हृदय में बसाने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। एक बार वे कहीं जाने के लिए बनारस में बस स्टॉप पर खड़े थे कि तभी दो अंग्रेज वहां आए। उनमें से एक ने भारतेंदु जी से कुछ पूछा। भारतेंदु जी चुप रहे। फिर दूसरे अंग्रेज ने कुछ पूछा। भारतेंदु जी को फिर कुछ समझ नहीं आया। वे दोनों अंग्रेज वहीं खड़े रहे। भारतेंदु जी भी वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर बाद भारतेंदु जी ने सुना वे दोनों अंग्रेज भारतेंदु जी के बारे में कुछ अपशब्द कह रहे हैं और कुछ कुछ शब्द हिंदी में भी बोल रहे हैं। भारतेंदु जी उनके पास गए और बड़े आदरपूर्वक उन्होंने उन अंग्रेजों से पूछा, आप हिंदी जानते हैं? हाँ, नॉलेज रखते हैं, उनमें से एक अंग्रेज बोला। फिर आपने मुझसे हिंदी में सवाल क्यों नहीं किया? भारतेंदु जी ने उनसे पूछा। वे दोनों अंग्रेज चुप रहे। भारतेंदु जी ने अब और थोड़ी सहजता दिखाते हुए पूछा, जब आप हिंदी जानते हैं तो फिर आपने मुझसे हिंदी में क्यों नहीं सवाल किया? वे दोनों अंग्रेज फिर चुप रहे। अब की बार भारतेंदु जी एकदम मानवीय हो गए और पूरी सहजता से बोले, सॉरी सर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, बट इफ यू नो हिंदी यू शुड स्पीक इन हिंदी विद इंडियंस। दोनों अंग्रेज सीधे से दिख रहे भारतेंदु जी को गंभीरतापूर्वक देखते रह गए। भारतेंदु जी अपनी मातृभाषा हिंदी के साथ साथ संस्कृत, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी भली प्रकार जानते और समझते थे। ये सारी भाषाएं उन्होंने स्वाध्याय के जरिए ही सीखी थी। वे किसी भाषा विशेष के विरोधी नहीं थे, मगर अपनी भाषा को वे उन्नति का सबसे बड़ा आधार मानते थे। अपनी भाषा की उन्नति के लिए उन्होंने अनेक दोहे भी लिखे। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सबगुन होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोए। और एक अति लाभ यह है या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचारों पर, और अब सुनते हैं रामचरितमानस के बालकांड का भाग 69।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस के बाल कांड का भाग 69। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: आइए अब सुनते हैं समाचार। पहले संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, उसके बाद हिंदी में होंगे और फिर होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: इयं आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 51वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन संबद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां 7 महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं, ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं, गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षी बलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वें राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य तृतीयं राज्यम् अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षीबलस्य असाधारण सेवायाः, सुदृढ़ अनुशासनस्य, राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्माननं वर्तते। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एडुटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबंध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिक अंतर्जालीय पटलीय संदेशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबंध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमंत्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासं आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षी प्रमुखाणां कृते संचेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परंपरायाः आरम्भः न भवेत्,

0: निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट् क्रीडायां आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चंडीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वंद्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं सप्तचत्वारिंशत् धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं चतुश्चत्वारिंशदधिकद्विशत धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96.1% धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026

0: जिसकी उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
1: यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज डायरेक्टेड अथॉरिटीज टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स इलीगल कंस्ट्रक्शंस विद इन 15 किलोमीटर्स ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर्स एंड डिमोलिश ऑल सच स्ट्रक्चर्स दैट हैव कम अप ओवर द इयर्स। चेयरिंग अ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग इन बीकानेर, Mr. Shah assessed security-related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards and control cross-border smuggling. The West Bengal government has handed over 142 acres of land to the BSF for setting up outposts and barbed wire fencing infrastructure along the India-Bangladesh border. The handover is part of the BJP government's decision taken at its first cabinet meeting on May the 11th to transfer 600 acres of land within 45 days for border fencing and related infrastructure projects. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan will inaugurate the National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi today. The two-day program is aimed at deliberating strategies for the forthcoming Kharif season with a focus on sustainable agriculture, enhanced productivity, climate resilience, infrastructure strengthening and farmer prosperity. Eid ul-Zuha, also known as the Festival of Sacrifice, is being celebrated across the country. The holy occasion honors Prophet Ibrahim's absolute faith and is marked by the ritual of Qurbani. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion of Eid al-Zuha. In her message, the president said that the festival symbolizes devotion, sacrifice and selflessness. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminator match in New Chandigarh last night. Rajasthan Royals set the target of 244 runs against Sunrisers Hyderabad. In reply, Sunrisers Hyderabad could score only 196 runs in 19.2 overs. Vaibhav Suryavanshi has been adjudged as the player of the match. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। संगीतिका कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अंजलि भरद्वाज की आवाज में भजन। बांसुरी पर संगत कर रहे हैं विनय प्रसन्ना, सितार पर खालिद मुस्तफा और तबले पर राशिद नियाजी। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

इसी के साथ आज का ये संगीति का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने अंजलि भरद्वाज की आवाज़ में मीराबाई के भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

ना सूरज की बाहों में है रोशनी। जी हाँ, किस और यूँ कह के सांसों में भी बोल रहे हैं, जी हाँ रोशनी है। और वाकई में ये सूरज के साथ साथ हमारा भी दिन नया शुरू हो चुका है। और ये जो नया दिन होता है, एक तरह से कहें कि हमारे लिए एक और नई शुरुआत होती है, नए तरीके से अपने कामों को करने की और फिर वक्त को अपने हिसाब से मोड़ने की। और बिल्कुल मैं भी चाहूँगी कि आप लोगों की भी सुबह बहुत अच्छी हो, बल्कि हर दिन बहुत अच्छा हो। और जो सुबह की जो शुरुआत है ना, बहुत अच्छी सी होती है ना, पॉजिटिव सी, तो आप बस फुर्ती से काम करते चले जाते हैं। और यही होना चाहिए हम सब में, बिल्कुल हम स्वस्थ रहने चाहिए। और प्यारे प्यारे गीत भी आपको सुनने चाहिए। जी हाँ, हमारे साथ आप जो जुड़े हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में, गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज जैसा कि बहुत ही अच्छा दिन है, आज ईद है, तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारी ओर से। और बहुत अच्छी तरह से आपका ये त्यौहार गुजरे, और बल्कि कहें कि खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए आपके जीवन में।

ईद एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद ईद की, और बहुत ही प्यारी तरीके से आप अपना त्यौहार मना रहे होंगे। और आज के दिन तो यूँ कहें कि रौनक ही रौनक हैं घरों में, और त्यौहार तो वाकई में खुशियों का पैगाम लाते हैं, जीवन में नई नई खुशियाँ और उमंग भरते हैं। और सुबह भी हो गई है, ये भी एक समय है कि आप अपने दिन की शुरुआत कर चुके हैं, और यूँ कहें कि अपने दिमाग की बत्तियाँ भी खुल गई हैं और सोच रहे होंगे कि आज क्या क्या करने वाले हो। बहुत कुछ होता है सभी के जीवन में करने के लिए, और जैसे ही उठते हैं थोड़ा सा कभी कभी आलस आता है, और फिर झट से अपने कामों में लग जाते हैं, और यही जिंदगी है दोस्तों।

ये था अमित त्रिवेदी की आवाज़ में फिल्म अंधाधुन का ये गीत, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और वाकई बहुत ही गुड है ये मॉर्निंग, और तभी तो गुड मॉर्निंग है। और प्यारे प्यारे गीत भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि जिन्हें आप पसंद करें और एक तरह से फिर नई ऊर्जा के साथ बढ़ जाएं, जो भी आलस है उसे आप त्याग दें और बस अपने कामों में लग जाएं और अपने सपने बुने और सपनों को पूरा करने में लग जाएं। वाकई में बहुत से काम सभी को होते हैं, सुबह सुबह पूरा का पूरा एक तरह से लेखा जोखा बना लेते हैं क्या क्या करना है, हर व्यक्ति लगा हुआ है। और यही ज़िंदगी है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे, और आप बिज़ी रहें यही फ़ायदेमंद है बिल्कुल। जब कभी ही मैंने जीवन में देखा है कि जब हम खाली बैठे रहते हैं और कुछ काम नहीं होता तो बस दिमाग घूमता रहता है, इससे अच्छा होता है बिज़ी रहना, काम में लगे रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और जीवन में नई नई चीज़ें आपकी होती हैं।

शुभ घड़ी हर घड़ी शुभ होती है। बस जब भी आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, खूब एनर्जी से भर जाते हैं, तो फिर वाकई में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। यही शुभारंभ होता है हर चीज़ का, जब भी आप कोई नया काम करने वाले हों या किसी काम को और आगे बढ़ाने वाले हैं। और वक्त हो चला है कि हम इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं यहीं पर। आपसे विदा लेना चाहती हूँ मैं, आपकी दोस्त शुभा शर्मा। तो मुझे यानी दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की, पर जाइएगा कहीं नहीं, एक प्यारा सा गीत छोड़े जा रही हूँ आपके साथ। तो फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब वक्त हो चला है समाचारों को, तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
6: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
7: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा

0: में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
3: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
4: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराव और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
5: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही

0: सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के 7 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैन-उल-अक़वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाली मशरकी हिस्सों में अगले 2 दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे है। असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीक़ैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोवर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में रफ्तार लाएं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवेज, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहरी इलाकों, खासतौर पर शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फ़रोग देने के लिए रूफटॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि वाधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहाँ हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक इको निज़ाम के साथ मरबूत किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने दरिया को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट के इन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तआवुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निज़ाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुक्काम को हिदायत दी है कि मुल्क की सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गैरकानूनी तामीर के सिलसिले में कतई अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाएं और गुज़िश्ता बरसों में तामीर किए गए ऐसे तमाम ढांचों को मुनहदम कर दिया जाए। बीकानेर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद के करीब राजस्थान के सरहदी जिलों में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। वज़ारत दाखिला ने ज़िला मजिस्ट्रेट्स को ये इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सभी बैंक सरहदी इलाकों में बैंकिंग ट्रांजेक्शन की कानूनी और माली तकमील करें, बड़े कारोबारी कंपनियों की तस्दीक करें और उनके मालियाती ज़राए का पता लगाएं, फर्जी खातों यानी म्यूल अकाउंट और कंपनियों का पता लगाएं, फर्जी आधार कार्ड की शनाख्त करें और सरहद पार स्मगलिंग को रोकें। एक बयान में वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सरहदी ज़िलों को हिदायत दी गई है कि वो जराइम और मुनशियात की स्मगलिंग के ज़राए, तौर तरीक़ों और नेटवर्क का गहराई से जायज़ा लें और इस हतमी हल तलाश करें ताकि सरहदी इलाकों में इस तरह के मसले फिर से पैदा ना हों। मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर मौसूफ अहमदाबाद और गांधीनगर ज़िलों में अवामी सहूलियात से मुतालिक खिदमात, तालीम और देही बुनियादी ढांचे के तकरीबन 1 दर्जन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला गांधीनगर की कलोल तहसील से अपने दौरे का आगाज़ करेंगे और कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के इकदाम के तहत तैयार की गई अवामी सहूलियात को वक्फ करेंगे, जिनमें जेठवा गांव की झील, नौ तामीर शुदा 3 लाइब्रेरियां और प्राइमरी स्कूल की नई इमारतें शामिल हैं। शाम को जनाब शाह अहमदाबाद में प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और 16 और भीमजीपुरा भारत माता स्क्वायर माता उमिया धाम कॉम्प्लेक्स के हॉस्टल की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वजीर दाखिला आइंदा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी का जायजा लेने के लिए शाही बाग सर्किट हाउस में एक आला सतही मीटिंग में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबिना कमेटी CCEA ने PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में

0: इमदाद के लिए स्कीम सार्थक पीडीएस को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। इत्तला नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान काबीना के फैसले से मुतालिक ये ऐलान किया।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा या बकरीद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की खसूसी नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुनक़िद हो रही है। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहिम की उस अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, जब वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त और वज़ी इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ये त्यौहार खुद को वक्फ करने, ईसार और बेलौस जज्बे की अलामत है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि ये त्यौहार मुल्क के शहरियों को खास तौर पर माली तौर पर कमज़ोर अफराद के लिए इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करने की तलकीन करता है। उन्होंने आवाम से माशरे में मोहब्बत इत्तेफाक को फ़रोग़ देने के जज्बे को मुस्तहकम करने की अपील की। उत्तर प्रदेश में ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरी रियासत में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इंतजामिया ने आज बकरीद त्यौहार के खुशुसलूबी से मनाए जाने के तनाजुर में बड़े पैमाने पर इंतजामात किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लोग नज़दीकी मसाजिद में ईद उल अज़हा की खुसूसी नमाज अदा कर रहे हैं। फरीज़ा कुर्बानी नमाज के बाद अदा किया जाएगा। रियासती सरकार ने किसी भी नई रिवायत के शुरू ना होने और ममनू जानवरों की कुर्बानी ना होने देने को यकीनी बनाने के लिए पहले ही सभी ज़िला पुलिस सरबराहान को एडवाइजरी जारी की हुई है। DGP राजीव कृष्ण की हिदायत के बाद त्यौहार को पुरअमन तौर पर मनाए जाने को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने हसास इलाकों में मार्च किया। पुलिस कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे हसास शहरों में मजीद निगरानी बरत रही है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटॉक के पलजोव स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के बावकार पुलिस कलर से सरफराज करेंगी। सिक्किम ये अवार्ड हासिल करने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शिमाल मशरक की 3री रियासत होगा। सदर की पुलिस कलर मुल्क में पुलिस फोर्स की गैर मामूली खिदमात, ज़बरदस्त नज़्म व ज़ब्त और कौम के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ होने के एतराफ़ में दिया जाने वाला आला तरीन एज़ाज़ है। SSP सतह के अफसर की क़्यादत में 400 सिक्किम पुलिस एहलकारों का दस्ता सदर जमहूरिया की मौजूदगी में परेड में हिस्सा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खसूसी पहल के तौर पर यूनेस्को के आलमी वरसे के मकाम सांची स्तूबा के मुकद्दस बाकियात को मंगोलिया भेजा जा रहा है। ये बाकियात भगवान बुद्ध के दो अहम पैरोकार सरीपुत्रा और मोदगलियाना से ताल्लुक़ रखते हैं। आज इन बाकियात को पूरे एजाज के साथ भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से दिल्ली भेजा जाएगा। कल ये बाकियात आवाम के लिए नई दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में रखे जाएंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय फजाइया का खसूसी तैयारा उन्हें मंगोलिया लेकर जाएगा। ज़रात और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ से वाबस्ता ज़रात मुहिम मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस 2026 का इफ्तिताह करेंगे। दो रोज़ा प्रोग्राम में ज़रात और मुतालिक शोबों से मुतालिक मौजूआती तबादला ख्याल, रियासतवार शराकत, ग्रुप गौर वखौस जैसे अहम मामलात शामिल होंगे। ज़रात और किसानों की बहबूद की वजारत के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद पायदार ज़रात, पैदावार में इजाफा, आबो हवा में लचक है, बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और किसानों की खुशहाली पर तवज्जो मरकूज करते हुए आने वाले खरीफ सीज़न से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर वखौस किया जाएगा। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से मरकज़ी हुकूमत, रियासती सरकारों, ICAR, ज़रई इदारों और दीगर मुतालिका फरीकों को खरीफ सीज़न के लिए मरबूत कार्रवाई और कलीदी तरजीहात पर तबादला ख्याल के लिए

0: यकजा होने का मौका फराहम होगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि मरकजी और शमाल मगरबी भारत में अगले दो रोज़ के दौरान शदीद गर्मी और लू के हालात रहने की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में आज शदीद गर्मी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शमाल मशरकी भारत, बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज तेज से बहुत तेज़ बारिश की भी पेशगोई की है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने भारत बांग्लादेश सरहद पर चौकियां बनाने और खारदार बाड़ लगाने के बुनियादी ढांचे के क्याम के लिए 142.79 एकड़ आराजी BSF के हवाले कर दी है। यह हवालगी BJP हुकूमत के इस फैसले का हिस्सा है जो 11 मई को काबीना की पहली मीटिंग में किया गया था, जिसमें सरहद पर बाड़ लगाने और मुतालिका बुनियादी ढांचे के मनसूबों के लिए 45 दिन के अंदर अंदर 600 एकड़ ज़मीन की मुंतकली की गई थी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कोएम्ट एडुटेक को इम्तहानात की कॉपियां जांचने का कॉन्ट्रैक्ट देने से मुतालिक इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में CBSE ने कहा कि इल्ज़ामात गलत, गुमराहकुन और हकायक पर मबनी नहीं हैं। IPL क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 244 रन का निशाना रखा था, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 19 ओवर्स और 2 गेंदों में महज 196 रन ही बना पाई। नॉर्वे चेस के तीसरे राउंड में भारत के आर प्रगनंदा ने आलमी नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कैर्सलेन को शिकस्त दी और इस तरह उन्होंने 3 पॉइंट्स हासिल किए। इस जीत के बरक्स आलमी चैंपियन डी गोकेश को एलरिस फिरोजिया ने शिकस्त का सामना करना पड़ा। सख्त मुकाबले में हुए ड्रॉ के बाद फाइनल गेम में उन्हें इस हार का सामना करना पड़ा। प्रगनंदा अब कुल 4.5 पॉइंट्स के साथ नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में दूसरे मकाम पर पहुंच गए हैं और वो सिर्फ फिरोजिया से पीछे हैं, जो 7.5 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। अफ्रीका और अब अखबारात के आईने के साथ हैं नितिका।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के SIR अमल को दुरुस्त और आईनी करार दिया। मुल्क में शदीद गर्मी के दरमियान वजीर आजम की शहरियों से मुहतात रहने की अपील से मुतालिक खबर को भी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, शदीद गर्मी और हीट वेव के दरमियान वजीर आजम की शहरियों से तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। आज मुल्क में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाए जाने से मुतालिक खबर को तमाम अखबारों ने अव्वलियत के साथ शाई किया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हमवतनों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मुल्क में अनाज की पैदावार में रिकॉर्ड तारीखी इजाफा, 3,765.63 लाख टन का तखमीना, इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर चलेगी, ये खबर भी अखबारों में नुमायां है।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के साथ अहम प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुकाम से बैन अल-अक़वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाल मशरकी हिस्सों में अगले 2 दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। और आज पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा का त्यौहार जोश व खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का यह इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे राकेश पाठक का गायन। राग है शुद्ध।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना राकेश पाठक का गायन। राग था शुद्ध सारंग, तबले पर संगत करी थी आशीष मिश्रा ने और हारमोनियम पर जाकिर धोलपुरी। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। वस्त्र उद्योग आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो न केवल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि तकनीकी, औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में वस्त्र रसायन, सुरक्षात्मक वस्त्र, अपरंपरागत रेशे तथा वस्त्र

0: गुणवत्ता नियंत्रण जैसे प्रमुख आयाम इसकी प्रगति के आधार स्तंभ हैं। विशेष जानकारी के लिए सुनते हैं भेंट वार्ता। वस्त्र उद्योग में रसायन, सुरक्षात्मक वस्त्र, अपरंपरागत रेशे तथा वस्त्र गुणवत्ता नियंत्रण। डॉक्टर M.S. परमार, प्रख्यात वस्त्र वैज्ञानिक और महानिदेशक, उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, नित्रा से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: ये जो वस्त्र उद्योग है, इसका जो रसायन है, इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए।
2: पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थोड़ा सा पहले नित्रा से स्टार्ट करता हूँ। 1974 में हमारा ये संस्था स्थापित हुआ था उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में। उस समय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंडर में आती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसके अलावा आसपास के जितने भी टेक्सटाइल्स के घराने थे बड़े बड़े, मोदी ग्रुप और आपके बिरला ग्रुप, DCM ग्रुप, ये लोग बहुत मतलब उसमें उन्होंने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया कि हमारे इस संस्था को गाजियाबाद में स्थापित कर सके, क्योंकि आसपास के इलाकों में ये लोग रहा करते थे। इनकी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, आप तो जानते हैं मोदी मिल हुआ करती थी जिसके नाम पे मोदी नगर उस समय लगा। तो एक टाइम ऐसा था कि ये लोगों ने मिलकर यूपी गवर्नमेंट से गुजारिश की कि हमें ऐसा कोई संस्था होना चाहिए जो, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और ये इंडस्ट्रीज वालों ने, इन्होंने मिलकर ये संस्था का निर्माण किया और 1974 में ये स्टार्ट हुई। तो इस संस्था का जो मेन काम है सर, पहला काम ये है कि अलग अलग तरह से रिसर्च करना, जिसमें गवर्नमेंट जो फंड करती है या प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी फंड करती है, उसको करके कोई एक नया रिसर्च करके जो भी उसका फाइंडिंग आए उसको कमर्शलाइज करे और इंडस्ट्रीज को दे। वो तो रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट हुआ। और दूसरा हुआ कि उस समय क्या होता था, लोगों को प्रॉब्लम आती थी कई बार इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में खास करके। जैसे देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमारा कहां से काम स्टार्ट होता है, आपको फाइबर होना चाहिए जिसे कहते हैं रेशा, फाइबर से लेके फिर आपको धागा बनाना है, धागा से वस्त्र बनाने हैं और फिर उसको डाई करना है, रंगाई करना है, सब कुछ करते हुए उसे फिर फाइनली जाके गारमेंट बनता। तो ये सारा प्रोसेस में जो भी मशीन यूज होती थी, जो भी कुछ होता था, तो काफी इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम होती थी। तो हमारे यहाँ पे काफी एक्सपर्ट्स लोग हुआ करते हैं, आज भी हैं, जो इंडस्ट्रीज को जहां पर भी प्रॉब्लम आती है, धागा बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, रंगाई में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी संस्था उनको हेल्प करती है, तो हम उसे कंसल्टेंसी वर्क कहते हैं। तो थर्ड एक फिर रिक्वायरमेंट ऐसा हुआ कि अगर कोई भी आप टेक्सटाइल बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं, तो उसकी क्वालिटी कैसे देखी जाए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी लैब होनी चाहिए जिसमें क्वालिटी के बारे में सारा एनालिसिस किया जाए, उसमें देखा जाए कपड़े की क्वालिटी क्या है, धागे की क्वालिटी क्या है। तो फिर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी लैब स्थापित हुई जिसमें कि हम कपड़े की सारी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, सभी गुण उसमें चेक करते हैं और इंडस्ट्रीज वाले बहुत ज्यादा सैंपल इधर भेजते हैं, कमर्शियल टेस्टिंग भी करते हैं, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके कि कपड़े और धागे में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सारा काम भी करते हैं। फोर्थ हमने क्या किया, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आई, उन्हें स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती थी, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, तो फिर हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम से स्टार्ट किए। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इंडस्ट्रीज को देते हैं, ट्रेंड पर्सन हम देते हैं लोगों को। गारमेंट इंडस्ट्री हमारे आसपास बहुत है, गाजियाबाद के आसपास, नोएडा वगैरह जितने गुड़गांव हैं, बहुत गारमेंट इंडस्ट्रीज है, उनको रिक्वायरमेंट होती थी तो वो देने लगे। फिर उसको देखते देखते सर हमने एक कॉलेज भी अपना बनाया जिसको नित्रा टेक्निकल कैंपस के नाम से जाना जाता है, जिसमें इस टाइम हम 3 ब्रांचेस हम लेके रन कर रहे हैं। उसमें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AIML, जो हमारे लखनऊ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है।
1: पारंपरिक रूप से तो लोग जनरली जानता है कि कपास है, ऊन है, रेशम है, इससे अलग आपने किस तरह के अन्य रेशों के निर्माण के लिए कुछ प्रयास किए हैं, अनुसंधान किए हैं और उनका क्या उपयोग है?
2: सर आपने एक बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है जो इस टाइम बहुत कहते हैं बर्निंग इशू चल रहा है। हम लोग 20 साल से एक फाइबर पे काम कर रहे थे। आपने बोला कि जैसे रेशे बहुत तरह के होते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं नेचुरल रेशे, जो मतलब नेचुरल प्रकृति उससे हमें मिलते हैं, लाइक जैसे आपने कॉटन कपास का बोला, ऊन है, सिल्क है, तो इस तरह के हम उसको कहते हैं कि ये रेशे, जूट है, ये सारे रेशे हमारे नेचुरल उसमें आते हैं। उसके अलावा कुछ सिंथेटिक हैं, जैसे आपके पॉलिस्टर हुए, आपके नायलॉन हुए, ये सारे सिंथेटिक उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह के रेशे तो ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहे थे, काफी हमारे पास काम चल रहा था। तो अब क्या हो गया, एक न्यू एज फाइबर, मतलब नए तरह से नया एक फाइबर के ऊपर काम होने लगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जिसको एक स्कीम का नाम दिया गया न्यू एज फाइबर, मतलब नए जमाने का रेशा,
1: जो कि कपड़ा निर्माण के लिए सबसे प्राथमिक चीज है।
2: प्राथमिक चीज है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम क्या हो गया, हम प्रकृति के नजदीक जाने लगे हैं, हम अब धीरे धीरे वो सिंथेटिक से छुटकर हम दोबारा से अपने पुराने टाइम में आने लगे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो रेशा, जैसे आप पॉलिस्टर पहनते हैं या नायलॉन पहनते हैं, ये डिग्रेड नहीं होता, मतलब अगर आप ये पड़ा हुआ है कहीं जमीन में दबा हुआ है तो वहां रहेगा, वो खत्म नहीं होता। कॉटन का रेशा अंदर पड़ा हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, अगर वो वहां से खत्म नहीं

0: आंखा, अक, मदार, अनंत मूल, ऐसे करके कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, सब लोग जानते हैं इसको, सबने देखा है ये प्लांट कहाँ लगा होता है। तो इसको इंग्लिश में मिल्कवीड और बॉटनिकल लैंग्वेज में कैलोट्रोपिस बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो उसकी अलग अलग वेराइटीज होती है, तो कैलोट्रोपिस के नाम से जाना जाता है। 20 साल से हम इस पे रिसर्च कर रहे थे सर। और मैं थोड़ा सा इसमें एक आपको और समझने के लिए बताना चाहता हूँ, और सुनने वालों के लिए भी बहुत ईजी होगा कि क्या है ये। आपने देखा होगा कि बचपन में जिनकी एज मैं कहता हूँ 40 प्लस है, वो तो जरूर जानते होंगे कि बचपन में हम जब छोटे इधर उधर खेला करते थे तो हम देखते थे कि फाइबर उड़ा करता, जिसको बोलते थे बुड्ढी माई का बाल, हम लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते थे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो चीज है, वही फाइबर है कि इतना हल्का है कि हवा में उड़ता है, अंदर से 70% से ज्यादा खोखला होता है। तो इस फाइबर पे हमने काम करना शुरू किया, और पिछले 4 साल पहले हमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक हमें प्रोजेक्ट मिला, जिसे हम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के नाम से, NTTM के नाम से हम जानते हैं, उससे हमें प्रोजेक्ट मिला कि ठंडे इलाकों में जो हमारे सैनिक हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं, पहाड़ों पे हैं, जहाँ पे टेम्परेचर -20 -40 degrees तक जाता है, उनके लिए कपड़े बनाए जाएं, जो कपड़े हल्के भी हों और गर्म भी हों, और इंडिया से ही कोई ऐसा चीज बने, प्राकृतिक रेशा हो जो हमारे काम आए। अभी तक क्या हो रहा था, हम इम्पोर्ट कर रहे थे फाइबर उनके लिए, कपड़े इम्पोर्ट हो रहे थे उनके लिए। अब हमने कहा कि ठीक है हम बनाएंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया था, हमने उसे स्टार्ट किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत अच्छे क्लॉथ बन के आए। फिर हमने अपने यहाँ पे एक सिस्टमेटिक कल्टीवेशन स्टार्ट किया सर उस फाइबर का, जिसे मिल्कवीड फाइबर और मदार के नाम से, रंग के नाम से जाना जाता है। और उसमें सर सबसे बड़ा रोल ये रहा कि ये इतनी आगे तक प्रोजेक्ट नहीं जाता, अब तो कमर्शियल हो गया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे साथ जुड़ गई है। अगर आपने नाम सुना हो, वर्धमान ग्रुप है, वेल्सपन ग्रुप है, आपका गंगा एक्रो वूल है, बड़े बड़े ग्रुप, RSW है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं।
1: इस कार्य के लिए जो आपने किया है, जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के लिए थर्मल परतों वाला वस्त्र विकसित करना, और काफी सराहना की गई।
0: मुझे जो प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ने दिया था, जिसे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ने दिया था, तो एक मुझे छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट खरीदना था, मशीन खरीदनी थी, जिसके मुझे पास पैसे नहीं थे। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी हमारे उद्योग भवन में, टेक्सटाइल मिनिस्टर उनकी मीटिंग ले रहे थे, तो मैंने एक रिक्वेस्ट वहां भेजी, तो मुझे भी बुलाया गया। तो मैं तो टेबल था, बहुत बड़ा टेबल था, मैं लास्ट में कोने में बैठा हुआ था, तो सब मीटिंग हो गई। तो उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट किया, सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो मिनिस्टर सर ने कहा हाँ हाँ बताइए। तो मैंने कहा सर हम इस तरह के फाइबर पे काम कर रहे हैं, और ये फाइबर बहुत गर्म है, और हमने अपने यहाँ पर 3 acres में लगाया हुआ। उन्होंने मुझे बुला लिया, और उस मीटिंग में आप कहिए बहुत बड़े बड़े लोग उसमें बैठे हुए थे, हमारे उस समय के जो इसरो के चेयरमैन वो थे, प्राइम मिनिस्टर सर के जो साइंटिफिक एडवाइजर वो थे, और नीति आयोग से बहुत बड़े बड़े लोग, सब लोग उसमें बैठे हुए थे मीटिंग में। तो मैं उनके पास आया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनको वो दिखाया, फाइबर देखा, उन्होंने देखा, वो सब लोग बहुत खुश हो गए, कह रहे ये तो बहुत अच्छी चीज है, इतना हल्का और इतना गर्म देने वाला है, बहुत अच्छा है। तो मीटिंग के बाद में फिर उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया, और बुलाया सारा पूछा, तो वो जो पोजीशन थी सर, वो पॉइंट था जहां पर सब कुछ चेंज हुआ। फिर उन्होंने मुझे हर क्षेत्र में उन्होंने हेल्प करना शुरू किया, कई जगह उन्होंने गाइडेंस भी दिया, आप ऐसे करिए। फिर उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वालों को हमारे साथ जोड़ा, जो आज यहाँ तक हम पहुंच पाए। फिर लास्ट ईयर भारत टेक्स हुआ, जिसमें स्पेशल एक प्रेजेंटेशन इसकी रखी गई, मिल्कवीड की, पूरा हमने प्रोडक्ट वहां पे डिस्प्ले में रखे, और प्राइम मिनिस्टर सर के साथ में भेंट हुई हमारा, तो वो बहुत अच्छा दिन था हमारे लिए। उसमें हमारे मंत्री सर भी थे वहां पर, और मेरे साथ ही सबसे ज्यादा उन्होंने डिस्कशन किया, क्योंकि एक नया चीज थी। उन्होंने अपने अनुभव भी मेरे साथ शेयर किए कि ये तो वो प्लांट है जिसकी हर चीज मेडिसिनियल है। उन्होंने बताया इसके पत्ते को, जो हमारी माँ है जो, वो उसके पत्ते तोड़कर जब हमें चोट लगती थी या स्वेलिंग होती थी, तो वो उसको गर्म करके लगाया करती थी। उसका जो दूध है वो भी एंटी एलर्जिक है। तो उन्होंने बहुत सारे, उन्होंने फिर मुझे एडवाइस किया, सजेशन उन्होंने बताया कि आप इसरो के साथ मिलकर काम करिए, क्योंकि उन्हें भी हल्के कपड़े चाहिए होते हैं, क्योंकि उनको ऊपर जाना होता है। तो हम इसरो के साथ भी थोड़ा काम कर रहे हैं। हमने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, अब तो बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजस्थान में रूमा देवी फाउंडेशन है, बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहाँ कैश क्रॉप में तो इसका रोल बहुत बड़ा हो गया। इसमें एडवांटेज ये किसानों के लिए बहुत फायदा है। किसानों का क्या है, अभी तक कॉटन का केस में इंडिया में जो हम कॉटन लिंट जो बोलते हैं, फाइबर फॉर्म में जो रेशा फॉर्म में आता है, वो करीब हम 1 hectare में करीब हम कहते हैं 450-450 kg हमें मिलता है केवल। मतलब 1 hectare में आप मान लीजिए रफली 2.5 acres होता है सर। तो लेकिन ये जो है फाइबर 1 acre में भी आपको 300-350 kg मिल जाता है, यानी कि उससे ऑलमोस्ट ट्रिपल आपको फाइबर मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सर, एक बार लगा दो भूल जाओ, 10-12 साल तक आपका ये प्लांट चलेगा। उसमें आप तोड़िए, उसके पत्ते यूज करिए, उसके तनों से भी धागे निकलता है, रेशा निकलता है, उसको यूज करिए। अभी हमने इसमें वीगन लेदर बनाया है सर, उसका जो वेस्ट था उसको वीगन लेदर में कन्वर्ट कर दिया। उसके जो बीज निकलते हैं उसमें से ऑयल

0: चलता है जो फेस क्रीम में काम आता है। तो पूरा कंप्लीट हमने उसका प्लांट का हर चीज यूटिलाइज करने लगे, जिससे कि हमारे किसानों को एक अच्छी क्रॉप मिले, कैश क्रॉप मिले। प्लस उसके साथ साथ हमारी इसमें बहुत सारी हमारी एक तरह से लेडीज बहुत जुड़ी हुई हैं, मतलब नारी सशक्तिकरण की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं।
1: वस्त्र जो आप बनाते हैं और उसके लिए जिस तरह की एक केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजों का अंतर होता है, मतलब किस तरह से उसको बनाते हैं और किस तरह से ये उद्योग का दर्जा ले लेता है?
0: देखिए, फायर फाइटर सूट्स अभी भी इंडिया में हम बहुत कामयाब नहीं थे। ठीक है, हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, वहाँ पे फायर फाइटर्स अपने फायर फाइटर क्लॉथ पहनते हैं, लेकिन आप इंटीरियर में चले जाइए, अभी भी नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के ही लोग फायर फाइटिंग में लग जाते हैं, जिसमें उनके जान का खतरा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। इसमें हमने एक नया चीज इंडिया में फर्स्ट टाइम बनाया है, जिसको हम बोलते हैं फायर एंट्री सूट। मतलब आग के अंदर जा सकता है कोई आदमी पहन के, और वहां पर आप 2 मिनट रह के कोई भी काम है, किसी को बचाना है, किसी को उठाना है, कोई गैस कहीं लीक कर रही है उसे बंद करना है, वो करने के लिए वो एक ऐसा सूट बनाया गया है हमारे संस्था में, जो कि ये काम कर सकता है कि अंदर जाके वो कर सकता है। ये सूट अभी तक बाहर से इंपोर्ट हो रहा था, इसकी अगर इंडियन करेंसी में कहें तो ये 15 से 20 लाख रुपए का एक सूट पड़ता था। हमारी एयरफोर्स, हमारी इंडियन नेवी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा इनका रिक्वायरमेंट था। और हमारे फॉरेन करेंसी का आप कहिए कितना ज्यादा हम वेस्ट हो रहा था, क्योंकि हमें खरीदना, हमारे जान की हमें रक्षा करनी है तो हमें खरीदना पड़ता, पर वो हमने यहाँ पर बनाया है, इंडिया में ही बन गया है, और हमने इसको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी है, अब वो बना रहे हैं सूट और इंडिया में ही कर रहे हैं। तो इन सूट को बनाने के लिए हमने कोशिश किया है कि जितनी इंडिया में अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जिस तरह का मटेरियल वही उसमें यूज किया जाए, तो ये हमने फायर फाइटर सूट पे काम किया है।
1: बहुत अच्छा। और अभी गर्मी जैसी आ रही है, आग लगने की दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, कई बार तो जो हाई राइज बिल्डिंगे हैं महानगरों की, उसमें कभी भी किसी भी दिन किसी भी सीजन में आग लग जाती है, तो इस तरह के वस्त्र बहुत ही कामयाब होंगे।
0: कृषि क्षेत्र के सबसे बड़ा क्षेत्र टेक्सटाइल है, जो रोजगार देता है सर। इसमें मतलब स्टार्टिंग से एंड तक सारा, मतलब आप देखिए कि बहुत बड़ा उद्योग इसमें है, क्योंकि कपड़ा हर एक को चाहिए और हर एक कपड़ा पहन रहा है, हर चीज में कपड़े की जरूरत है। टिश्यू है वो भी कपड़े में आ जाते हैं आजकल, नॉन वोवन टिश्यू, वो भी कपड़े का पार्ट हो जाता है। डायपर्स यूज कर रहे हैं, सैनिटरी पैड्स यूज कर रहे हैं, ये सारे कपड़े के ही पार्ट हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा उद्योग है, गारमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो रोजगार के अवसर इसमें बहुत हमें मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से इसमें मिल जाते हैं।
1: निश्चित रूप से जो वस्त्र रसायन है, नए अनुसंधानों से आप लोगों ने कुछ नए रेशों का निर्माण किया है, जैसे आपने सीवीड्स की बात की है, और निश्चित रूप से आजकल सुनते हैं कि जो पराली से भी कोई रेशा निकालने की बातचीत की जा रही है, ताकि उसका उपयोग किया जा सके, वो भी कार्य आपके अनुसंधान चल रहा है। इस सबसे निश्चित है कि एक पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित जो वस्त्र बनने शुरू हो जाएंगे, और इस उद्योग को जितनी मजबूती मिलेगी, यह देश को आर्थिक और तकनीकी विकास में तो योगदान देगा ही, साथ ही विकसित भारत के स्वप्न को बहुत जल्दी पूरा कर लेगा। डॉक्टर MS पारमार जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी वस्त्र उद्योग के बारे में, उसके रसायन के बारे में, और उससे जुड़े हुए जो एक विज्ञान है उस सब के बारे में, उसके उद्योग से जुड़े हुए जो अवसर हैं, इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: वस्त्र उद्योग में रसायन, सुरक्षात्मक वस्त्र, अपरंपरागत रेशे तथा वस्त्र गुणवत्ता नियंत्रण, अभी आप डॉक्टर MS परमार, प्रख्यात वस्त्र वैज्ञानिक और महानिदेशक, उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ नित्रा से दिलीप झा की ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: उद्योग पत्रिका।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। इस समय 9:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

राम मिट्टी दी महक लै के मैं हाजिर हाँ शमिंदर कलेर। अज दे इस प्रोग्राम च असीं सुणांगे डिजिटल इंडिया योजना विषय ते वार्ता ते इस तों इलावा कुछ लोक गीत भी सुनवाए जाणगे। जिवें कि तुहानू पता ही है ते तुसीं वेख भी रहे हो ते झल भी रहे हो, ओ है अंतां दी गर्मी। इस गर्मी दी मार ने हर किसी का घरों निकलना मुहाल कीता पिया है। बिना एसी तों असीं रह ही नहीं सकते। घरों एसी चों निकलदे हाँ दफ्तर ते गड्डियां विच वी एसी लग्या होया है। असीं एसी तों बिना एक पल भी नहीं रह सकते। धरती दी तपश इन्नी ज़्यादा वध चुकी है कि असीं इस गर्मी नूं बर्दाश्त नहीं कर सकते। धरती दी इस तपश नूं जे कोई घट कर सकदा है तां ओह ने रुख बूटे। साडे जीवन च इन्हां रुखां दा इन्ना महत्व है कि इन्हां तों बिना तां असीं किसे दे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। रुख बूटे सानू फल फ्रूट अनाज ते होर कई नेमतां नाल नवाजते ने। ये बेजबान पशु पंछियां जानवरां दे रहण बसेरे ने, पर लगातार आबादी वधन दे कारण ते जंगलां दी निरंतर कटाई दे कारण कंक्रीट दे जंगल खड़े हो रहे ने। इस दे नाल ही एसी अते फ्रिजां चों निकलण वालियां क्लोरो फ्लोरो गैसां साडे वातावरण नूं गंदला ते प्रदूषित कर रहियां ने। रुख बूटे ही ने जो साडे वातावरण नूं सुंदर ते साफ सुथरा रखण च अहम रोल अदा करदे ने। कुदरत वल्लों बणाए इन्हां फुल बूटियां ते रुखां दी तुलना किसी भी चीज़ दे नाल नहीं की जा सकती। साडे लोक गीत भी इन्हां फुल बूटियां दी सिफत तो सखणे नहीं। ते गायकार नरेंद्र बीबा भी वगदी ए रावी माहीवे विच दो फुल पीले च कुदरत दे नज़ारियां बारे दस रहे ने। ते आओ फिर सुणदे हां इस लोक गीत नूं।

0: लोक गीत तुसी सुन रहे सी नरेंद्र बीबा दी आवाज़ च ते लोक गीत सुन तो पहला असी गल कर रहे सी रुख बूटियां दी। रुख बूटियां तो बिना तो इस धरती ते किसी दा भी रहना संभव नहीं। रुख बूटे सानू वन सवनिया नेमतां देण दे नाल नाल सानू ठंडियां ठंडियां छावां ते हवावां दे नाल नाल मीह ठंड हनेरी तो बचाउण च भी अहम रोल अदा करदे ने। ए रुखी ने जो हड़ां दी मार ते पानी नू अपने अंदर जज़ब कर लैंदे ने। इसलिए रुखां नू कट्टण वल ज़्यादा जोर देण दी बजाए ज़्यादा तो ज़्यादा रुख बूटे लाओ ते कुदरत नू बचाओ। वातावरण नू बचाउण च दरख्त ते जंगल वड्डी भूमिका निभाउंदे ने ते धरती विचला पानी भी तां ही बरकरार रह सकेगा। सो मर्जी हुण तुहाडी है कि तुसीं अपनियां आउण वालियां पीढ़ियां लई की छड्ड के जा रहे हो। इसलिए ज़्यादा तो ज़्यादा पौधे लगाओ। सिर्फ पौधे लगाउण तक ही सरन वाला नहीं सगों उन्हां दी देखभाल भी बहुत जरूरी है। जिवें तुसीं अपने बच्चियां दी पालना करदे हो उस तरह इन्हां रुख पौद्यां दी देखभाल करो। कुदरत नाल प्यार करोगे तां कुदरत भी तुहानूं बदले च कई बेशकीमती तोहफे देवेगी। ते अज दा युग है भी डिजिटल करन दा। ते आओ हुण सुणदे हां वार्ता डिजिटल इंडिया योजना विषय ते ते वार्ताकार ने सरबजीत सिंह।
1: आधुनिक युग नूं डिजिटल युग कहा जांदा है। अज दा मनुख मोबाइल इंटरनेट अते कंप्यूटर तो बिना अपनी जिंदगी दी कल्पना भी नहीं कर सकदा। संसार दे विकसित देश डिजिटल टेक्नोलॉजी दी मदद नाल तरक्की दे नवे रिकॉर्ड बना रहे हन। भारत भी इस दौड़ विच पिछे ना रहे इस लई भारत सरकार वल्लों डिजिटल इंडिया योजना दी शुरुआत कीती गई। यह योजना 1 जुलाई 2015 नूं शुरू कीती गई सी। इस दा मुख उद्देश भारत नूं डिजिटल तौर ते मजबूत बनाउणा अते हर नागरिक तक टेक्नोलॉजी दी पहुँच यकीनी बनाउणा है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं सगों एक वड्डा सुपना है जिस राही भारत नूं आधुनिक पारदर्शी अते टेक्नोलॉजी समर्थ देश बनाउण दी कोशिश कीती जा रही है। इस योजना ने पिंडां अते शहरां विचकार डिजिटल फर्क नूं घटाउण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल इंडिया दा अर्थ है भारत नूं डिजिटल सहूलतां नाल जोड़ना, सरकारी सेवावां नूं ऑनलाइन मुहैया करवाउणा, लोकां नूं इंटरनेट नाल जोड़ना अते टेक्नोलॉजी दी मदद नाल देश दे विकास नूं होर तेज़ करना इस योजना दा मूल महत्व है। इस योजना दा नारा है पावर टू एम्पावर, अर्थात लोकां नूं टेक्नोलॉजी राही मजबूत बनाउणा। डिजिटल इंडिया योजना दे कई महत्वपूर्ण उद्देश हन। सब तो पहला गल करदे हाँ डिजिटल ढांचा तैयार करन बारे। इस दा उद्देश भारत दे हर पिंड अते

लोग गीत तुसीं सुन रहे सी गायका नरेंद्र कौर ते प्रकाश कौर दीआं आवाज़ां च। आस है कि मिट्टी दी महक प्रोग्राम तुहानू पसंद आया होवेगा। इस दे नाल ही मिट्टी दी महक प्रोग्राम दा समां हुण खत्म हुंदा है। हुण शिवेंद्र कलेर नूं इजाज़त दिओ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली

0: महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्र ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। न्यायालय ने ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
2: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हम राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power

और मीठी मुस्कुराहटों से भरा ये खास मौका आप सबकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत लेकर आए, ये ही दुआ है हमारी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी के इस खास और दिल के बेहद करीब कार्यक्रम आपकी पसंद में। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट दुर्गेश सारस्वत और अगले एक घंटे तक हम साथ रहेंगे गीतों, यादों, मुस्कुराहटों और आप सभी के प्यारे प्यारे संदेशों के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, त्यौहार सिर्फ मिठास ही नहीं लाते, ये दिलों को करीब भी ले आते हैं। और जब भी बात ईद की हो तो फिर मोहब्बत, अपनापन और दिल से निकली दुआओं का रंग और भी गहरा हो जाता है। तो चलिए इस खूबसूरत मौके को और हसीन बनाते हैं कुछ लाजवाब गीतों और आपकी पसंद के साथ। दोस्तों, ज़िंदगी कितनी भी अजीब हो, कभी सुबह की चाय की तरह हल्की फुल्की लगती है, कभी पुराने गीतों की तरह भावुक लगती है और कभी दोस्तों की महफिल की तरह शोर भरी और खुशगवार लगती है। और इसी ज़िंदगी के हर रंग को और भी खूबसूरत बनाते हैं हमारे ये पसंदीदा गीत। तो क्योंकि ईद का मौका है और क्यों ना हम एक और ये बहुत प्यारा सा, मेरे दिल के बेहद करीब एक जो गीत है, इसको सुनते हैं और आनंद लेते हैं।

दोस्तों कुछ गीत ना दिल को इतना सुकून देते हैं, जैसे कि धूप में किसी घने बरगद की छांव हो। बिल्कुल इसी तरह का यह गीत है, मन को बहुत बहुत शांति देता है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने संदेशों का दौर शुरू करते हैं। दोस्तों वक्त हो गया है हमारे श्रोताओं के प्यारे प्यारे संदेशों का। हमें लगातार मैसेज मिल रहे हैं और यकीन मानिए हर संदेश में एक अपनापन छुपा होता है। लीजिए पढ़ते हैं हम आपका पहला संदेश। आया है प्यार भरा आदाब, आपकी पसंद का सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए। शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना, ये मैसेज हमें मिला है। अगला मैसेज हमें आया है नीतू मल्होत्रा जी का, खैल बाजार पानीपत से। नरेश मल्होत्रा, नीतू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से। इन्होंने हमें तेरी गलियों में ना रखेंगे गीत की फरमाइश की है। जी हाँ, हम आपकी फरमाइश को अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। आप बने रहिए हमारे कार्यक्रम में अपने उपस्थिति के साथ। अगला संदेश हमें मिला है हरजिंदर सिंह भाटिया, इंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया जी का, आदरणीय

जयपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान जी ने हमें ये संदेश भेजा है। इसके अलावा हमें संदेश मिला है मुकेश बत्रा जी का, हाय प्लीज़ प्ले एनी सॉन्ग ऑफ कनेरा मोहल्ला पटियाला से, इन्होंने हमें ये संदेश भेजा है। इसके अलावा संदेश मिला है हमें सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, कंचन कुसुम प्राची और प्रवीण पुजारी जी का, इन्होंने भी हमें किसी भी गीत में शामिल करने की फरमाइश रखी है। इसके अलावा हमें बहुत सारे संदेश मिले हैं। एक संदेश मिला है हमें आज निर्माता ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों का ये संदेश हमें मिला है। इसके अलावा निसार अली जी हमें भेजते हैं संदेश, प्रस्तुतकर्ता जी को प्यार भरा नमस्कार, बड़ी मेहरबानी होगी कोई भी गीत सुना दें। ये संदेश हमें भेजा है धनौरी तैलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया, आयान बाबू और लिखते हैं आपका पल खुशियों से भरा हो। जी हम भी यही चाहते हैं कि आपका ये जो त्यौहार है वो भी खुशियों से भरा रहे और आपका जो दिन हमारे साथ बिताया जाए वो बहुत ही खास हो। इसीलिए हम कोशिश करते हैं आपके संदेशों को और आपकी फरमा

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कहाँ जा रहे हो? महफिल की रौनक खत्म हो जाएगी तुम्हारे चले जाने से।
5: गरीब अमीरों की महफिल की रौनक नहीं, हमेशा तमाशा बना है।
4: ठहरो नी,
6: तो श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, सबसे अलग होते हैं वो गीत, महसूस किए जाते हैं और जब दिल से निकली आवाज़ दिल तक पहुंच जाए तो वही गीत हमेशा के लिए हमारे हो जाते हैं। वैसे ही हमारी भी लिस्ट में कुछ गीत ऐसे शामिल हैं जो आपके दिल तक पहुँचते हैं और आप ही के दिलों से निकलते हैं, आप ही की पसंद के थ्रू हम अपने कार्यक्रम में इन गीतों को शामिल करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे संदेश आते जाते हैं और हम आपके संदेशों को अपने कार्यक्रम में शामिल करते जाते हैं। इसी तरह एक और संदेश हमारे पास आया है, लिखते हैं, नमस्कार बहना जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ईद मुबारक। किसी का बुरा सोचे बिना उसका भला करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मैसेज हमें भेजा है चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा जी ने, बिमला अनेजा जी ने। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत से संदेश के साथ। अगला मैसेज हमें मिला है किशन वंजानी जी का, लिखते हैं, मुझे तो बसंत ऋतु का मौसम अच्छा लगता है। गीत मौसम मौसम लवली मौसम जैसे गीत हमें पसंद हैं। ये किशन विजानी वंजानी, नीलम स्वाति और किशोर, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से हमें इन्होंने ये मैसेज भेजा है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज हमें मिला है जय जितेंद्र जी, जिनेंद्र जी सॉरी, कैसे हो आप, खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। ये मैसेज मालियान सरधना मेरठ से हमें भेजा है। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन ने हमें मैसेज भेजा है। इसके अलावा अगला मैसेज हमें मिला है इंदिरा नगर भवरपुर से, राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा, जगदीश देवांगन जी ने हमें कुर्बानी फिल्म की फरमाइश की है, कुर्बानी फिल्म से किसी भी गीत को सुनाने की फरमाइश की है। इनकी फरमाइश का हम ज़रूर ख्याल रखेंगे और अपने कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगला मैसेज हमें मिला है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना और केशव रिधान खुराना जी का। लिखते हैं, प्रिय होस्ट दुर्गेश सारस्वत जी नमस्कार, यही साथी यही मीत, दर्द काटे गीत संगीत, हम भी रेगुलर कनेक्ट हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने प्यारे से मैसेज के लिए। और अगला मैसेज मिला है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी का। ये भी हमें किसी भी गीत में शामिल करने की फरमाइश कर रहे हैं। जी आपकी फरमाइश को हम अपने सर आँखों पर रखते हैं और कोशिश करते हैं आपको बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनाते रहें। तो इसी तरह आनंद लीजिए एक और प्यारे से गीत का।

तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर गीत और इतनी खूबसूरत इस गीत की शुरुआत, इतना सुकून है ना इस गीत पे कि बस दिन बन जाता है इसे सुन के, और ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहें इस तरह के गाने। क्या ही बात है, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर कार्यक्रम आपकी पसंद, और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी तुर्केश सारस्वत। तो चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने संदेशों का सिलसिला जारी रखते हैं। अगला संदेश हमें मिला है, लिखते हैं, नमस्कार, अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल करें, मैं इंतज़ार में हूँ, धन्यवाद। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से यह हमें संदेश मिला है। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और फरज जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करें और हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दें। जी, बहुत बहुत, हमने आपको अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। कार्यक्रम आपकी पसंद, आदरणीय मैडम दुर्गेश जी नमस्कार, क्या हमारा नंबर भी आएगा? बड़ी शिद्दत से प्रोग्राम सुन रहे हैं और कार्यक्रम के शुरू में ही मैसेज भेज दिया था। अब तो एक नज़र हम पर भी ज़रा गौर फरमाइए। ये संदेश हमें भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार जी ने। आपके जो संदेश है ना, हमें मिलते रहते हैं प्यारे प्यारे से, इनसे मतलब ऐसा जुड़ाव सा हो जाता है कि आपके अगर ये संदेश हमें ना मिले अपने कार्यक्रम में सुनने के लिए तो हमारा कार्यक्रम कुछ अधूरा सा लगता है। इसी कड़ी में अगला संदेश हमें मिला है, प्रेम पूर्वक आदाब, हमें भी शामिल करें, धन्यवाद, आप प्रोग्राम अच्छा पेश कर रही हैं। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हमें सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम जी ने हमें ये संदेश भेजा है। लिखते हैं, किसी भी गीत में हमें शामिल करें। देखिए, जो आपके संदेशों में जो गीतों की फरमाइश होती है, हम कोशिश करते हैं अपने कार्यक्रम में आपके गीतों की फरमाइश को शामिल करने के लिए। कई बारी क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे गीतों की फरमाइश होती है तो बहुत सारे गीत छूट भी जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम दिन ब दिन आते जाते हैं, हम कोशिश करते हैं आपके सभी गीतों को अपने कार्यक्रम में शामिल करें। तो कृपया इस बात को दिल पे ना लें और हमें अपने संदेश भेजते रहें, बिल्कुल इसी तरह।

दोस्तों, वक्त ना कितनी भी तेज़ी से बदल जाए, लेकिन अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते। बस उन्हें सुनने का अंदाज़ बदल जाता है। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने अगले गीत की तरफ। उससे पहले आपके संदेश। हर रोज़ हम फरमाइश करते हैं पर शामिल नहीं होती, जबकि हम पुराने श्रोता हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ कुछ समझ नहीं आता, क्या करें? ये मैसेज भेजा है हमें उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका कोरवाल जी ने। अब हमने आपका जो मैसेज है उसे शामिल कर लिया है। आप बिल्कुल भी नाराज़ ना हो। अगला संदेश हमें मिला है आदरणीय प्रसारक जी को प्यार भरा नमस्कार। फिल्म होटल से हमें गीत सुनवा दीजिए। पांडर कवड़ा, जिला यवत माल, महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनुश्री बुरांडे, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ये संदेश भेजा। इसके अलावा हमें संदेश मिला है, इसके अलावा हमें ये संदेश भेजा है सप्रेम नमस्कार जी, मैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और पूजा वर्मा जी ने हमें संदेश भेजा है। और संदेशों की लिस्ट में अगला नाम है रविंद्र मोहन दास। कोई भी गीत सुनवा दें। किशनगंज बिहार से आशा देवी और रविंद्र मोहन दास जी ने हमें ये संदेश भेजा है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम पेशकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की आपकी पसंद बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोई भी सॉन्ग हमें शामिल, किसी भी सॉन्ग में हमें शामिल कर लीजिए। ये संदेश हमें मिला है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी जी से। अगला संदेश हमें मिला है, ये संदेश हमें मिला, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठर, डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती पूजा प्रसाद यादव, सोनल यादव, बेवी सिया यादव, जालना शहर से। आपके संदेश हमें लगातार मिलते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं आपके संदेशों को अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार हमें देते रहिए और हमारे साथ बस यूं ही जुड़े रहिए। इसी गीत के साथ आगे बढ़ते हैं।

तो बस दोस्तों, इसी मुस्कान और इसी प्यारे साथ के साथ आज का ये सफ़र यहीं तक। आपके मैसेज, आपका प्यार और आपकी पसंद हमारे इस कार्यक्रम को और भी खास बना देते हैं। मैं हूं दुर्गेश सरस्वत, आपसे इजाज़त चाहती हूं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और गीतों से दोस्ती बनाए रखिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल। और आपसे कुछ ही क्षणों में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्र सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 30रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। न्यायालय ने ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। बकरीद पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने कहा है कि नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जानी चाहिए। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. President Draupadi Murmu conferred the prestigious President's Police Colour to the Sikkim Police today. The Alankaran Parade was held at the Paljor Stadium in Gangtok. Sikkim has become the 15th state of the country and 3rd from northeast to receive this award. Addressing the event, President Draupadi Murmu urged the police force to be more citizen-centric.
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
4: The President's Police Colour is the highest ceremonial honour awarded to a police force in the country in recognition of exceptional service, unwavering discipline and dedication to the nation. Union Home Minister Amit Shah will be on a visit to Gujarat today. During his visit, the minister is scheduled to inaugurate and lay the foundation stones of nearly a dozen public utility, education and rural infrastructure projects in Ahmedabad and Gandhinagar districts. Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometers of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security-related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. At least 8 people were killed across northern and eastern parts of Bihar following a wave of severe thunderstorms, lightning strikes and hailstorms. According to official reports, Khagaria and Muzaffarpur districts recorded 2 fatalities each, while Munger, Bhagalpur, East Champaran and West Champaran reported 1 death each. Chief Minister Samrat Chaudhary expressed grief over the loss of lives and directed authorities to immediately disburse an ex gratia compensation of 4 lakh rupees each to the next of kin of the deceased. India and China reviewed the situation in both areas and expressed satisfaction with progress made in maintaining peace and tranquility. The 2 countries reviewed the situation during the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, which was held yesterday in Beijing. The Ministry of External Affairs said the 2 sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation. The festival of sacrifice, Eid al-Azha or Bakrid, is being celebrated with religious fervour and gaiety in various parts of the country today. The faithfuls are offering Eid prayers in Eidgahs and grand mosques. Eid al-Azha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion. 2-time Paralympic champion Sumit Antil shattered his own world record in the men's javelin throw F64 category at the 8th Indian Open International Para Athletics Championship 2026 in Bengaluru yesterday, producing a massive throw of 74.82 meters. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 11:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वरांजलि में अजय प्रसन्ना का बांसुरी वादन। आपके साथ तबले पर हैं उस्ताद राशिद मुस्तफा।
5: नमस्कार, आकाशवाणी के प्रसारण भवन में ये भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो है। मैं नीलम अलकानिया स्वरांजलि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल से और AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल से इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। आज हमने स्टूडियो में स्वरांजलि कार्यक्रम में आमंत्रित किया है पंडित अजय प्रसन्ना को। पंडित अजय प्रसन्ना संगीत नाटक अकादमी अवार्डी गुरु पंडित भोलानाथ प्रसन्ना के सुपुत्र और शिष्य हैं। आप बनारस घराने के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बांसुरी वादक हैं और आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। आप भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार वाले विभिन्न कार्यक्रमों में लगातार देश विदेश में प्रस्तुतियां देते आए हैं। आयोजनों की एक लंबी श्रृंखला में कुछ उल्लेखनीय नाम हैं: संकट मोचन संगीत समारोह बनारस, तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, संगीत नाटक अकादमी के कार्यक्रम, संस्कृति

0: मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रम, रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में कार्यक्रम, सिडनी म्यूजिक फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया और भी कई देशों में आप कार्यक्रम करते आए हैं। आपको 3 बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। आप भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम के समक्ष राष्ट्रपति भवन में भी प्रस्तुति दे चुके हैं। पिछले 45 वर्षों से आप संगीत की निरंतर सेवा करते आ रहे हैं। भारत गौरव सम्मान, तानसेन सम्मान, स्वामी हरिदास संगीत कला रत्न सम्मान और भी कई सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उस्ताद राशिद मुस्तफ़ा और तानपुरे पर हैं प्रिया मिश्रा। पंडित अजय प्रसन्ना आज राग गुजरी तोड़ी और एक धुन की प्रस्तुति देंगे। कलाकारों से विनम्र अनुरोध, अब स्वरांजलि की प्रस्तुति आरंभ करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाशवाणी से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा सौभाग्य कि आज स्वरांजलि में मैं अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ। आप लोग से इजाजत चाह के राग गुरजी तोड़ी।

0: आकाशवाणी के प्रसारण भवन के भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में स्वरांजलि कार्यक्रम में आज पंडित अजय प्रसन्ना ने बांसुरी वादन की प्रस्तुति दी और आपके सम्मान में ये शब्द कि सुन के ये धुन प्यारी जड़ चेतन जग सारी झूम झूम घेर बैठे मोर कौन नचाएगा बांस की बसुरिया कोई कृष्ण ही बजाएगा। आपके साथ तबले पर संगत की उस्ताद राशिद मुस्तफ़ा ने, तानपुरे पर साथ निभाया प्रिया मिश्रा ने, कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा मनीष आनंद और ओम प्रकाश का, प्रस्तुति सहयोग था आकाश गौतम और
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं।

0: घर आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, आज के इस खास दिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्रांतिकारी को नमन करते हुए जिनका नाम साहस, राष्ट्रभक्ति और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती है। उन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना गया, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, कवि और समाज सुधारक जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अंडमान सेलुलर जेल की कठोर यातनाएं हो या अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी विचार, वीर सावरकर का जीवन संघर्ष, साहस और राष्ट्र प्रेम की मिसाल रहा। उन्होंने सिर्फ स्वतंत्रता की बात नहीं की बल्कि समाज में फैली भेदभाव के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। तो आइए उनके विचारों और देशभक्ति की भावना को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए घर आंगन।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार को, फिल्म थी दूर गगन के छांव में। और दोस्तों, आकाशवाणी के 90 साल, आकाशवाणी जब गांव गांव तक पहुंचा, ज़रा एक पल के लिए सोचिए, एक छोटा सा रेडियो जो गांव को दुनिया से जोड़ देता था। जब शहरों में खबरें बन रही होती थी, तब आकाशवाणी उन्हें सीधे खेतों तक पहुंचा रही थी। किसान अपने दिन की शुरुआत मौसम के बुलेटिन से करते थे और उसी आधार पर तय होता था कि बीज कब बोना है, फसल कब काटनी है। रेडियो सिर्फ जानकारी नहीं देता था, यह सही निर्णय लेने की समझ भी देता था। दूर दराज इलाकों में जहां संसाधन सीमित थे, वहीं इसके शैक्षिक कार्यक्रम बच्चों के लिए चलती फिरती कक्षा बन जाते थे। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह, टीकाकरण की जानकारी और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम धीरे धीरे जीवन को बेहतर बनाते गए। और इसी कड़ी में एक अहम पहल हुई, 17 नवंबर 1959 को रेडियो रूरल फोरम्स की शुरुआत। इन फोरम्स में गांव के लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम सुनते, फिर उन पर चर्चा करते। कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके और ग्रामीण जीवन से जुड़े मुद्दे इनका केंद्र होते थे। इन चर्चाओं से निकले सवाल और सुझाव आकाशवाणी केंद्रों तक पहुंचते और अगले प्रसारण में उनके जवाब दिए जाते। यानी यह सिर्फ प्रसारण नहीं था, बल्कि दो तरफा संवाद की एक मजबूत कड़ी थी। और जब बात मनोरंजन की आती तो यही रेडियो बन जाता था पूरे गांव का मंच। गीत, नाटक, लोक संगीत, हर आवाज़ में अपनी मिट्टी की खुशबू। आपातकाल हो, युद्ध हो या हो प्राकृतिक आपदा, आकाशवाणी ने हमेशा सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी लोगों तक पहुंचाई। आज भले ही हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन जो विश्वास रेडियो ने बनाया वो आज भी कायम है, चाहे वो गाँव हो या शहर।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म थी प्रोफेसर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: और अब हम बात करेंगे एक ऐसी असाधारण महान भारतीय वैज्ञानिक की, जिनकी मेहनत ने पूरे देश की जिंदगी में मिठास घोल दी, डॉक्टर जानकी अम्बाल की। वनस्पति विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। एक ऐसा समय जब महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा और शोध के रास्ते लगभग बंद थे, उस दौर में उन्होंने न सिर्फ ये मुकाम हासिल किया बल्कि इतिहास भी रच दिया। उन्होंने साइटोजेनेटिक्स के क्षेत्र में गहन शोध किया और इसी शोध ने भारत को एक बड़ी सौगात दी। डॉक्टर जानकी अम्बाल ने गन्ने की एक ऐसी किस्म विकसित की, उसमें बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अधिक मीठी थी और जिनकी उपज भी बेहतर थी। उनकी इस खोज ने भारत की आयात पर निर्भरता को खत्म करने में मदद की, लेकिन उनका योगदान सिर्फ गन्ने तक सीमित नहीं था। उन्होंने बैगन और मैग्नोलिया जैसे पौधे की भी बेहतर और अधिक उपयोगी किस्मों के विकास में अहम भूमिका निभाई, जिससे खेती के साथ साथ

और समर्पण शामिल है। वो विदेश गई, वहाँ अपने शोध को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया और अपनी विरासत को सचमुच चीनी के हर दाने में छोड़ गई। उनके अद्भुत योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वे देश की अग्रणी वनस्पति वैज्ञानिकों में शामिल हुई। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने न सिर्फ पौधों का रूप बदला बल्कि देश की दिशा भी बदली। डॉक्टर जानकी अम्माल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और ज्ञान की शक्ति से एक व्यक्ति पूरे देश में बदलाव ला सकता है। तो अगली बार जब जिंदगी में थोड़ी सी मिठास महसूस हो, याद रखिएगा उसमें एक भारतीय महिला वैज्ञानिक का सपना भी घुला है।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म खट्टा मीठा से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: और दोस्तों, किताबें सिर्फ कहानियां नहीं होती, कभी आईना बनती हैं तो कभी सहारा। तो आज बात तीन ऐसी ही खूबसूरत किताबों की जो दिल और सोच दोनों को छू जाती हैं। तो पहली किताब है अक्टूबर जंक्शन, लेखक दिव्य प्रकाश दुबे। यह कहानी है उन रिश्तों की जो सही वक्त पर पूरे नहीं हो पाते। प्यार, दूरी और अधूरी मुलाकातों के बीच चलती ये कहानी बहुत ही सादगी से दिल को छू जाती है और ये हमें सिखाती है कि हर रिश्ता हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते हमें बस थोड़ा सा बेहतर इंसान बनाकर चले जाते हैं। दूसरी किताब है मुझे चांद चाहिए, लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। यह एक महत्वाकांक्षी लड़की की कहानी है जो अपने सपनों और पहचान के लिए हर सीमा पार करने को तैयार है। यह उपन्यास सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि एक स्त्री की इच्छा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय लेने की गहरी पड़ताल है। और यह किताब हमें सिखाती है कि सपने देखना जितना ज़रूरी है, उन्हें पाने की कीमत और जिम्मेदारी समझना भी उतना ही ज़रूरी है। और तीसरी किताब है आपका बंटी, लेखिका है मन्नू भंडारी। एक छोटे बच्चे की नज़र से देखा गया टूटता हुआ परिवार, बंटी की मासूमियत और दर्द रिश्तों की सच्चाई को बेहद गहराई से सामने लाता है। और यह किताब हमें सिखाती है कि बड़े लोगों के फैसले जो होते हैं अक्सर बच्चों के मन पर कितना गहरा असर डालते हैं। तो कभी प्यार अधूरा रह जाता है, कभी सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है और कभी रिश्तों की दरारें मासूम दिल को छू जाती हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो सिर्फ वक्त न बिताए बल्कि आपको थोड़ा और समझदार, थोड़ा और संवेदनशील बना दे, तो ये तीन किताबें आपके लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और हाँ, आज का दिन बहुत ही खास है। आज ईद उल अजहा यानी बकरीद के इस पाक मौके पर आप सभी श्रोताओं को ढेरों ढेरों मुबारकबाद। दुआ है कि आपके जीवन में खुशियाँ, अमन और बरकत हमेशा बनी रहे।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी बरसात की रात। और दोस्तों, बंगाल की मिट्टी से जन्मी कांथा कला समय से परे एक ऐसी परंपरा है जहां पुराने साड़ियां, धोतियां और कपड़े फेंके नहीं जाते बल्कि सहेजे जाते हैं। इन कपड़ों की कई परतों को एक साथ रखकर साधारण रनिंग स्टिच से सिला जाता है और यूं बनती हैं खूबसूरत रजाइयां, दुपट्टे और कपड़े जो सिर्फ वस्त्र नहीं भावनाओं का ताना बाना होता है। और कहते हैं कि इस कला की जड़ें बहुत पुरानी हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध के अनुयायी भी त्यागे हुए कपड़ों को सिलकर अपने दैनिक उपयोग में लाते थे, यानी सादगी और पुनः उपयोग की यह परंपरा सदियों पुरानी है। और समय के साथ इस कला में केवल टांके नहीं लगे, कहानियां भी जुड़ती गईं। पौराणिक कथाएं, कमल के फूल और तरह तरह के फ्लोरल और ज्यामितीय पैटर्न धीरे धीरे एक कपड़े पर पूरी एक कहानी, एक इतिहास, एक संस्कृति उभारने लगी। समय के साथ यह कला धीरे धीरे खोने लगी थी, लेकिन 1940 के दशक में प्रतिमा देवी, जो रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से थी, उन्होंने इस परंपरा को फिर से जीवित किया। उनके प्रयासों ने कांथा को नई पहचान दी और इसे घरों से निकालकर दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया। इन डिजाइनों में सबसे खास होता है एक सतदल पद्म, 100 पंखुड़ियों वाला कमल, जो जीवन, सृष्टि और नारित्व का प्रतीक माना जाता है। हर टांका जैसे इस प्रतीक में एक नई ऊर्जा, एक नई भावना भर देता है। आज नक्शी कांथा को GI टैग भी मिल चुका है, जो इसकी विशिष्टता और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने का प्रमाण है। यह सिर्फ कढ़ाई नहीं, यह बंगाल के महिलाओं की आवाज़ है, उनके यादें, उनके सपने और उनकी रचनात्मकता का जीवंत दस्तावेज। कांथा हमें सिखाती है कि जो पुराना है वो बेकार नहीं होता, कभी कभी वही सबसे खूबसूरत कहानी बन जाता है। और दोस्तों, आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें आपके संदेश का रहेगा इंतज़ार।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले को, फिल्म थी चोर मचाए शोर। और अब बात करते हैं कि ऐसे ट्रेंड की जो धीरे धीरे हमारे सबसे निजी खुशियों को भी कंटेंट में बदल रहा है। जी हाँ, बात हो रही है शादियों की। शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं होती, ये वो पल होता है जहाँ दो लोग, दो परिवार और अनगिनत भावनाएं एक साथ जुड़ती हैं। लेकिन आजकल ये पल कैमरे के एंगल, रील के ट्रांजिशन और परफेक्ट शॉट के बीच में कहीं खोस आ गया है। अब दुल्हा दुल्हन की एंट्री भी दिल से नहीं, रीटेक से होती है। हंसी भी असली नहीं, कैमरा ऑन है, स्माइल प्लीज वाली हो गई है। सोचिए, क्या हर आंसू, हर मुस्कान, हर रस्म सिर्फ इसलिए है कि वो सोशल मीडिया पर अच्छी लगे? कभी कभी हम भूल जाते हैं कि शादी लाइव जीने के लिए होती है, ना कि बाद में अपलोड करने।

के लिए। जब माँ की आंखों में आंसू हो तो वो पल कैमरे में कैद करने से ज़्यादा उसे महसूस करना ज़रूरी है। जब दोस्त मजाक कर रहे हों तो उस हंसी में शामिल होना ज़रूरी है, ना कि बस उसे रिकॉर्ड करना। कंटेंट बनाना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन जब कंटेंट असल पल से बड़ा हो जाए तो कहीं ना कहीं हम कुछ खो रहे होते हैं। याद रखिए, शादी की सबसे खूबसूरत यादें वो होती हैं जो दिल में रहती हैं, ना कि सिर्फ फ़ोन की गैलरी में। तो अगली बार जब आप किसी शादी में जाएं, थोड़ा कैमरा नीचे रखिए और उस पल को पूरी तरह जी लीजिए, क्योंकि कुछ लम्हे पोस्ट करने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए होते हैं।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और शैलेंद्र सिंह को फिल्म सुहाग से। और अब हम बात कर रहे हैं उन बीमारियों की जो शोर नहीं करती लेकिन धीरे धीरे हमें भीतर से खोखला कर देती है, साइलेंट हेल्थ इश्यूज, जो बिना स्पष्ट संकेत दिए शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब तेज़ दर्द ना हो या कोई बड़ी तकलीफ ना दिखे तब तक सब ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं चुपचाप पनपती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायरॉयड या विटामिन्स की कमी, इनमें शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं या नज़र ही नहीं आते। तो ध्यान देने वाले संकेत ये है कि लगातार थकान या कमजोरी, अचानक वजन बढ़ना या घटना, बार बार सर दर्द, नींद का बिगड़ना, त्वचा या बालों में बदलाव, ये छोटे छोटे संकेत हैं कि आपके शरीर का संदेश हो सकता है कि मेंटल साइलेंट हेल्थ इश्यूज। अब बात करते हैं मन की तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये भी अक्सर चुपचाप हमारी जिंदगी में जगह बना लेते हैं। तो पहचान कैसे करें? बिना वजह उदासी या खालीपन महसूस होना, पहले जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती थी उनमें रुचि का कम होना, नींद या भूख में बदलाव। तो क्या करें? अपने शरीर और मन के छोटे छोटे बदलावों को नज़रअंदाज ना करें, समय समय पर हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अपनाएं, और सबसे ज़रूरी, अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा ज़रूर करें। याद रखिए, बीमारियां हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, कभी कभी वो खामोशी से भी दस्तक देती है। उन्हें सुनना, समझना और समय पर कदम उठाना ही समझदारी है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आंधी से। और दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी की परफेक्ट छुट्टियां, किसी की फिट बॉडी, किसी की शानदार नौकरी, तो किसी की परफेक्ट लाइफ, और फिर अनजाने में हम अपनी ज़िंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। लेकिन ज़रा ठहर कर सोचिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई है या सिर्फ एक हाईलाइट है? असल ज़िंदगी में हर मुस्कान के पीछे संघर्ष होता है, हर सफलता के पीछे असफलताएं, और हर परफेक्ट फोटो के पीछे कई बार अधूरी कहानियां। सोशल मीडिया हमें जोड़ता भी है, लेकिन कई बार ये हमें खुद से ही दूर कर देता है। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान की अपनी रफ्तार होती है, अपनी कहानी होती है। तुलना करने से ना हमारी राह आसान होती है और न ही हम खुश रह पाते हैं। तो थोड़ा रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जी रहा हूँ या जी रही हूँ? सोशल मीडिया को देखिए, लेकिन उसे अपनी सच्चाई मत बनाइए, क्योंकि असली ज़िंदगी फिल्टर के पीछे नहीं, आपके आज में बसती है। याद रखिए, तुलना का ये जाल जितना चमकदार दिखता है उतना ही उलझाने वाला भी है। इससे बाहर निकलना है तो खुद को अपनाइए और एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शंस। अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। दूसरों की रोशनी में खुद को मत तौलिए। आपकी अपनी एक चमक है, बस उसे पहचानिए। नवीन भाटिया जी और गौरी शंकर जी, आपने मेल भेजा, इसके लिए दिल से शुक्रिया।

अभी हम सुन रहे हैं पंकज उदास और साधना सरगम को, फिल्म है मोहरा। तो दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं देते हैं विराम। मुस्कुराते रहिए, घर आंगन सुनते रहिए, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते रहिए। दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।

0: अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim police during Alankaran parade held in Gangtok.
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
1: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the ULAS, Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that re-evaluation process will now begin after certain issues have come to light regarding the CBSE Class 12th examination evaluation process. Speaking to media after the meeting with CBSE officials in New Delhi, Mr. Pradhan said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability will be ensured at all levels. Taking responsibility for the discrepancies, the Education Minister said the issues will be rectified and appropriate solutions will be worked out.
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले।
4: चिल्ड्रन शुड रिसीव ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मार्क्स थ्रू स्कैन कॉपीज द आंसर शीट्स शुड रीच देम ट्रांसपेरेंटली। दिस इज अ प्रोविजन अंडर द OSM सिस्टम। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री CBSE हैज इम्प्लीमेंटेड दिस सिस्टम। सम डिस्क्रेपेंसीज हैव कम टू नोटिस इन इट। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंड इट विल बी करेक्टेड प्रॉपरली। वी विल मेक श्योर दैट नो जेन्युइन क्वेरी रेज्ड बाय एनी स्टूडेंट रिमेन्स अनआंसर्ड।
1: The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate CUET UG 2026 examinations. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। ये कार्यक्रम है, ये वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं अर्चना गोयल, आप सभी का मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस फिल्म की जिसने रहस्य और सस्पेंस को एक नया अंदाज दिया। एक ऐसी फिल्म जिसके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं और जिसका डर, रोमांच और रहस्य आज भी वैसा ही ताज़ा लगता है। जी हाँ, आज का हमारा खास कार्यक्रम समर्पित है 1965 की मशहूर फिल्म गुमनाम से। तो आइए सुनते हैं इस गीत का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्माण किया था एनंद सिप्पी ने और फिल्म के निर्देशक रहे राजा नवाठे। 24 दिसंबर 1965 को ये फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म में मुख्य कलाकार थे मनोज कुमार, नंदा, महमूद, प्राण, हेलन, मदनपुरी, तरुण बोस, धूमल और मनमोहन। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म मशहूर लेखिका अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास एंड देन देयर वर नन से प्रेरित थी, लेकिन खास बात ये रही कि फिल्म को पूरी तरह भारतीय रंग में ढाला गया। गीत, संगीत, हास्य, रोमांस और रहस्य सब कुछ इतना खूबसूरती से मिलाया गया कि गुमनाम एक यादगार फिल्म बन गई।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है गुमनाम। आपके साथ मैं हूँ अर्चना गोयल। दोस्तों, गुमनाम फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें एक प्रतियोगिता जीतने के बाद छुट्टियां मनाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उनका विमान रास्ता बदल देता है और वो पहुंच जाते हैं एक सुनसान द्वीप पर, जहां पर एक रहस्यमयी हवेली उनका इंतज़ार कर रही होती है। धीरे धीरे एक एक करके सब लोग मरने लगते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही बनकर आता है कि कातिल कौन है।

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

ये 16 साल तंदान है तेरे ख्याल तंदान, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या।

ताली तक धीमी तक ताली तक जमी तक झाला आंब तक जगी तक ताजी गेन तक नाक तक झुम तक नाक नाक झुम तक नाक नाक झुम तक नाक नाक झम तारी ता झग तारी ता झन झाले गोगो तारी दाबू तारी गेटे ताली झम तारी ता झग तारी ता झन झाले गोगो तारी दाबू तारी गेटे झम तारी झग तारी झग नाक नाक ता झन ता झन ता झन ता झम तारी झग तारी झाले झाले गोगो

दोस्तों, अगर गुनम की बात हो रही हो और जान पहचान हो का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जान पहचान हो हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय डांस नंबरों में गिना जाता है। इस गाने में हेलेन का डांस इतना मशहूर हुआ कि सालों बाद हॉलीवुड फिल्म गोस्ट वॉक वर्ल्ड में भी इस गीत का इस्तेमाल किया गया। फिल्म का संगीत मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने दिया था। उस दौर में ज़्यादातर फिल्मों में परिवार, प्रेम और सामाजिक कहानियाँ दिखाई जाती थीं, लेकिन गुमनाम में सस्पेंस और हॉरर का नया रास्ता खोला। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान रहस्यमय माहौल बनाने के लिए सेट पर रोशनी और ध्वनि का खास ध्यान रखा जाता था ताकि कलाकार भी उस डर को महसूस कर सके। फिल्म रिलीज होने के बाद लोग इंटरवल तक कातिल का अंदाज लगाते रहते थे, लेकिन क्लाइमैक्स आते आते कहानी ऐसा मोड़ लेती थी कि दर्शक हैरान रह जाते थे। मनोज कुमार ने फिल्म में गंभीर और समझदार किरदार निभाया। बाद में वे भारत कुमार के नाम से मशहूर हुए। नंदा की मासूमियत और अभिनय ने फिल्म को भावनात्मक गहराई दी और प्राण साहब हर फिल्म की तरह यहाँ भी रहस्य पैदा करते नजर आए।

और दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके मेल्स की तरफ। हमारे बहुत से श्रोता हैं जिन्होंने अपने मेल्स में कार्यक्रम के बारे में कुछ कहा है, तो आइए बढ़ते हैं उनकी तरफ। और ये मैसेज हमें मिला है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का। और ये मैसेज हमें भेजा है नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन ने, और इनको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। आप हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भारत भूषण, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, जालंधर, पंजाब से। श्री सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, ग्राम पंचायत कालेगांव, जाफराबाद से। आप हैं अनारकली बाज़ार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा। और ये लिख रहे हैं कि आज गुमनाम के गीत और कहानी सुन रहे हैं। फिल्म अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी और गीत सुनाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम को बड़े दिल से सुन रहे हैं। आप हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता पीपरिया से, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राघव गुप्ता। गांव नथर पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर, जस्सी, सीता और गीता, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरासी, ज़िला हिसार से। और ये हैं सुरसंगम रेडियो श्रोता संघ से, इन्होंने पूरी जानकारी फिल्म के बारे में दी है। आप हैं विरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला और परवीन सुल्ताना, जलालाबाद बैस से सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता, नाभा जिला पटियाला से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से, गांव नाहर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साथ। और आप हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, दुर्गा कॉलोनी हांसी से। और ये मैसेज आप हमारे पास पहुंचा है डोंडी लोहारा बालू छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया का। आपके साथ हैं तुषार देव, टॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैसेज हमें मिला है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो का, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन, और नलिकेश्वर नगर नरवेल महाराज से पी एस नवाडकर, निर्मला नवाडकर और सोपान ताइड़े और नारायण इंगले, स्वर्ण सिंह गिल गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से, लालगिरी गोस्वामी, हिमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, गुमनाम उस दौर की सफल फिल्मों में गिनी गई और आज भी इस हिंदी सिनेमा की बेहतरीन सस्पेंस फिल्मों में शामिल किया जाता है। इसके रहस्य संगीत और कलाकारों ने इसे अमर बना दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस फिल्म की जिसमें रहस्य और संगीत के गुमनाम आज भी जब इसका संगीत बजता है तो या टीवी पर दिखाई जाती है तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसी के साथ मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई फिल्म, नए किस्सों और नई यादों के साथ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 1:40 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: फौजी वीरां लई कुछ होर गीतां दे नाल।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है।

पिछले एक हफ्ते तो भी वध समय तो पंजाब हरियाणा अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ नूं प्रभावित कर रही अत दी गर्मी तो आखिरकार कुछ राहत मिली है। सवेरे बनी बदलवाई हल्की हवा ते बूंदाबांदी ने तापमान घटा दिता है। उधर बिहार के उत्तरी अते पूर्वी हिस्सों च तेज हनेरी असमानी बिजली डिगण अते गड़ेमारी कारण 8 लोगों की मौत हो गई है। खबर अनुसार खगड़िया ते मुजफ्फरपुर जिले में दो मौत हुई जदोंकि मुंगेर बागलपुर पूर्वी चंपारण अते पछमी चंपारण में एक एक मौत हुई है। दो बार दे पैरालंपिक चैंपियन सुमीत अंतिल ने बंगलुरु विच 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप विच मर्दां दे जैवलिन थ्रो F64 श्रेणी विच सोने दा तमगा जित्तिया है। सुमीत ने 76.82 मीटर ते थ्रो नाल अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़िया। उसने 2022 हांगसू एशियन पैरा खेडां विच 73.29 मीटर दा थ्रो सुट्टिया सी। अंत विच चोणवीआं खबरां इक वार फिर सुन लो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज राज्यपाल नूं अपना इस्तीफा सौंपणगे। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को भरोसा दवाया कि CBSE वालों नवी ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली एक प्रगतिशील विधि है जिसका उद्देश्य वधेरे पारदर्शिता नूं यकीनी बनाना है। बीजेपी ने पंजाब समेत 3 राज्यों ते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लई नवें सूबा प्रधानों की नियुक्ति का ऐलान किया है। पंजाब समेत देश के वख-वख हिस्सों में अज ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी धार्मिक श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया जा रहा है। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रदेशिक खबरां दा बुलेटिन शामी 6:20 ते होएगा। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। तालीम के वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और OSM निज़ाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायात को हल करने का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज़्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तई ज़्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार उनकी जगह लेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंग बंदी कशीदगी का शिकार है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों ने स्ट्रेटजिक तौर पर अहम आबनाए हुरमुज के नज़दीक एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। और बैडमिंटन में PV सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में मुनक़िदा अलंकरण परेड के मौके पर सिक्किम पुलिस को बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से नवाजा। इसके साथ ही सिक्किम इस एजाज से सरफराज होने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शुमाल मशरिक की 3री रियासत बन गई है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वो शहरियों को ज़्यादा अहमियत दें, नीज़ अवाम और ख़ासतौर पर ख़वातीन, गरीब अफराद और बच्चों के मामलों में हसासियत का मुजाहरा करें।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर जराइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डीप फेक से मुतालिक खतरात से निमटने की गरज से तैयार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने अमन कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से निमटने में सिक्किम पुलिस के किरदार की सताइश की। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर गैर मामूली खिदमात, नज़्म व ज़ब्त और मुल्क के लिए खुद को वक्फ कर देने के एतराफ़ में पुलिस फोर्स को अता किया जाने वाला आला तरीन रस्मी एजाज़ है। इस दौरान सिक्किम को बाज़ाब्ता तौर पर एक मुकम्मल ख्वादा रियासत करार दे दिया गया है। यह ऐलान कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद के दौरान किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमलावरी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा है कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे की तरफ बढ़ना है और असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के ज़रिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोबर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में तेज़ी लाएं। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपये मालियत के रेलवेज़, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वज़ीर आज़म ने शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों पर, खासतौर पर शहरी इलाकों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फ़रोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि वधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक्स इको निज़ाम के साथ मरबूत किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने दरियाओं को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट केन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तआवुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निज़ाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज तलबा को यकीन दहानी कराई कि सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE की जानिब से नए मुतारफ कराया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निज़ाम एक तरक्की पसंद वसीला है जिसका मकसद ज़्यादा शफाफियत को यकीनी बनाना है। जनाब प्रधान आज नई दिल्ली में CBSE अहदेदारों के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से गुफ्तगू कर रहे थे। OSM निज़ाम में खामियों और CBSE के 12वीं जमात के इम्तहान के लिए अज़सर-ए-नौ जाँच के पोर्टल में तकनीकी खराबियों से मुतालिक तशवीश के सिलसिले में वज़ीर मौसूफ ने इस बात का एतराफ़ किया कि बाज़ मसाइल पैदा हुए थे। उन्होंने तलबा को यकीन दिलाया कि अज़सर-ए-नौ जाँच के जारी अमल के दौरान सभी शिकायतों का इजाला कर दिया जाएगा। जनाब प्रधान ने कहा कि ओहदेदार इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सभी तलबा के मसाइल को हल ज़रूर किया जाए और सभी सतहों पर जवाबदही को बरकरार रखा जाए।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया आज सहपहर गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। कर्नाटक के पार्लिमानी उमूर के वज़ीर HK पाटिल ने सिद्धारमैया की जानिब से तलब की गई ब्रेकफास्ट मीटिंग से रवाना होते हुए इस बारे में मुत्तला किया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बताया गया है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ और वो बाकायदा लोकभवन में अपना इस्तीफ़ा पेश कर देंगे। उन्होंने मजीद बताया कि DK शिवकुमार वज़ीर आला की हैसियत से ओहदा संभालेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंग बंदी को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब दोनों मुल्कों ने आबनाए हुरमुज़ के नज़दीक एक दूसरे पर बराह रास्त फौजी हमले किए, जो स्ट्रेटजिक के तौर पर काफ़ी अहमियत का हामिल है। आज सुबह सवेरे अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के 4 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया, जो उसके मुताबिक आबनाए हुरमुज़ के नज़दीक अमरीकी फ़ौज और उसके तजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा बने हुए थे। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में सूरत हाल का जायज़ा लिया और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने कल बीजिंग में भारत चीन सरहदी उमूर से मुतालिक मुशावरत और तालमेल के लिए वर्किंग निज़ाम की 35वीं मीटिंग के दौरान सूरत हाल का जायज़ा लिया। ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा या बकरा ईद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत

0: और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज आज सुबह अदा की। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बकरीद की नमाज अदा करने के लिए लोग नज़दीकी मसाजिद में जमा हुए। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। रियासती सरकार की तरफ से सभी ज़िला पुलिस सरबराहान को एक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई नई रिवायत शुरू ना हो और ममनुआ जानवर की कुर्बानी ना की जाए। DGP राजीव कृष्णा की हिदायत के बाद पुलिस ने हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि यह त्यौहार पुरअम तरीके से मनाया जा सके। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज़्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तई ज़्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और OSM निज़ाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायात को हल करने का यकीन दिलाया। और कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वजीर आला DK शिवकुमार उनकी जगह लेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
2: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त

0: भी प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि

0: राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में PV सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और इस समय आप सुनते हैं आपका अपना कार्यक्रम एक ही कलाकार। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी अपनी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में बात होगी हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री की जिसकी मासूमियत, चुलबुलापन और खूबसूरत मुस्कान ने 1970 और 80 के दशक में दर्शकों का दिल जीत लिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी आंखों में मासूमियत थी, अभिनय में सादगी और मुस्कान में अपनापन। जी हां, आज का हमारा खास कार्यक्रम समर्पित है अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी को।

बिंदिया गोस्वामी का जन्म 4 जनवरी 1962 को हुआ। बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। कहते हैं कि बिंदिया की खूबसूरती और कैमरे के सामने उनकी सहजता ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान जल्दी ही अपनी ओर खींच लिया था। महज किशोर उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और देखते देखते वे 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। बिंदिया गोस्वामी ने उस दौर में काम किया जब हिंदी फिल्मों में रोमांस, पारिवारिक कहानियां और संगीत का जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोलता था। उनकी जोड़ी कई बड़े अभिनेताओं के साथ पसंद की गई। उन्होंने विनोद मेहरा, शशि कपूर, जितेंद्र और अमोल पालेकर जैसे कलाकारों के साथ काम किया। उनकी अदाकारी में एक घरेलू अपनापन था जिसकी वजह से दर्शक उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे।

दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि बिंदुआ गोस्वामी ने बहुत कम समय में सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन जितनी जल्दी वो फिल्मों में आई उतनी ही जल्दी उन्होंने फिल्मों से दूरी भी बना ली। कई लोग मानते हैं कि अगर वो लंबे समय तक फिल्मों में सक्रिय रहती तो वो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाती। उनका निजी जीवन भी काफ़ी चर्चा में रहा। उन्होंने अभिनेता विनोद मेहरा से विवाह किया था, हालांकि ये रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता से शादी की। जेपी दत्ता वही निर्देशक हैं जिन्होंने बॉर्डर और एलओसी करगिल जैसी बड़ी फिल्में बनाईं। शादी के बाद बिंदिया ने परिवार को प्राथमिकता दी और फिल्मों से दूरी बना ली।

इस खूबसूरत गीत के बाद अब आइए बढ़ते हैं आपके मेल्स की तरफ। और ये हमें मैसेज भेजा है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता ने, और ये लिख रहे हैं कि उत्तम बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाने जानकारी और रोचक किस्से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो दिग्दर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं। आप हैं नाहर कोहरा ज़िला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामो देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। और आप हैं इंद्रभान सिंह, इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं बताया है। ये मैसेज हमें मिला है कुमार खेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम का, और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं। आप हैं वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार जी हमें अपना संदेश भेज रहे हैं और ये बता रहे हैं कि विंध्या गोस्वामी के ऊपर ये इन्होंने अपनी बता रहे हैं कि अगर आप चर्चा कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की मशहूर लोकप्रिय खूबसूरत अभिनेत्री विंध्या गोस्वामी और उनकी पहली फिल्म जीवन ज्योति की, और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया, गोलमाल, खट्टा मीठा, प्रेम विवाह, दादा, उन्होंने 14 साल की उम्र में फिल्म फेयर में जगह बनाई और विनोद मेहरा से पहली शादी की, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकी और दूसरी शादी उन्होंने निर्देशक जेपी दत्ता से की और कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। तो आपने भी बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता, संदीप मक्कर जी, ज्योति मक्कर, मन्नत और भारत मक्कर, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से अपना मैसेज हमें भेज रहे हैं। फारूक अली खान ने भी हमें अपना मैसेज भेजा है। हीरामणि वर्मा दत्रेगी भाटापारा से अपना संदेश भेज रहे हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजबीर सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, बॉबी

डॉली, बेबी, पूजा, राधिका और प्रभा देवी, तामुरिया, मास्टर अल कबीर हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक और मधु नायक। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी शिद्दत से हमें ये मैसेज भेज रहे हैं। और अब सुनते हैं एक बहुत

बिंदिया गोस्वामी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सहजता। वे बिना किसी बनावटी बन के अभिनय करती थी। उनकी मुस्कान और मासूम चेहरा दर्शकों को बहुत आकर्षित कर लेता था। वे उन अभिनेत्रियों में शामिल रही जिन्होंने ग्लैमर के साथ साथ सादगी को भी पर्दे पर खूबसूरती से निभाया। दोस्तों, 70 और 80 का दशक हिंदी फिल्मों के लिए बेहद खास था और उस दौर में कहानियों में परिवार का रिश्तों की मिठास थी और गीतों में दिल की भावनाएं। बिंदिया उसी दौर की प्रतिनिधि अभिनेत्री थी। उनके चेहरे पर मासूमियत थी और अभिनय में सच्चाई। यही वजह है कि आज भी जब उनकी फिल्में टीवी पर आती हैं तो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।

बहुत कम लोग जानते हैं कि बिंदिया गोस्वामी फैशन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में भी रुचि रखती हैं। हिंदी फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने के बाद उन्होंने अपने परिवार और रचनात्मक जीवन को समय दिया। हालांकि वे लाइमलाइट से दूर रहीं, लेकिन उनके चाहने वालों ने उन्हें कभी नहीं भुलाया।

तो दोस्तों, ये थी कहानी हिंदी सिनेमा की उस मासूम और खूबसूरत अभिनेत्री की, जिसने कम समय में ही दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। कुछ कलाकार अपने अभिनय से नहीं बल्कि अपनी सादगी और मुस्कान से याद रह जाते हैं, और बिंदिया गोस्वामी उन्हीं कलाकारों में से एक है। अब मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी हस्ती और नए किस्सों के साथ। नमस्कार।

अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
3: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
3: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
3: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं अब इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
3: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
3: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
3: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
3: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
3: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
3: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
3: जी, ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
3: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
2: जी
3: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
2: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा दो की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में

0: के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
0: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
1: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आए और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
0: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
2: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
6: माँ, माँ।
7: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
2: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
5: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
5: ऐसे नहीं,
6: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा। अच्छा। रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
1: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
0: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
1: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
2: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
1: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
2: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
2: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
8: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
9: जी साहब, जी साहब।
8: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
9: चलो साथियों।
2: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।

0: का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने चार और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी, यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 होने को हैं। अब पेश है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: उर्दू मजलिस के सभी सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सबसे पहले तो तमाम सामईन को अराकीन उर्दू मजलिस की जानिब से ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। सामईन, हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की मानिंद है, मुख्तलिफ मज़ाहिब का ये मस्कन है, यहाँ के त्यौहारों में रंगारंगी दिखाई देती है, सब एक दूसरे के त्यौहार को मिलजुल कर मनाते हैं। उन्हीं त्यौहारों में एक त्यौहार ईद उल अज़हा का भी शामिल है, जिसे पूरी दुनिया में अकीदत के साथ मनाया जाता है। ईद उल अज़हा ज़िलहिज महीने की 10 तारीख को मनाते हैं। ये खुशी और मसर्रत, बाहमी खलूस या गानगत का मौका होता है। ये ईद उस दिन की यादगार है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चहीते और इकलौते बेटे को अपने परवरदिगार की बारगाह में कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। आइए सामईन, उसी पाक परवरदिगार की बारगाह में नजराने हम पेश करें।
1: कला

0: जनाब मुजम्मिल संभली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर नजराना हम पेश कर रहे थे। समईन, कुर्बानी का लफ्ज़ अपने वसी मानों में बहुत से मौक़ों पर बोला जाता है। जिस तरह खुदा के हुजूर कुर्बानी का नजराना पेश किया जाता है, उसी तरह अपनी नफसानी ख्वाहिशात, नीज़ इख्तलाफ व इंतशार, बोग़्ज़ व हसद, दुश्मनी और मकर फरेब से भी ख़ुद को अलग करना इसका मकसद है। यानी मसावात, प्यार व मोहब्बत और एक खुदा की बंदगी और इबादत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। ईदुल अज़हा और समाजी पहलू, आइए सामईन इस मौजू पर सुनते हैं जनाब मुहीबुल्ला नदवी के ख्यालात।
1: सामईन किराम, इस महीने में इस्लाम का आखिरी रुकन हज बैतुल्ला किया जाता है और इसी महीने ज़िलहिज की 10 तारीख को ईदुल अज़हा सारे आलम में मनाई जाती है। ईदुल अज़हा त्योहारों में वो दूसरी ईद है जो मनाई जाती है बतौर त्यौहार के, बतौर शुक्राने और इबादत के, बतौर यादगार के, बतौर नसीहत के, बतौर इबरत के, बतौर दर्स के, बतौर ये कि हम उससे क्या अपनी ज़िंदगी में रोशनी लेते हैं। दरहकीकत ईदुल अज़हा का पैगाम ये है कि इंसान के अंदर रब्बुल इज़्ज़त से, अपने मालिक से, अपने खालिक से महब्बत, जज्बाए कुर्बानी पैदा हो। अबुल अंबिया सैदिना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी नस्ल में, जिनकी वंश में, जिनकी औलाद में बेशुमार पैगंबर भेजे गए और जिनको दुनिया के 3 मजाहिब अपना पेशवा, अपना रहनुमा, अपना पैगंबर मानते हैं, उनकी ज़ात इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा और मुंतखब पैगंबरों में से एक हैं जिन्हें अल्लाह ने पैगंबरों के लिए नमूना बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़ात आला सिफ़ात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में ये देखा कि रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमा रहा है कि वो अपने लख्ते जिगर नूर नज़र सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो उनके फर्जंद अर्जमंद हैं, उनकी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी थोड़ी मंजूर थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जज्बा कि वो अपनी औलाद के ऊपर भी अपने मालिक की चाहत और ख्वाहिश और हुक्म को बसरो चश्म कबूल करते हैं, ये मलका, ये कुव्वत, ये ताकत अल्लाह को देनी और देखनी मकसूद थी कि ये हमारे इस इम्तिहान में कामयाब होता है या नहीं। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में देखा, एक शब देखा, दूसरी शब देखा और तीसरी शब उन्हें यकीन कामिल हो गया कि ये मेरे रब का हुक्म है, अब मुझे इस पर अमल करना है। चुनाचे इस ख्वाब की अमली ताबीर के लिए उन्होंने अपने साथ अपने फर्जंद अर्जमन नूर नज़र लख्ते जिगर सैदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने साथ लिया और मीना की वादी में पहुंच गए और अपने बेटे को अपने ख्वाब की बाबत बताया। वो होनहार पूत सपूत जब उन्होंने अपने वालिद की ज़बानी ये ख्वाब सुना तो फ़ौरन वो भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो आपको, आपके और हमारे रब ने हुक्म दिया है, आप इसको पूरा करें। ये नमूना था क़यामत तक के लिए कि कोई औलाद अपनी माँ बाप के हुक्म की नाफरमानी ना करे किसी हद तक भी। हर अमल जो पॉसिबल है अपने माँ बाप की फरमाबरदारी औलाद के लिए होना चाहिए। इस वाक़े से, इस ईद से ये पैगाम मिलता है। तमाम इंसानों के अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि उनके ऊपर सबसे बड़ा हक, सबसे बड़ा उनके ऊपर जो हुक्म है वो उनके रब का है, उनके पैदा करने वाले का है और उसके बाद उनके माँ बाप का है। माँ बाप के हुक्म को बजा लाना है और फिर अल्लाह को ये अदा अपने

0: पैगंबर की इतनी पसंद आई कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मीना की उसी वादी में वो उस रस्म मोहब्बत को सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी की यादगार थी उसको अमली शक्ल में आपने पेश फरमाया और दुनिया को दिखाया कि वही जज्बा सब इंसानों के अंदर होना चाहिए। और कुर्बानी दर हकीकत उस जानवर की कुर्बानी नहीं होती, बल्कि हम ये इजहार करते हैं कि हमारे दिल में अपने खालिक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा मौजूद है। सब धर्मों में कहीं अलग अलग नामों से कुर्बानी का तसव्वुर रहा है। जब रिलीजन स्टडी की जाती है, मज़ाहिब का मुताला किया जाता है, तो पता चलता है कि कुर्बानी का जज्बा और कुर्बानी की रस्म रस्म मोहब्बत जो है ये सब धर्मों में है। और इसका ख़ास मकसद ये है कि समाजी रिश्ते सबसे ज़्यादा मजबूत हों, आपस में उल्फत और मोहब्बत इसार और कुर्बानी के जज्बात पाए जाएं। ये फरमाया गया है कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारे जज्बात मोहब्बत पहुँचते हैं, जज्बात एहतराम पहुँचते हैं कि हम अपने रब के लिए और उसके बंदों के लिए और उसकी मखलूक के लिए किस तरह जज्बे फनाइत, जज्बे कुर्बानी, जज्बे इसार रखते हैं। समाज में सबसे ज़्यादा मजबूत बुनियाद कहाँ से शुरू होती है कि औलादें अपने माँ बाप की फरमाबरदार हों, और फिर यहाँ से सिलसिला शुरू होता है बड़े और छोटे का, और फिर घर से शुरू होता है, फिर पड़ोस में आता है, फिर पड़ोस से शुरू होकर एक मोहल्ले में आता है, और मोहल्ले से शुरू होकर पूरा शहर बनता है, और शहरों से फिर पूरा मुल्क बनता है। इसी तरह से एक अच्छे समाज में कुर्बानी का होना, कुर्बानी के जज्बात का होना बहुत ज़रूरी है। हमने बड़ी मेहनत और मशक्क़तों से और कुर्बानी के जज्बात से ही ये आज़ादी की नेमत पाई है कि आज हम सब लोग, सब भारतीय लोग एक मोहब्बत के साथ, अमनो आश्ती के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। अहले वतन ने मिलकर कुर्बानियाँ दी। अगर कुर्बानी के ये जज्बात ना होते, ये कुर्बानी की रस्में जो मज़ाहिब में पाई जाती हैं ये ना होती, तो फिर हम आज आज़ादी की सांस नहीं ले सकते थे। तो सामेईन, ये ईद उल अज़हा हम सब के लिए, हम सब के सारे अहले वतन के लिए एक खुशी का, एक मोहब्बत का, एक आपस में एक दूसरे के लिए कुर्बानी का पैगाम लाई है।
1: ईद उल अज़हा और समाजी पहलू। अभी आप इस मौजू पर जनाब मुहिबुल्ला नदवी के ख्यालात सुन रहे थे। सामेईन, आकाशवाणी दुनिया के सबसे बड़े नशरियाती नेटवर्क में शुमार किया जाता है, जिसके ज़रिए मुल्क के कोने कोने तक मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न के ज़रिए भी दूसरे मुमालिक की ज़बानों में अपनी खिदमात पेश की जाती हैं। आकाशवाणी अपनी नशरियात के 90 साल मुकम्मल कर रहा है। इस मौके पर हमें पैगामात मौसूल होते हैं। आकाशवाणी के बारे में आइए सुनते हैं डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद के ख्यालात।
2: मैं डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद, शाही इमाम खतीब, शाही मस्जिद फतेहपुरी चांदनी चौक दिल्ली, आपसे मुखातब हूँ। रेडियो सर्विस के 90 साल पूरे हो रहे हैं, और रेडियो की सर्विस को 90 साल पूरे होने पर कुछ प्रोग्राम मुनाकिद हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि 90 साल का कामयाब सफ़र रेडियो सर्विस ने पूरा किया, और मैं तकरीबन 70 साल से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मेरे बचपन में सिर्फ रेडियो एक ऐसा ज़रिया था कि जिससे हम मालूमात हासिल कर सकते थे, ख़बरें भी सुन सकते थे, मजहबी समाजी हर तरह के प्रोग्राम भी सुन सकते थे, हर तरह की मालूमात हमें मिलती थी। रेडियो एक अच्छा साधन था, और रेडियो पर जो घर की औरतें होती हैं भी प्रोग्राम सुनती थी, तो मेरी वालदा साहिबा हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की 17वीं शरीफ का प्रोग्राम सुनती थी। और रेडियो अगर हमारे घर में नहीं भी होता था तो मैं कहीं से लेकर आता था और वो 17वीं शरीफ का प्रोग्राम सुनती थी। तो चाहे ईद का मौका हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, खुशी का मौका हो, कोई भी बड़ा

0: जैसे हमारे यौम जमहूरिया है, या जैसे हमारा यौम आज़ादी है, या इस तरह के और प्रोग्राम जो आते हैं सियासी समाजी, तो उससे लोगों को मालूमात अच्छी होती है। और रेडियो आज भी बहुत अच्छा जरिया है मालूमात का, क्योंकि हर जगह पर टेलीविज़न नहीं है, हर जगह पर मोबाइल नहीं है, रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह मौजूद है। मैं रेडियो से वाबस्ता भी रहा और रेडियो सर्विस के उर्दू मजलिस प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्रामों में मैं शरीक भी रहा। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये 90 साल प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं तो यही चाहता हूँ और रेडियो सर्विस को और अच्छा बनाया जाए, ताकि आजकल जो नौजवान जो तालीम में आगे बढ़ना चाहते हैं और समाजियात और अखलाकियात में पीछे हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि नौजवानों की तरबियत के लिए रेडियो का इस्तेमाल हो और अच्छे अच्छे प्रोग्राम इस तरह के बनाए जाएं जिससे तामीरी पहलू उजागर हो। और मैं इन तमाम मौक़ों पर मैं एक दफ़ा मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं चाहता हूं कि रेडियो सर्विस के प्रोग्राम को और भी बढ़ाया जाए, ताकि इसका दायरा वसी हो और आम जनता तक इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके।
1: हमारे कुछ सामीन जो अपनी आकाशवाणी से वाबस्ता यादों को बयान करते हैं।
2: आदाब, इशार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ। आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको अधिकारीगण को परिवार सभी को आदाब करते हैं। रेडियो की यादें तो इतने है कि बहुत ज्यादा टाइम उतना लग जाए तो हम कहते कहते थक जाएंगे। हम जब 8 साल के थे तब मुझे याद है कि 1976 की बात है कि जब से मुझे याद है कि मेरे नाना और मेरे पिताजी आकाशवाणी उर्दू मजलिस और उर्दू सर्विस, ये इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था कि बहुत से लोग सुनते थे और उर्दू सर्विस की आवाज़ और उनकी जो बात करने का अंदाज था वो बहुत बढ़िया था। और अब तो 90 साल आकाशवाणी को भी होने को जा रहे हैं। फोन कार्यक्रम आता था, बहुत अच्छा लगता था। आपके कार्यक्रम से बहुत यादें हैं हमारी और कार्यक्रम में दोस्त भी आज भी याद करते हैं इस वक्त को। लेकिन
3: मैं अरपाल सिंह बोल रहा हूँ हरियाणा से, गांव दिनोद से। रेडियो का तो मुझे बड़ा शौक रहा है, बचपन से मैं सुनता रहा हूँ और अच्छे अच्छे प्रोग्राम फोन इन प्रोग्राम में सुनता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और जो भी प्रसारण होते थे रेडियो पे कृषि खेती बाड़ी के बारे में और भी मनोरंजन प्रोग्राम होते थे, उसमें रुचि होती थी सुनने। और आज भी हम रेडियो सुनते हैं, हमारे पास में रेडियो है भी। सबसे ज्यादा तो फोन इन प्रोग्राम अच्छे लगते थे और आपके भी जो मजलिस प्रोग्राम बड़ा अच्छा, बहुत हमने सुना। काफी टाइम से हम जुड़े हुए, 10-12 साल हो गए शायद, मेरे को ज्यादा हो गया। और सारे गजल वगैरह, ये नजम गजल का प्रोग्राम, शेर व शायरी पे आधारित चीज अच्छे लगते थे। उन्हीं में हमारे जो हमारे मित्र थे जो रेडियो से जुड़े, उनके सबके फोन कॉल आती थी और उनकी अलग अलग फरमाइश होती थी और हमारे भी उससे में फरमाइश होती थी, तो हमें मालूम होता था कि किसकी कैसी फरमाइश है, कौन कैसे वो रखता है, तो इससे भी हमें बड़ा अच्छा लगता।
4: मैं अनवर बिहारी आपसे मुखातिब हूँ, बिहार शरीफ जिला नालंदा से। 12 साल की उम्र के जब हम थे तभी से हम रेडियो सुन रहे हैं। 1988 में कंटिन्यू मैं रेडियो सुन रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगता था जब हम छोटे छोटे थे और घरों में रेडियो बजता था, घर घर में बल्कि रेडियो बजता था, सिर्फ हमारे घर में नहीं, हमारे घर में हमारे वालिद साहब रेडियो सुनते थे, फूफा जान रेडियो सुनते थे और हमसे चचा जान रेडियो सुनते थे। और बड़ा अच्छा लगता है रेडियो में पुरानी बातें, पुरानी नगमे, पुरानी गजलें और खबरें, बच्चा भी सुन ले, बूढ़ा भी सुन ले, जवान भी सुन ले, इसमें गीत भी है, गजल भी है, कव्वाली भी है और खबरें भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। रेडियो की सबसे बड़ी खूबी है कि रेडियो बजा के छोड़ दीजिए और आप काम भी कर रहे हैं, रेडियो भी सुन रहे हैं। टेलीविजन में ऐसी बातें नहीं, टीवी अगर चल रहा है तो उसकी तरफ निगाह गाड़ के देखते रहिए, लेकिन रेडियो बजा के छोड़ दिया, रेडियो ही बज रहा है, काम भी हो रहा है। और अब जब मैं ये सब देखता हूँ ना, मोबाइल, इंटरनेट, तो मुझे वो रेडियो की पुरानी बातें याद करके परवीन शाकिर का एक शेर याद आता है कि तुझसे अब और कुछ नहीं चाहिए मेरी उम्र रवा, मुझे मेरा बचपन, मेरी जुगनू, मेरी बुढ़िया ला दे, नया मौसम मेरी आंखों की बिनाई को तस्लीम नहीं, मेरी आंखों को फिर वही ख्वाब पुराना ला दे। उर्दू मजलिस तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत ही मियारी और मालूमती प्रोग्राम होते हैं और मेरी शख्सियत में बहुत निखार आया इस प्रोग्राम को सुन करके। और आज ही मैं सुनता हूँ, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उर्दू मजलिस का फोन इन प्रोग्राम जो रिकॉर्डिंग होता था उसकी रिकॉर्डिंग आप लोग फिर से शुरू कर दें।
5: मैं राम निवास अग्रवाल बोल रहा हूँ भिवानी हरियाणा से। रेडियो तो मैंने तो 15-20 साल का था, मैं तभी

0: मैं रेडियो से जुड़ गया था और रेडियो ने मेरी जिंदगी पर काफी असर डाला। मुझे बोलने का भी पता चला, कैसे बोला जाता है, कैसे बात की जाती है, स्वास्थ्य संबंधी बहुत जानकारियां रेडियो से मिली और नए नए दोस्त बने रेडियो के जरिए। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा रहा रेडियो का ये सफर। उर्दू मजलिस से मैं जुड़ा था 2014-15 में। किसी दोस्त ने मुझे बताया था कि उर्दू मजलिस प्रोग्राम आता है आकाशवाणी दिल्ली से, राजधानी चैनल से, तो मैंने वहां लगाया। तो मैंने पहली बार जब उर्दू मजलिस प्रोग्राम सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू मजलिस फोन इन प्रोग्राम तो जरूर से शुरू किया जाए, ताकि हम जो श्रोता एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे की आवाज सुनते थे, आज उन लोगों की आवाज सुनने को तरस रहे हैं। फोन इन प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जाए।
1: मैं गांव चौधरी वासी राजू अग्रवाल। रेडियो के बारे में तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है जी, क्योंकि हमने वो जमाना देखा है जब ससुराल में भी रेडियो लेके जाते थे लोग, और बचपन में घर में रेडियो था नहीं, इधर उधर एक ही रेडियो कई लोग बैठ के सुना करते थे। 1987 में मेरे ससुराल वालों ने रेडियो दियो, उतना बीच में टूट गया। उसका खामियाजा मुझे मानसिक बीमारी के रूप में, और कोई आश्चर्य नहीं कि आपका मैं कैसे भी कर लेता अगर रेडियो ने साथ दिया होता, क्योंकि इसमें एक ठहराव सुकून बहुत कुछ है जी। ध्यान से सुने थे फिल्मी गीत है या और कोई भी चीज है, उनमें एक बहुत शिक्षा मिलती है। और इटली निवासी मार्कोनी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, जिन्होंने संसार को रेडियो दिया है। उर्दू मजलिस 7:45 बजे में सुनया करता जी, शाम को। तो मैंने शुरू में सुनिया और सामयिन शब्द बोलते थे, समझ में नहीं आता था अभी श्रोता को बोलते है। पूछा हमारी रिकॉर्डिंग की समझते, 2015 से 2020 तक का इतना बढ़िया समय था कि वो समय भूल नहीं सकते थे। कोरोना के बाद सब कुछ कारवां भी छट गए जी, प्रोग्राम थे अपने दिल की बातें कह देते थे जी। प्रोग्राम तो सभी अच्छे है, लेकिन एक प्रोग्राम मैं कभी नहीं भूल सकता जी। आकाशवाणी रोहतक से प्रोग्राम आ रहा था सोच के दराट के, वो पूछ रहे थे कि रेडियो ने क्या योगदान दिया। मैंने अपनी घटना के बारे में बता दिया, रोने लग गया था। आसे जो कोई अनाउंसर थी, नोबले राजू जी, जीवन में तकलीफ भी जरूरी है, रेडियो हमेशा आपके साथ रहेगा। श्रोताओं के ये मेरा परिवार है, उन्हीं के नंबर है।
2: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। हमने तो बचपन से ही, जब हमारे को होश आया तो हमारे घर रेडियो चलता था, आकाशवाणी चलती थी। उस समय हमें इतना समझ नहीं थी क्या आता है, उस समय एक ही चैनल हुआ करता था, तो जो चलता है उसी को सुनते रहते थे। और फिर थोड़े से बड़े हुए तो फिर क्रिकेट कमेंट्री, हॉकी की कमेंट्री, ये सब सुनने लगे। फिर 15 अगस्त, 26 जनवरी की परेड की कमेंट्री आती थी, वो सुनते थे। आकाशवाणी से आज की तारीख तक हम जो सुनते आ रहे हैं, बेहतरीन कार्यक्रम आते हैं सुनने को। उससे क्या है, हमारे को ज्ञान की बढ़ोतरी होती है और नए नए लोगों से नई नई जानकारियां मिलती हैं। कृषि से लेकर स्पेस तक की जानकारी हमें घर बैठे मिल जाती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं रेडियो में। ये सारी चीजें आकाशवाणी का ही जरिया था जिससे हम ये सब सुनते हैं। और जन्म गुट्टी बोलते थे ना, जब बच्चे को खिलाई जाती थी, ऐसे ही हमारा गुरु है आकाशवाणी केंद्र। 90 साल होने पर इसको हम बधाई देते हैं, और आने वाले जब इसकी सेंचुरी पूरी हो जाएगी 1936 में, और ज्यादा उठाएंगे।
3: सामईन, अभी कुछ सामईन के ख्यालात आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं ये ईद का नगमा।

ईद का नगमा आपने सुना। एक बार फिर ईद उल अज़हा की तमाम उर्दू मजलिस के अराकीन की जानिब से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो सामईन, ये था हमारा आज का ईद उल अज़हा पर खुसूसी प्रोग्राम, जिसे आपके लिए तरतीब दिया था इंतज़ार अली सैफी ने। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय धानसभा की सभी 107 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का आज विमोचन करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिट सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, PV सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक आंधी चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:10 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। खोए हुए पुरुष का पूरा नाम मनोज कुमार है। इन्हें अंतिम बार नवंबर 2025 में ग्राम खेड़ी दूधाधारी थाना मुजफ्फरनगर में देखा गया। इनकी आयु 45 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट 2 इंच है। ये अपने बाएं पैर से लाचार हैं एवं लाठी लेकर चलते हैं। मनोज कुमार के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा पुरुष का पूरा नाम सोनू है। ये राजू के पुत्र हैं। निवासी छाजोवाला, ग्राम कैथोड़ा, थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर। इन्हें अंतिम बार 17 मार्च 2026 को इनके घर पर देखा गया। सोनू की आयु 28 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद भी सामान्य है। सोनू के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मोबाइल संख्या 8739500517 या फिर प्रभारी निरीक्षक थाना मीरापुर मुजफ्फरनगर से संपर्क कर सकते हैं। लापता युवती का पूरा नाम सवा प्रवीण है। इन्हें अंतिम बार 27 मार्च 2026 को रहमत नगर में देखा गया। सबा की आयु 21 वर्ष है। पतला शरीर है एवं कद 5 फीट 3 इंच है। सबा प्रवीण अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर से संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए पुरुष का पूरा नाम मुकेश है। ये रामा के पुत्र हैं। मुकेश को अंतिम बार दिनांक 17 अप्रैल 2026 को शाम 7:30 पर रविदास मंदिर सिविल लाइन मुजफ्फरनगर में देखा गया। इनकी आयु लगभग 48 वर्ष है। इखरा शरीर है एवं कद 5 फीट 2 इंच है। मुकेश के दाहिने हाथ में सागर गुदा है। यह अपने पुत्र शिवम के ससुराल से वापस अपने घर जाते समय सिविल लाइन मुजफ्फरनगर से कहीं लापता हो गए हैं। मुकेश के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का नाम शिवानी है। इन्हें अंतिम बार 8 फरवरी 2026 को इनके घर पर देखा गया। शिवानी की आयु 21 वर्ष है। इखरा शरीर है। आंख कान नाक औसत है। कद 5 फीट 4 इंच है एवं रंग गोरा है। शिवानी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर से संपर्क कर सकते हैं।
लापता पुरुष का पूरा नाम अनिल कुमार बाटला है। इन्हें अंतिम बार कस्बा जानसठ में देखा गया। इनकी आयु 55 वर्ष है। शरीर मजबूत है एवं कद 5 फीट 7 इंच है। अनिल कुमार बाटला के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जानसठ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से संपर्क कर सकती हैं। गुमशुदा महिला का पूरा नाम प्रियंका है। ये राहुल की पत्नी है। निवासी थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर। प्रियंका की आयु 30 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत है। आंख नाक कान औसत है। कद 4 फीट 10 इंच है एवं रंग गोरा है। प्रियंका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थाना प्रभारी थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर से संपर्क कर सकते हैं। एवं अंत में मृत पुरुष का नाम पता मालूम नहीं। इन्हें अंतिम बार दिनांक 8 मई 2026 को देर रात 10:10 पर गीता कॉलोनी फ्लाईओवर शमशान घाट दिल्ली के पास देखा गया। इनकी आयु लगभग 50 वर्ष है। शरीर की बनावट मध्यम है एवं कद 5 फीट 6 इंच है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: positions and application format is available on the Academy's official website under the vacancy section at www.svpnpa.gov.in. I repeat, it is www.svpnpa.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत सक्रिय रामपुर रजा लाइब्रेरी में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार एक पद, लेखा सलाहकार एक पद, प्रशासनिक सलाहकार एक पद, शोध सहायक हिंदी एक पद, शोध सहायक संस्कृत दो पद, टाइपिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी एक पद और टाइपिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर अंग्रेजी एक पद। उम्मीदवार केवल स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक द्वारा अपना आवेदन इस पते पर प्रेषित कर सकते हैं। निदेशक रामपुर रजा लाइब्रेरी, हामिद मंजिल, किला रामपुर, उत्तर प्रदेश 244901। आवेदन करने से पहले आवश्यक योग्यता, वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार 23 से 29 मई के अंक को। विकास आयुक्त कार्यालय कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र में इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अप्रेजिंग अधिकारी ग्रुप ख राजपत्रित। पदों की संख्या 2 है और कार्यस्थल रहेगा गांधीधाम। योग्यता, अनुभव, वेतन और भत्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विकास आयुक्त कार्यालय कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र की वेबसाइट www.kasez.gov.in। किसी भी तरह की जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो ईमेल का पता है admin.kasez-gj@gov.in। फोन नंबर पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फोन नंबर है 02836252273। सेना मुख्यालय उत्तरी कमांड में आशुलिपिक ग्रेड 1 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। रिक्तियों की संख्या 8 है और तैनाती का स्थान रहेगा उधमपुर। आवेदन प्रारूप, पात्रता मानदंड और अन्य नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए भारतीय सेना की वेबसाइट indianarmy@nic.in। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विधिवत भरे हुए आवेदन के साथ सभी अपेक्षित संलग्नक इस पते पर पहुंच जाएं। पता है प्रशासन शाखा मुख्यालय उत्तरी कमांड, पिन 908545, CO 56 APO। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सहायक महाप्रबंधक ग्रुप ए एक पद अनारक्षित, सहायक प्रबंधक ग्रुप बी दो पद अनारक्षित, सहायक प्रबंधक कृषि ग्रुप बी एक पद अनारक्षित। योग्यता, भर्ती संबंधी शर्तों, अनुभव और वेतनमान के लिए देखिए APEDA की वेबसाइट www.apeda.gov.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख रहेगी 22 जून 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

0: कोटि कोटि कंठों से गूंजा प्यारा कौमी नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। मंदिर और मीनार हमारे, गांव शहर बाजार हमारे, चंदा सूरज गंगा जमुना पैगंबर अवतार हमारे। नमस्कार, आज ईद उल अजहा के अवसर पर प्रतिष्ठित कवि गोपाल दास व्यास की पुण्यतिथि पर उनकी लिखी पंक्तियों के साथ आपका अभिनंदन। कार्यक्रम परिक्रमा में आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
1: हेलो प्रियंका।
0: और आधे घंटे के इस कार्यक्रम में रोज की तरह बहुत कुछ रहेगा खास। क्षेत्रीय संवाददाताओं से हम रूबरू होंगे, खेल जगत की गतिविधियां भी जानेंगे और आज जिन व्यक्तियों ने हमसे अलविदा कहा, जयंती हैं, जिनका जन्मदिन है, उनको भी हम याद करेंगे।
1: यस, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 एफएम गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट प्रियंका अरोरा।
0: अभिषेक, ये धुन बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही है।
1: Absolutely, well, listeners is known for creating the character of James Bond, the confident, sophisticated and daring secret agent. Secondly, his background as a commander in Britain's naval intelligence during World War II gave his books a vital ring of truth, providing realistic detail. And lastly, having worked as a journalist for Reuters, he developed a quick, vivid and unmannered writing style. His scripts, journalistic prose, made his thrillers effortless, gripping page-turners. Yes, he's none other than the author of the James Bond series of spy novels, Ian Fleming.

0: Yes, and Ian Fleming observes his birth anniversary today. We shall talk about him later in a program. But first, we start off with the news headlines at this hour.
1: जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया।
0: एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने शोस रेजोल्यूशन ऑफ ऑल ग्रीवेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज इन सीबीएसई क्लास 12 एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन प्रोसेस। कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू गवर्नर सेक्रेटरी एट लोकभवन।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।
0: एंड इन बैडमिंटन पीवी सिंधु एंड लक्ष्य सेन स्टॉर्म इनटू द सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स ऑफ सिंगापुर ओपन। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Day of Action for Women's Health and World Menstrual Hygiene Day. Well, every year on May 28th, the International Day of Action for Women's Health is celebrated to remind us that women's health is not merely a women's issue. It is a social, economic and human rights issue that affects families, workplaces, communities and entire nations.
1: बिल्कुल सही कहा अभिषेक, और खासकर जब महिलाओं की बात करें तो घर में वो सबकी देखभाल करती हैं, लेकिन अपनी देखभाल करना भूल जाती हैं।
0: It's very important that the woman of the house take care of her health, because only when she's healthy, the rest of the family is well and happy, isn't it?
1: बिल्कुल, उनके कंधों पर ही पूरा घर चलता है, इसलिए आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। प्रजनन स्वास्थ्य और हार्मोनल संतुलन से लेकर पुरानी बीमारियों की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य तक, ये दिन इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान, करुणापूर्ण देखभाल और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक निरंतर पहुँच की आवश्यकता है।
0: And every year, International Women's Health Day 2026 is guided by a unified message. The topic for Women's Health Day in 2026 is to empower women with information, ensure fair access to healthcare services, and encourage preventative health habits across all age groups.
1: जी हाँ, ये विषय

0: इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि किस प्रकार जानकार महिलाएं अपने लिए, अपने परिवारों के लिए और समग्र रूप से अपने समुदायों के लिए अधिक स्वस्थ विकल्प चुनती हैं।
1: Yes, Priyanka, and unlike men, women go through a distinct series of biological processes, including menstruation, pregnancy, childbirth, and menopause, each with its own set of health concerns.
0: जी हाँ, और जितना ये शारीरिक रूप से तकलीफ देता है, उतना मानसिक रूप से भी ये जो स्थितियाँ हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन की है, प्रेगनेंसी की है, परेशान करती हैं। प्रजनन स्वास्थ्य के अलावा महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस, ऑटोइम्यून विकार, थायराइड रोग है और हृदय संबंधी बीमारियों जैसी स्थितियों का भी अलग अलग स्तर का जोखिम रहता है। जीवन के सभी चरणों में महिलाएं अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा सकती हैं।
1: एंड सो कमिंग अप फॉलोइंग आर द क्रिटिकल प्रिवेंटिव एक्टिविटीज एडवोकेटेड शेड्यूल्ड फ्रीक्वेंट गायनोकोलॉजिकल चेकअप्स।
0: जी हाँ, नियमित मेमोग्राफी और स्तनों की स्वयं जांच करवाएं, हड्डियों के घनत्व जिसे बोन डेंसिटी कहते हैं उस पर नजर रखें। खासकर विशेष रूप से हम बात करें तो 40 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं को नियमित तौर पर रेगुलरली अपना जो स्वास्थ्य चेकअप है वो करवाना चाहिए।
1: मेंटेन अ बैलेंस डाइट हाई इन कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, परफॉर्म एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी पर वीक,
0: और पर्याप्त आराम, सामाजिक जुड़ाव, जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद के जरिए मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दें, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड की कार्यप्रणाली की नियमित जांच करवाएं।
1: एंड टुडे प्रियंका आल्सो हैपेंस टू बी द मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन May 28th, एंड द डे इज सपोर्टेड बाय एन एक्सपेंसिव कोएलिशन ऑफ ओवर 1315 ग्लोबल पार्टनर्स इंक्लूडिंग यूनिसेफ, World Health Organization WHO, World Bank Group, United Nations Population Fund.
0: जी अभिषेक, ये दिन मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य, गरिमा, शिक्षा, सुरक्षित पीरियड जो चीज़ें होती हैं उस तक पहुंच और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मासिक धर्म से जुड़े मिथकों को समाप्त करने पर केंद्रित है।
1: And did you know the date itself has a special meaning?
0: बिल्कुल, मई साल का पांचवा महीना है जो मासिक धर्म की औसत अवधि का प्रतीक है, जो लगभग 5 दिनों की होती है।
1: And the day represents the average length of menstrual cycle. 28 days, a simple but powerful reminder of something that is completely natural.
0: बिल्कुल, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस खुली बातचीत को बढ़ावा देता है ताकि मासिक धर्म से गुजरने वाली हर महिला किशोरी अपने पीरियड्स को सुरक्षित, आत्मविश्वास के साथ और गरिमापूर्ण ढंग से संभाल सके।
1: And sadly, Priyanka, many people still face shame, misinformation and lack of access to proper hygiene products and education.
0: बिल्कुल, अब भी हमारे समाज में अभिषेक इसको लेकर टैबू है, इस पर बातचीत करने से कतराते हैं, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब ये सोशल इशू है और स्वास्थ्य से जुड़ा इशू है, तो इस पर खुली चर्चा, बातचीत पेरेंट्स और बच्चों के बीच भी होनी चाहिए। इसलिए जागरूकता ज़रूरी है। महावारी के बारे में खुलकर बात करने से गलत फहमियाँ दूर होती हैं और एक ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा मददगार समाज बनता है।
1: एंड गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन आल्सो मींस यूजिंग सेफ प्रोडक्ट्स, चेंजिंग देम रेगुलरली, मेंटेनिंग क्लीनिनेस एंड अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी एंड साइकिल।
0: बिल्कुल, याद रखें पीरियड्स कोई वर्जित विषय नहीं है, ये जीवन और स्वास्थ्य का एक सामान्य हिस्सा है।
1: सो टुडे लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस, सपोर्ट डिग्निटी एंड एनकरेज कॉन्वर्सेशंस विदाउट फियर और एम्बैरेसमेंट।
0: जी हाँ, और एक बात बिल्कुल साफ है, पीरियड्स एक प्राकृतिक और सामान्य प्रक्रिया है और इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है। पीरियड से जुड़ी वर्जनाओं को तोड़ने की शुरुआत सीधी सादी बातचीत से होती है। जब हम खुलकर बात करते हैं, खुद को जागरूक करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तो हम एक ज़्यादा सुरक्षित और समझदार समाज का निर्माण करते हैं। पीरियड से जुड़े मिथकों को तोड़ने और इस विषय पर चुप्पी खत्म करने में माता पिता, शिक्षक, स्कूल, कार्यस्थल और समुदाय सभी की अहम भूमिका होती है।
1: Yes, and so to wrap up our discussion on the International Day of Action for Women's Health and World Menstrual Hygiene Day, well, Priyanka, no girl or woman should ever feel embarrassed for something that is a natural part of life. Access to menstrual hygiene, healthcare, education and dignity should be a basic right for everyone. And let us replace shame with awareness, fear with knowledge, and silence with support. Because when we normalize conversations about menstruation, we empower people to take better care of their health and well-being.

और अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इन पंक्तियों के साथ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जी हाँ, उर्दू अदब की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मोहब्बत, तन्हाई और ज़िंदगी को अपनी गज़लों में नई आवाज़ देने वाले मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। आम आदमी के शायर बशीर बद्र का जन्म अयोध्या में 15 फरवरी 1935 को हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने 7 बरस की उम्र से ही शेर व शायरी शुरू कर दी थी। बशीर बद्र की शायरी की सबसे बड़ी खासियत इसकी सरलता और सहजता है। उन्होंने गजल में ऐसे रोजमर्रा के शब्दों का बखूबी इस्तेमाल किया जिन्हें पारंपरिक उर्दू शायरी में जगह नहीं मिलती थी। उन्होंने कई प्रसिद्ध किताबें लिखी जिनमें इमखान, आहटे, कुलियात बशीर बद्र और उजाले अपनी यादों के शामिल हैं। उन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया और उर्दू के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और उनकी पंक्तियां जैसे एक दिन तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगा, जिंदगी मुझको तेरा पता चाहिए, या ये कितनी प्रचलित रही थी अभिषेक कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। तो आइए सुनते हैं उनकी कलम से लिखी हुई ये गजल।

0: oppression, resilience, and identity. As a prominent cultural figure, Angelou was revered for a powerful mastery of language and unwavering dedication to social justice. And I know why The Caged Bird Sing in 1969 was a groundbreaking first memoir. It details her childhood in the segregated South and became the first non-fiction bestseller by an African-American woman.
1: जी हाँ, आज ही के दिन निधन हुआ था जाने माने साहित्यकार गोपाल प्रसाद व्यास का। उन्हें व्यंग्य विनोद की नई धारा का जनक माना जाता है। उन्हें ब्रज भाषा का विद्वान भी कहा जाता है। अगर आप उनकी कविताएं पढ़ें तो उसमें हर रंग और हर रस मिलता है, फिर चाहे वो हास्य रस, व्यंग्य रस, वीर रस या कोई अन्य कविता हो। और जैसे अगर बात करें तो गोपाल प्रसाद व्यास की वीर रस से लेकर परिवार रस की कविताएं जैसे परमेश्वर, मानो, साला साली और ससुराल चलो जैसी कविताओं को कौन भुला सकता है। उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया जा चुका है और आपको पता है कि वे हास्य रस अवतार के नाम से प्रसिद्ध थे। ऐसे में उनकी लिखी पंक्तियों के जरिए इसकी वानगी पेश की जाए। उनका कलम उन्हें लौटाया धन्यवाद जी, पत्र लिखा तो उत्तर आया धन्यवाद जी, छायावाद रहस्यवाद तो बहुत सुने थे किंतु कहां से आ टपका ये धन्यवाद जी।
0: Absolutely, dhanyavad, and for that very lovely recitation, Priyanka. And now, moving on, Ian Fleming was born on this day in 1908. He was a prominent British author, journalist, and naval intelligence officer. Like your listeners will remember, we mentioned in the beginning of our program, and is universally celebrated as the creator of James Bond, the iconic Secret Service agent 007, who became a central figure in the 20th century pop culture. And talking about the birth of 007, Priyanka, Fleming wrote his first spy novel Casino Royale in 1952 at his Jamaican estate named Goldeneye. He penned a total of 12 novels and two short story collections featuring Bond, selling over 100 million copies worldwide.
1: और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म नासिक में विख्यात हिंदुस्तानी संगीतकार विष्णु दिगंबर पलुस्कर के घर हुआ था। और उनकी गायन की ये वानगी पहले आपको सुनाते हैं।

और आज ही के दिन हम याद कर रहे हैं मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक महबूब खान को, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। जी हाँ, महबूब खान वही हैं जिन्होंने मदर इंडिया जैसी क्लासिक फिल्म बनाई थी। हम जानते हैं कि इस फिल्म को एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। इसके अलावा उनकी कुछ और बेहतरीन फिल्में थी जिसका जिक्र करें, उनमें अनमोल घड़ी, आन, अंदाज शामिल है। और जाते जाते अनमोल घड़ी का ये शानदार गीत आपको सुनाते चलते हैं।

जी हाँ, हम भी उड़ चलते हैं अभिषेक, समय कह रहा है अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का। तो प्रियंका अरोड़ा और अभिषेक मुखोपाध्याय को दीजिए अनुमति कार्यक्रम यही संपन्न करने की। नमस्कार।

0: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। आज वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान को याद किया। श्री शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 को संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में वहां के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के उन्नयन वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वार्ता की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव कपिल चौधरी और कोरिया गणराज्य के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के व्यापार समझौता नीति महानिदेशक पार्क ग्युन ओह ने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उन्नयन वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah formally submitted his resignation today. Addressing media, he confirmed that the resignation letter was officially handed over to the Governor's Secretary in Bengaluru. Mr. Siddaramaiah said he requested the Governor to invite the Chief Minister designate DK Shivakumar to assume office as his government enjoys an absolute majority in the Assembly with the support of over 136 MLAs. The Chief Minister designate, Deputy Chief Minister DK Shivakumar, is one of the senior leaders of the Karnataka Congress. He informed that the High Command had offered him a Rajya Sabha seat, which he added he had humbly refused. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Tests undergraduate CUET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examination will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid al-Adha. NTA said that the admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. Addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth Rs. 340 crore, in the Gandhinagar Lok Sabha constituency of Gujarat today, Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country.
3: Our government's resolve is to identify and deport every single infiltrator from across the country. For this purpose, Prime Minister Narendra Modi ji has decided to constitute a demographic change committee. This high-powered committee will examine the causes behind the artificial demographic changes taking place across the country, suggest measures to address them, and also consider whether any new laws are required for this purpose. The demographic change committee will submit its report within 1 year, and we will work towards preventing artificial demographic changes.
4: Demographic change jo hai usko rokne ka hum kaam karenge.
2: President Draupadi Murmu has urged the police force to become more citizen-centric and sensitive while dealing with the vulnerable sections, especially women, the poor and children. President Murmu was speaking after conferring the prestigious President's Police Colour to the Sikkim police during Alankaran parade held in Gangtok this morning. She appreciated the role of the Sikkim police in maintaining law and order and in disaster management.
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके. महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए. साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही. इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
2: In a significant development for wildlife conservation in Gujarat and Kutch, four cheetahs from Madhya Pradesh will be relocated to the Banni grasslands in Kutch. The National Tiger Conservation Authority, NTCA, and the Cheetah Steering Committee have approved the translocation of two male and two female African cheetahs currently rehabilitated in Madhya Pradesh to the Banni grassland ecosystem. With this move, Gujarat is set to become the second home for cheetahs in India after the Kuno National Park in Madhya Pradesh. The festival of sacrifice, Eid al-Adha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. Eid al-Adha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. India and China have reviewed the situation in border areas and expressed satisfaction with the progress made in maintaining peace and tranquility. The meeting was held during 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs held in Beijing yesterday. The two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation. And in badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Sattvic Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krusto, all advancing to the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.

1.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। संध्या के 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: नमस्कार।
0: तो पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं लोक रंजनी कार्यक्रम लेकर के।
1: बिल्कुल, और ये मनमोहक कार्यक्रम हम अपने सभी श्रोताओं के लिए रोज लेकर आते हैं, और आज भी हमारा खास कार्यक्रम ही रहेगा ये। और आज हम सबसे पहले अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनवाते हैं अपने सभी बहन भाइयों को पुष्पा गोसाई की आवाज़ में एक प्यारा सा लोकगीत।

तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे पुष्पा गुसाई की आवाज़ में ये लोकगीत, और अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं रचना शर्मा की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत।

अभी हमारे सभी श्रोता सुन रहे थे रचना शर्मा से ये प्यारा सा लोकगीत, और अब हम अपने सभी भाई बहनों को सुनवाते हैं सुभाष नाथ की आवाज़ में एक और गीत।

0: तो अतुल भाई शिवानी गोला के इस लोकगीत के साथ ही हमारा आज का ये लोकरंजनी कार्यक्रम समाप्त होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी को आज धर्मेंद्र और
3: आलोक का नमस्कार।
2: नमस्कार आलोक। और आलोक, खेलों की बात करें तो बहुत सारी खेल गतिविधियां दुनिया भर में चल रही हैं, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभागिता लगातार दिखाई दे रही है, लगातार प्रदर्शन भी निखर कर सामने आ रहा है। तो चंद्रालोक, आज शुरुआत करते हैं शूटिंग से।
3: जी सर।
2: 21 साल की यंग शूटर ईशा सिंह ने एक

0: अग्रता वाले इस गेम में मजबूत भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में न सिर्फ स्वर्ण पदक अपने नाम किया बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम अंकित करवा लिया। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित इस प्रतियोगिता में ईशा ने दुनिया की दिग्गज निशानेबाजों के बीच से निकलकर इतिहास रच दिया। इस भारतीय निशानेबाज ने फाइनल में 50 में से 43 अंक हासिल किए। ये स्कोर सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों में नया विश्व रिकॉर्ड है। ईशा सिंह का यह शूटिंग पदक आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 सीजन में भारत का राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं में पहला व्यक्तिगत पदक भी है। इस स्वर्ण पदक के साथ ईशा ने दिसंबर में इटली के रोम में होने वाले सीजन एंडिंग आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया। अपनी इस ऐतिहासिक जीत के बाद ईशा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं।
1: Munich meant a lot to me. I think everyone in this sport knows the kind of competition that goes on here. I mean, at least in pistol, it's very, very tough. I'm even getting into the top eight is quite tight. And yeah, I really badly wanted to win this one because it's my third time here, and last time I didn't even make it to the final, though it was the same score for the top eight. But yeah, I think I'm very grateful. I loved the experience. I didn't really expect this good shooting to happen, but I focused on myself, my process, and I did my best to execute what I was doing in my training. And yeah, I think I would tell that to anyone who wants to perform their best. And at this one series, I think I was just getting ready to hear the ready command to load, and I could see my left hand shaking really bad. I was like, oh, okay, I'm a little too much. So I tried to like just breathing and like calm myself down, but I had a lot of nerves. But that's the thing. I think in our sport, you can't escape that. You have to face it and just embrace that feeling, because that is what we call experience, and you should be grateful that you're feeling it, and you can note down if you ever felt like you have to work on something. So
0: जर्मनी की टोरेन वेनिंग कैंप ने 50 में से 38 निशाने के साथ रजत पदक जीता, जबकि बुल्गारिया की मिरोस्लावा मिनवेवा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पेरिस 2024 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यांग जी क्वालिफिकेशन में शीर्ष पर रहने के बावजूद फाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं। वहीं भारत के स्टार निशानेबाज मनु भाकर फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं। इसी स्पर्धा में 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक जीतने वाली राही सरनोबत भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं। भारत की अर्शदीप कौर और तेजस्विनी ने रैंकिंग पॉइंट्स ओनली कैटेगरी में हिस्सा लिया। अर्शदीप 44वें और तेजस्विनी 51वें स्थान पर रहीं। इस तरह राइफल, पिस्टल और शॉटगन विश्व कप स्पर्धाओं में यह इस सीजन भारत का तीसरा पदक रहा। इससे पहले स्पेन के ग्रेनेडा में आयोजित राइफल पिस्टल विश्व कप में मुकेश निलावल्ली और पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित शॉटगन विश्व कप में बिवान कपूर और नीरू ढांडा ने मिक्स टीम ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस साल की शुरुआत में ईशा सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक भी जीता था। और इसी प्रतियोगिता से अभी अभी ये खबर आ रही है कि साक्षी पाडेकर ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 635.1 का स्कोर किया, जबकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की चैंपियन इला वेनिल क्लारिवन 19वें और आर्या बोर से 63वें स्थान पर रहीं। अब उम्मीद करते हैं इस इवेंट में भी एक पदक की। और शूटिंग के बाद अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि आईपीएल के मुकाबले शबाब पर हैं। और कल जो मुकाबला हुआ है, अगर हम बात करते हैं कल के क्वालिफायर मुकाबले की, तो जो मुकाबला खेला गया उसमें एक बार फिर से बल्ला चमका है वैभव सूर्यवंशी का। चलते हैं आईपीएल की तरफ। इसे सूर्यवंशी की सुनामी कहें, तूफान कहें या फिर भूचाल, आपका जो दिल करे कहिए, लेकिन सच यही है कि चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में 15 साल के बिहारी बालक वैभव के बवंडर के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का सब कुछ तबाह हो गया। क्रिकेट जगत की इस युवा सनसनी के सामने बेहद अनुभवी कप्तान पैट कमिंस लाचार दिखे तो सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज बेबस। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा और वैभव अपने शहर समस्तीपुर से होकर गुजरने वाली उस अल्लड़ कोसी नदी की तरह हर बाधा को तोड़कर अपनी रौ में बहे जा रहे हैं। कोसी के वेग और तेज वाले मिजाज का एहसास उनकी पूरी पारी के दौरान दिखा।

0: आईपीएल 2026 के इस एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स के साथ साथ सनराइजर्स हैदराबाद का भी सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। हार का मतलब आईपीएल के इस एडिशन में सफर की समाप्ति थी। ऐसे में टॉस हैदराबाद के कप्तान कमिंस ने जीता और बिना वक्त गवाए गेंदबाजी का फैसला ले लिया। टॉस हारने की निराशा राजस्थान के कप्तान रियान पराग के चेहरे पर भी दिखी, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच पर वे भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। लेकिन रियान की निराशा कुछ ही पल में आशा में बदल गई, क्योंकि शुरुआती कुछ गेंदों की खामोशी के बाद वैभव नाम का सूर्य पूरी प्रखरता के साथ अपने बल्ले की चमक बिखेरने लगा था। वैभव के बल्ले से रन निकलते गए और रनों का पहाड़ खड़ा होता रहा। इस दौरान कई रिकॉर्ड सहज अंदाज में बनते चले गए, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन जब 29 गेंदों में 97 रन पर जाकर वैभव की पारी थमी तो क्रिकेट का चाहने वाला हर चेहरा निराश था। प्रफुल्ल लिहिंगे की गेंद पर जब रविचंद्रन स्मरण ने उनका कैच लपका तो पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। वैभव के पैर जैसे मन मन भर भारी हो गए। वो मैदान से बाहर जाने के लिए जैसे तैयार ही नहीं थे। लेकिन जो भी हो, एक बार फिर उनकी बेखौफ पारी ने राजस्थान की मजबूत बुनियाद रख दी। सूर्यवंशी ने हमेशा की तरह कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं था और वे अपने अंदाज में खेलते चले गए।
1: ऐसा मैं दिमाग में नहीं डाल के सोच रहा था, बट वो शॉट मैंने फील्डर को देखकर खेला, इस वजह से वो मिस हुआ शॉट। अगर मैं थर्ड मैन पे ही खेलने जाता तो वो क्लियर हो जाता, बट मैं ऐसा सामने मारने गया इसलिए मेरे से मिस हुआ।
0: उनके बाद ध्रुव जुरेल की 21 गेंदों में 50 रन की पारी ने राजस्थान रॉयल्स को 20 ओवर के बाद 8 विकेट पर 243 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की। आलम ये रहा कि सनराइजर्स के दूसरे गेंदबाजों की बात तो छोड़िए, कप्तान पैट कमिंस ने अपने 4 ओवर में बिना किसी सफलता के 64 रन खर्च कर दिए और आईपीएल इतिहास का यह सबसे महंगा स्पेल रहा। बल्लेबाजों के बाद बारी थी गेंदबाजों की। अनुभवी जोफ्रा आर्चर ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर तूफानी अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेजकर शानदार आगाज किया। इस झटके और बड़े स्कोर के दबाव से सनराइजर्स हैदराबाद फिर कभी उबर नहीं पाई। हालांकि तीसरे नंबर पर ईशान किशन के 11 गेंदों पर 33 रन और फिर नीतीश रेड्डी और सलील अरोड़ा की छोटी छोटी पारियों ने बुझते चिराग में जैसे थोड़ी देर के लिए उष्मा का संचार किया। लेकिन पूरी टीम 19 ओवर और 2 गेंद में 196 रन पर सिमट गई। इस तरह 47 रनों की बड़ी जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने शानदार अंदाज में क्वालिफायर 2 में जगह बना ली। अब फाइनल में जगह बनाने के लिए कल उसकी टक्कर गुजरात टाइटंस से इसी मैदान पर होगी। न्यू चंडीगढ़ का यह मैदान राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद खास रहा है। इस मैदान पर उसने अब तक 4 मैच खेले हैं और चारों में उसे जीत मिली है। ऐसे में आरसीबी के हाथों क्वालिफायर 1 में बड़ी शिकस्त खाने वाले गुजरात टाइटंस अब राजस्थान से किस तरह मुकाबला करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ जहां छोटे कद के वैभव के बल्ले की विशाल चमक राजस्थान का हौसला 7वें आसमान पर कर रहा होगा, वहीं गुजरात को अपने बिखरे हौसले को समेटकर और सहेजकर मैदान पर उतरना होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि दूसरा क्वालिफायर भी शानदार होगा। तो हम आपको बता दें कि ये एलिमिनेटर मुकाबला था और चूंकि इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पराजित हो गई तो वो अब आईपीएल 2026 से बाहर हो गई है और दूसरा क्वालिफायर मैच, जैसा हमने आपको बताया, कि कल खेला जाएगा। और अब जानते हैं कि क्या कुछ रिकॉर्ड कल अपनी पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने बनाए।

15 वर्षीय सूर्यवंशी के बल्ले का वैभव क्रिकेट की दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। बिहार की मिट्टी में जन्मे और तपे इस बल्लेबाज ने कल 29 गेंदों में 5 चौके और 12 छक्कों वाली 97 रन की तूफानी पारी में न सिर्फ कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए बल्कि कई नई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। पहले तो वैभव ने 16 गेंद में 50 पूरी करके आईपीएल प्लेऑफ में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के सुरेश रैना के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उन्होंने पांचवीं बार 20 से कम गेंदों में अर्धशतक जड़ा। पावर प्ले के दौरान वैभव ने 8 छक्के जड़े और पहले 6 ओवर में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने सनत जयसूर्या, जॉस बटलर और जॉनी बेरेस्टो को पीछे छोड़ा। वैभव ने मुल्लपुर में पावर प्ले में अपना 5वां 50 प्लस का स्कोर बनाया। वे आईपीएल में पावर प्ले में सबसे ज्यादा बार 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। वैभव ने एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 12 छक्कों की पारी के दौरान 7वां सिक्स लगाते ही गेल के 59 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वैभव के छक्कों की संख्या 65 तक पहुंच गई है। वैभव ने हैदराबाद के खिलाफ पावर प्ले में 23 गेंद पर 71 रन बनाए। वे आईपीएल की एक सीजन में पावर प्ले में सबसे ज्यादा 400

0: 90 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वैभव के रिकॉर्ड के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले अब जान लेते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी कोच जेम्स फ्रैंकलिन का उनकी अद्भुत बल्लेबाजी के बारे में क्या कहना है।
1: It's just his talent. He's an amazing talent that he can then start playing around with that and then start to cause the bowlers to have to go to other places, which tend to then go back into his strength. So, yeah, just another amazing innings from an amazing talent.
0: वैभव के रिकॉर्ड के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ अपनी पारी में 12 छक्के जड़े। ये चौथी बार है जब उन्होंने एक ही पारी में 10 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं। उन्होंने इस मामले में क्रिस गेल की बराबरी की, जिन्होंने 4 बार ये कारनामा किया है। वैभव 12 सिक्स की इस पारी के साथ ही आईपीएल प्लेऑफ की एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पहले रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम पर था, जिन्होंने 2023 प्लेऑफ में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर 10 छक्के लगाए थे। वैभव आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय भी बन गए हैं। मैच में 12 छक्के लगाते हुए उन्होंने इस साल हैदराबाद के खिलाफ लगाए 12 सिक्स के अपने रिकॉर्ड की ही बराबरी की। वैभव ने 97 रन की पारी के साथ इस सीजन अब तक 680 रन बना लिए हैं। वे आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज बन गए हैं। पहले ये रिकॉर्ड उनके ही साथी यशस्वी जायसवाल के नाम था, जिन्होंने 2023 में राजस्थान के लिए 625 रन बनाए थे। वैभव ने हैदराबाद के खिलाफ 334.48 के स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। वे आईपीएल में 300 या उससे अधिक के स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 3 बार 50 प्लस का स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने निकोलस पूरन और जैक फ्रेजर मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि बल्लों से रनों की आग उगलने वाले सूर्यवंशी ने अब तक कुल 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर लिया है। उनकी इस विलक्षण प्रतिभा से टीम के उनके सीनियर साथी ध्रुव जुरेल भी अभिभूत दिखे।
1: बेस्ट थिंग अबाउट वैभव व्हिच आई नोटिस इज ही डजंट प्लान एनीथिंग बिकॉज ही प्रैक्टिस अ लॉट एंड ही ऑलवेज बैक हिमसेल्फ। दैट्स व्हाट ही डज एवरी टाइम व्हेन ही गो आउट एंड प्ले। सो द बेस्ट थिंग अबाउट हिमसेल्फ इज लाइक ही बैक्स हिमसेल्फ एंड ही डजंट हैव दैट शैडो ऑफ डाउट दैट आई एम नॉट एबल टू डू इट।
0: अब इंतजार कल के मैच का है। उम्मीद है कि वैभव के बल्ले की धार इस मैच में भी दिखेगी और कई और रिकॉर्ड भी टूटेंगे। तो ये थी बात आईपीएल की। अब बात महिला क्रिकेट की, क्योंकि भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच T20 मैच की सीरीज आज से शुरू हो रही है। बताइए आलोक, क्या कुछ है इस श्रृंखला के बारे में जानकारी?
2: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। पहला मैच चेम्सफोर्ड के एम्बेसडर क्रूज लाइन ग्राउंड में खेला जाएगा, जिसके बाद दूसरा मैच ब्रिस्टल के सीट यूनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरा मैच टॉन्टन के कूपर एसोसिएशन काउंटी ग्राउंड में होना है। आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की रैंकिंग तीसरी है, जबकि मेजबान इंग्लैंड की रैंकिंग दूसरी है। हरमनप्रीत कौर टीम का नेतृत्व जारी रखेगी, क्योंकि भारत अगले महीने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से पहले अपने संयोजनों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। महिला T20 विश्व कप के लिए भारत की तैयारी पिछले साल दिसंबर में घरेलू मैदान पर श्रीलंका पर 5-0 की क्लीन स्वीप के साथ हुई। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से जीत हासिल कर इतिहास रचा, जो एक दशक में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वहां पहली द्विपक्षीय श्रृंखला जीत थी। हालांकि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम को शर्मिंदगी झेलना पड़ी, जहां भारत को निराशाजनक तरीके से 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड सीरीज भारत को 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20 विश्व कप 2026 के पहले मैच से पहले निरंतरता हासिल करने और आदर्श संयोजन पर समझौता करने का एक अंतिम अवसर देगी। रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौर, अनदति रेड्डी के तेज गेंदबाजी लाइनअप का नेतृत्व करने की उम्मीद है, जबकि टीम प्रबंधन महिला प्रीमियर लीग में प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ नई खिलाड़ी नंदनी शर्मा को मौका दे सकती है। साउथ अफ्रीका सीरीज मिस करने के बाद राधा यादव और यशिका भाटिका टीम में वापस आई है। भारत की पहली पसंद विकेटकीपर यशिका ACL इंजरी से बाहर थी, जबकि राधा की वापसी से स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूती आएगी, जिसमें दीप्ति शर्मा, श्रीचरणी और श्रेयंका पाटिल शामिल है। इसी बीच इंग्लैंड चार्ली डीन की कप्तानी में T20 विश्व कप चैंपियन न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-1 से सीरीज जीत के बाद मैदान पर उतरेगी। रेगुलर कप्तान नेट सेवर ब्रंट फिडली की चोट से उभर रही है। कुल मिलाकर दोनों टीमों के बीच 35 बार अभी तक मुकाबले हुए, जिस इंग्लैंड ने 24 बार जीता है, जबकि भारत को 11 मैच में सफलता हासिल की है। दोनों टीमें आखिरी बार जुलाई 2025 में मिली थी, जब भारत ने इंग्लैंड को अपनी पहली बायलेटरल महिला T20 सीरीज में 3-2 से हरा करके इतिहास रचा था। सीरीज की बात किया जाए, इसका पहला मैच खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार रात के 11 बजे से यह मैच शुरू होगा, जबकि इसका दूसरा मैच 30 मई को खेला जाएगा और जो भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे शुरू होगा, जबकि अंतिम मुकाबला 2 जून को खेला जाएगा और ये मैच भारतीय समय अनुसार रात के 11 बजे शुरू होगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस श्रृंखला और विश्व कप को लेकर के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा।
3: सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द वर्ल्ड कप एंड गुड दैट यू नो वी आर गेटिंग दिस कंडीशंस बिफोर द वर्ल्ड कप सो दैट वी कैन गेट यूज्ड टू इट एंड प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग एंड वी ऑल लव प्लेइंग इन इंग्लैंड कंडीशंस एंड अगेंस्ट इंग्लैंड सो होपफुली यू नो विल गेट everything from this series what we need and this series will definitely give us a lot of confidence going ahead to the T20 World Cup. We love playing in England conditions because of the weather and conditions here because you know we always played under tough conditions but England conditions are quite you know easy for us so I think the only challenge is the pitches because we are not you know used to these kind of pitches but I think this series will give us little bit confidence and experience before the T20 World Cup.
0: और अब बात शतरंज की। शतरंज के बोर्ड से भारत के लिए बेहद अच्छी खबर है, जहां नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंदा ने तीसरे राउंड में बड़ा उलटफेर करते हुए वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। प्रज्ञानंदा ने 2024 में पहली बार मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल मुकाबले में हराया था। अब इस भारतीय खिलाड़ी ने फिर से वही कारनामा कर दिया है। इस बार भी उन्होंने क्लासेन को नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में ही मात दी है। तीसरे राउंड के मुकाबले से पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर के सिर्फ 1 पॉइंट थे। क्लासिकल शतरंज में प्रज्ञानंदा की ये जो है कार्लसन पर बहुत जबरदस्त जीत है, क्योंकि कार्लसन को इतनी करारी शिकस्त मिलेगी इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की होगी। इस बाजी में 20 साल के आर प्रज्ञानंदा ने सफेद मोहरों से खेलते हुए 5 बार के विश्व चैंपियन को 46 चालों में हरा दिया। 44वीं चाल पर एक बड़ी गलती करने के बाद कार्लसन ज्यादा समय नहीं टिक पाए और 2 चाल बाद ही हार मान ली। इस जीत के बाद आर प्रज्ञानंदा के 4.5 अंक हो गए हैं। वो स्टैंडिंग में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले राउंड में उन्होंने अमेरिका के वेस्ली सो को आर्मगेडन में हराया था और 1.5 अंक अर्जित किए थे, लेकिन दूसरे राउंड में अलीरेजा फिरोजा से हार गए थे। अपनी इस जीत के बाद प्रज्ञानंदा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं।
4: I think I was just lucky. Yeah, I just missed the rook of 1c6 idea. I should be lost, I think, if not for that. I don't think he needs to take on d6. So yeah, at some point I was like, I lost control and I was not happy. I was also low on time, but yeah, somehow things turned around for me.
0: चेस इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार मैग्नस कार्लसन का अपने घरेलू टूर्नामेंट में प्रदर्शन अभी तक निराशाजनक रहा है। उन्हें पहले राउंड में फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा के खिलाफ हार मिली थी। इसके बाद उन्होंने विंसेंट कीमर को टाई ब्रेकर में हराया। अब चेन्नई के खिलाड़ी ने तीसरे राउंड के मुकाबले में उन्हें शिकस्त दी। 3 राउंड के बाद 1.5 अंक लेकर वह 6 खिलाड़ियों के स्टैंडिंग में सबसे नीचे 6ठे स्थान पर पिछड़ गए हैं। 2013 में वे नॉर्वे चेस की शुरुआत हुई थी। अभी तक 13 क्लासिकल टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन ने 7 में जीत हासिल की है। आखिरी 14 की अगर बात करते हैं तो वो शानदार रहा है उनके लिए। पिछले 7 साल में वे 6 बार विजेता रहे हैं। वहीं डी गुकेश और अलीरेजा फिरोजा के बीच क्लासिकल बाजी ड्रॉ रही, लेकिन आर्मागेडन में अलीरेजा ने जीत हासिल कर अतिरिक्त अंक हासिल किए। हम आपको बता दें कि क्लासिकल में सीधी जीत पर 3 अंक मिलते हैं, जबकि आर्मागेडन बाजी में जीतने पर 1.5 अंक हासिल होते हैं। पुरुषों की वर्तमान स्टैंडिंग के अनुसार फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा ने अपनी बढ़त कायम रखी है और 7.5 अंकों के साथ पहले नंबर पर हैं। भारत के प्रज्ञानंदा के 4.5 अंक हैं और वह 2रे स्थान पर हैं। अमेरिका के वेस्ली सो 4 अंक के साथ 3रे स्थान पर हैं। वर्तमान विश्व चैंपियन भारत के डी गुकेश 3.5 अंक लेकर 4थे और विंसेंट कीमर 3 अंक लेकर कार्लसन से ऊपर 5वें नंबर पर हैं। उधर महिला वर्ग में तीसरे राउंड में भारतीय खिलाड़ियों में कोनुरु हम्पी का मुकाबला अन्ना मुजीचुक के साथ क्लासिकल बाजी में ड्रॉ रहा। हालांकि आर्मागेडन में मुजीचुक ने जीत हासिल कर अतिरिक्त अंक जुटाए। दिव्या देशमुख की क्लासिकल बाजी शीर्ष पर चल रही बिबिसारा आसुबायवा के साथ ड्रॉ रही, लेकिन आर्मागेडन में दिव्या ने जीत हासिल कर अतिरिक्त अंक हासिल किए। तीसरे राउंड में महिलाओं की स्टैंडिंग के अनुसार बिबिसारा 5.5 अंक के साथ टॉप पर हैं। उनके साथ आर्मागेडन में जीत के बाद दिव्या देशमुख बिबिसारा के नजदीक 4.5 अंक पर पहुंच गई हैं और 2रे स्थान पर हैं। अन्ना मुजीचुक 4 अंक के साथ 3रे, झू जिनेर इतने ही अंक लेकर 4थे, जू वेंजुन 3 अंक के साथ 5वें और भारत की बेहद अनुभवी खिलाड़ी कोनेरू हम्पी 2 अंक के साथ 6ठे यानी अंतिम स्थान पर हैं। अब चौथे राउंड में पुरुष वर्ग में डी गुकेश का सामना मैग्नस कार्लसन से, विंसेंट कीमर का मुकाबला प्रज्ञानंदा से और वेस्ली सो की बाजी अलीरेजा फिरोजा के साथ होगी। महिला वर्ग में कोनुरु हम्पी बनाम जू जिनेर, बिबिसारा आसुबायवा का मुकाबला

0: जू व्यंजुन से और दिव्या देशमुख की टक्कर अन्ना मुझे चूक से होगी। तो ये बात थी शतरंज की। अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान पर और जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है फुटबॉल के मैदान पर, भारत ने कौन सा मुकाबला खेला रहा है, बता रहे हमारे साथी आलोक।
1: लंदन के द वैली में 2026 यूनिटी कप के सेमीफाइनल में 0-2 से हार गया। भारतीय टीम अब शनिवार को तीसरे स्थान के प्लेऑफ में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी, जबकि जमैका पिछले साल के फाइनल की तरह नाइजीरिया से भिड़ेगी। 2002 के बाद ब्रिटिश धरती पर भारत का यह पहला मैच था। 8वें मिनट में कॉटन क्लार के शुरुआती गोल और 78वें मिनट में कोडम डिक्सन के अकेले किए गए गोल के जमैका को फाइनल में पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे को पहले दिन सेमीफाइनल में नाइजीरिया से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में कई पर्सनल मूवमेंट देखने को मिला। नोफेल पियन और रिकी सोमांग ने सीनियर नेशनल टीम में जमैका के लिए डेब्यू किया, जबकि एडमर्ड लाडीरांगन को भारत के लिए पहली बार खेलने का मौका मिला। 8वें मिनट में जमैका के एक तेज काउंटर ने भारत के गोल को चीर दिया, जिससे गुरप्रीत सिंह संधू एक टाइट एंगल से तेजी से बचाव करना पड़ा। फीफा रैंकिंग में 71वें नंबर पर मौजूद जमैका ने कॉन्फिडेंट के साथ अटैक करना जारी रखा और विंग से भारतीय डिफेंस को भेदा, बड़ी आसानी से स्टेप का फायदा उठाया। 17वें मिनट में डिक्सन ने गोल करके लगभग बढ़त दुगुना कर दी थी, लेकिन सिंधु डटे रहे और हिम्मत से रोक करके भारत को ज्यादा गोल से बचाने लिया। जैसे जैसे हाफ टाइम आगे बढ़ा, इंडिया धीरे धीरे संभलने लगा। कुछ अच्छी पासिंग और कंट्रोल पोजीशन पल दिखे, जिससे आखिरी तीसरे हिस्से में ब्लू टाइगर्स के क्रिएटिविटी की कमी दिखी। रियान विल्सन और चांगटे लाडीरिंगा जूझते रहे और भारत जमैका के गोलकीपर कोनियन बायल्स क्लार्क को बिना ज्यादा आजमाए हाफ टाइम तक मैच पहुंच गई। लेकिन ब्रेक के बाद भारत ज्यादा जोश और भरोसे के साथ मैदान पर उतरा। जमैका के डिफेंस और गोलकीपर की गलती के बाद 53वें मिनट में ब्लू टाइगर्स को लगभग लाइफलाइन मिल गई थी। रोशन ने एक लूज बॉल पकड़ी और हाफ टाइम में स्ट्राइकर लाडीरिंगा की जगह रहीम अली को गोल के पास दिया। हालांकि ऑफसाइड हो गई, जिससे चांगटे का खाली नेट में गया और गोल नहीं गिना गया। हालांकि इस मौके ने मैच का मोमेंटम बदल दिया। भारत अचानक जानदार दिखने लगा। खालिद जमील के खिलाड़ियों ने मैच जीतने की कोशिश की, पिच पर ऊपर की ओर दबाव बनाया, जमैका के डिफेंस को और भी ज्यादा इरादों से परखा। आखिरकार उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए, जिससे जमैका को मुकाबले में अपने सबसे अच्छे दौर के दौरान बैटपुट पर जाना पड़ा। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि भारत वापसी कर लेगा, तभी डिक्सन ने एक जादुई पल दिखाया, जिससे उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। चार्ल्टन एथलेटिक्स के विंगर ने, जो होम स्टेडियम में खेल रहे थे, 78वें मिनट में एरिया के किनारे से पास बॉल दी और शानदार फुटबॉल के साथ डिफेंडर को छका दिया। कंधे पर एक तेज शॉट मारकर उन्होंने जगह बनाई और फिर आकाश मिश्रा के पैरों के बीच से एक नीचा शॉट मारकर सिंधु के पार निचले कोने में पहुंचा दिया।
0: फुटबॉल से ही जुड़ी एक और खबर है। भारतीय अंडर 20 पुरुष फुटबॉल टीम को एफसी अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर के ग्रुप बी में उज्बेकिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। टूर्नामेंट के मैच 25 अगस्त से 6 सितंबर 2026 के बीच ताशकंद उज्बेकिस्तान में सेंट्रलाइज्ड प्रारूप में खेले जाएंगे। भारतीय टीम, जिसे ब्लू कोट्स भी कहा जाता है, 2006 के बाद से इस टूर्नामेंट में पहली बार क्वालिफाई करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। क्वालिफिकेशन चरण में 32 टीमों को 8 समूहों में विभाजित किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी 8 ग्रुपों के विजेता और 7 सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमें फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। उज्बेकिस्तान को ग्रुप बी का मेजबान बनाया गया है। भारतीय टीम अपनी रैंकिंग के आधार पर पॉट 3 में थी और ये जो मुकाबले होंगे बड़े दिलचस्प मुकाबले होने वाले हैं। फुटबॉल के बाद अब चल लेते हैं हॉकी के मैदान की तरफ। खबर हॉकी से यह है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत हासिल करते हुए 4 मुकाबलों की दोस्ताना श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर दिया। पर्थ हॉकी स्टेडियम में भारतीय टीम ने आखिरी क्वार्टर में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मैच को 1-1 से ड्रॉ कराया, जिसके बाद शूट आउट में उसने 4-2 से जीत हासिल की। मुकाबले के 10वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया ने ओलिविया डाउन्स के गोल की बदौलत बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन विरोधी टीम पर लगातार दबाव बना रही भारतीय टीम के लिए 46वें मिनट में शीला चानू पुखरम्बम ने आखिरी क्वार्टर में गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। शूट आउट में मेहमान टीम 4-2 से विजयी रही, जिसमें नवनीत कौर, इशिका चौधरी, अन्नू और ऋतुजा दादासो पिसाल ने गोल किए। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 4 मुकाबलों की फ्रेंडली सीरीज मंगलवार को एक कड़े मुकाबले के साथ शुरू हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में 2-1 से करीबी जीत हासिल की थी। सीरीज का तीसरा मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे कल इसी स्टेडियम पर खेला जाएगा। और आलोक, अब और आपके पास क्या जानकारी है वो बताइए।
1: जी, जानकारी ये है कि 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो चल रही है, उसमें उससे एक अच्छी खबर आई है। भारत के निपाम ने जो एशियन एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप चल रही है, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है 100 मीटर में। उन्होंने आज अंडर 20 नेशनल रिकॉर्ड होल्डर जो है निपाम ने एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में फाइनल में 11.62 सेकंड का टाइम निकाल करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले निपाम ने हाल में ही जूनियर फेडरेशन कप में 11.53 सेकंड के साथ जूनियर अंडर 20 रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा बात करें जाए तो उसी प्रतियोगिता की तो भारत के आशुवेद प्रताप सिंह और अमन प्रताप सिंह सातवें और आठवें स्थान पर रहे क्रमशः। ये बात कर रहे हैं हम हैमर थ्रो की। प्रताप सिंह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 64.34 मीटर का जबकि अमन का सर्वश्रेष्ठ रहा 63.40 मीटर का।
0: जी और बैडमिंटन की बात तो हमने की नहीं तो वो बात भी कर लेते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन से हर वर्ग में भारत के लिए कुछ अच्छी खबर है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन जारी है और वो सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स वर्ग के मुकाबले में जापान की रिको गुंजी को 37 मिनट तक चले मुकाबले में 21-9, 21-12 से आसानी से हराया और अगले दौर में जगह बना ली। सिंधु के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली है क्योंकि उन्हें अंतिम 8 दौर में कल कोरिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त आन सी यंग का सामना करना पड़ेगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन को भी जीत मिली है। प्री क्वार्टर फाइनल में उनके प्रतिद्वंदी विश्व में दूसरी वरीयता प्राप्त थाईलैंड के कुलनावत वितित सारन के मैदान छोड़ देने से लक्ष्य को क्वार्टर फाइनल में जगह मिली। घायल कुलनावत ने जब मैदान छोड़ा उस समय पहले गेम में लक्ष्य 2-0 से आगे थे। एक अन्य पुरुष सिंगल्स मैच में एचएस प्रणय को हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें सिंगापुर के लो केन येव ने पराजित किया है। हम आपको बता दें कि प्रणय ने पिछले दौर में विश्व के 5वीं वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराकर उलटफेर किया था। उधर भारत की चौथी वरीयता प्राप्त मेंस डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे के ली जी हुई और यांग पो सुआन की जोड़ी को 21-15, 11-21, 21-18 से हराया। सात्विक चिराग का सामना अब मलेशिया के खाई जिंग कांग और आरोन ताई की जोड़ी से होगा। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रही। इस जोड़ी ने जापान के युता वातानावे और माया तायुची को 8-21, 21-17, 21-16 से मात दी। तो बैडमिंटन के कोर्ट से यह अच्छी खबर है। आलोक
1: जी अब टेनिस की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन चल रहा है। भारतीय दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो मिश्रित युगल में भारत की युकी भामरी और उनके रूसी जोड़ीदार अलेक्जेंड्रो पोनोवा का मुकाबला आज डच और यूक्रेनी जोड़ी डेविस पेल और लुआडमिला किचेनोव से होगा। वही भारत के मेंस डबल्स में बात किया जाए तो अनिरुद्ध चंद्रशेखर और उनके जापानी जोड़ीदार ताकारू योजुकी का मुकाबला आज मार्कस विलिस और जेकब पॉल के साथ था। ये दोनों ये जोड़ी स्विस और ब्रिटेन की है। उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। स्कोर रहा 3-6, 7-6 और 7-6 का।
0: और वियतनाम के डा नैंग में भारतीय पुरुषों की फ्रीस्टाइल टीम अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में निर्विवाद चैंपियन बनकर उभरी जबकि देश ने अलग अलग वर्ग में कुल 27 पदक जीतकर अपना अभियान खत्म किया। फ्रीस्टाइल टीम ने किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे ताकतवर देशों को पीछे छोड़ते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। ये दोनों देश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। भारत ने फ्रीस्टाइल महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन वर्ग में 11 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। चैंपियनशिप जीतने वाली फ्रीस्टाइल टीम ने 9 पदक के साथ अपना अभियान खत्म किया जिसमें 4 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं आलोक कि आज के हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे यानी धर्मेंद्र और मेरे सहयोगी
1: आलोक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा

0: कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धरमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डी के शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों के कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एकदा अवैध प्रवासीनां अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षा सुदृढ़ीकर्तुं च सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनरपि दृढ़तया प्रतिपादितवान्। गांधीनगरे चत्वारिंशदधिकत्रिंशत् कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां सम्बोधयन् श्रीशाहः पश्चिमबंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्रीशाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामीनां ओलंपिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्व आरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षा करिष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य CBSE इति द्वादश कक्षायाः मूल्यांकनं प्रक्रियायां सहैव एतस्य नूतन पटलाधारित अंकन प्रणाल्यां च जातानां प्राविधिक त्रुटीनां च संज्ञानं गृहीतवान्। मंत्रिणाम् एतेषां विसंगतीनां विषये छात्राणां शंका समानार्थं दृढ आश्वासनं प्रदत्तं। शिक्षामंत्री प्रोक्तं यत् इयं पटलाधारित अंकन प्रणाली पारदर्शितां सुनिश्चेतुं कश्चन प्रगतिशील उपायात्मक मञ्चः वर्तते। सः नवदिल्ल्यां CBSE अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विधाय अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे अधिकारिणः इदं सुनिश्चयन्ति यत् कस्यापि छात्रस्य जिज्ञासा यथावत् न तिष्ठेत तथा च सर्वेषु स्तरेषु उत्तरदायित्वं सुदृढं स्यात्।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: पुर ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यतनः दिवसः भारतस्य कृते अतीव गौरवपूर्णः आसीत्। भारतस्य प्रमुख क्रीडकाः लक्ष्य सेनः, PV सिंधु, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंगी रेड्डी इत्यनयोः पुरुष युगलदलं तथा च ध्रुव कपिल तनीसा क्रेष्टो इत्यनयोः मिश्रित युगलदलं च स्व स्व प्रतिस्पर्धासु विजयं प्राप्य प्रागुपान्त्य चक्रे प्रविष्टवन्तः। महिला एकल क्रीडायां षोडश चक्रे PV सिंधु जापान देशस्य रीको गुंजी 21:09, 21:12 इत्यंकांतरालेन पराजितवती। आगामी स्पर्धायां सा दक्षिण कोरिया देशस्य NK यंग इत्यनेन सह स्पर्धिष्यन्ते। अत्रांतरे पुरुष एकल क्रीडायां थाईलैंड देशस्य द्वितीय वारीयता प्राप्त क्रीडक कुनलावुत विदित सारनः स्पर्धायाः आरंभे एव आहतो भूत्वा क्रीडांगणात् बहिर्जातः, येन लक्ष्यसेनः आशयान स्वकीय स्थानं सुरक्षितवान् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम राम।
1: राम
0: अतुल भाई,
1: जी
0: जैसा कि
1: पहले।
0: हमारे सभी भाई बहन जानते हैं कि आज बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन हमारा खास कार्यक्रम होता है, जो कि होता है SMS पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम। और भाई, खास दिन के बारे में तो हम चर्चा करते ही रहते हैं।
1: बिल्कुल
0: और देखिए, आकाशवाणी, अगर आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो की हम बात करें, तो इसने राष्ट्र और दुनिया में भारत की जो

0: आवाज़ पहुंचाने के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं, और साथ ही साथ इसे 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा यानी कि ISBS का नाम बदलकर अखिल भारतीय रेडियो AIR किया गया था। सन 1956 में इसे औपचारिक रूप से आकाशवाणी का नाम दिया गया।
1: बिल्कुल। और देखिए, आकाशवाणी के माध्यम से ही, जैसा कि आप बता रही हैं, हमारे कार्यक्रम ग्राम संसार, कृषि जगत, मिट्टी की महक और कृषि चर्चा जो घर घर तक पहुंची है और हमारे किसान भाइयों को, किसानों को उनका लाभ मिला है।
0: बिल्कुल, और बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम आकाशवाणी द्वारा अपने सभी जो हमारे श्रोता हैं, सभी श्रोताओं तक पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए, आज एक और जयंती भी है, वीर सावरकर जयंती है, जो कि प्रतिवर्ष 28 मई को मनाई जाती है। और देखिए, यही है कि महाराष्ट्र के नासिक के पास भागपुर गांव में 1883 में इनका जन्म हुआ, और वे भारत के स्वतंत्र संग्राम में एक प्रमुख और बहुआयामी व्यक्तित्व थे। तो हम भी उनको सत सत नमन करते हैं।
0: बिल्कुल, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे कार्यक्रम में आज के जो पहले कलाकार हैं वो हैं बाली राम, और बाली राम के लिए हमारे पास बहुत सारे SMS आ चुके हैं अतुल भाई। पहला SMS जो आया है ये आया है एकता कॉलोनी रोहतक से। भेजने वाले भाई हैं सीताराम कांगड़ा और उनका समस्त परिवार। ये SMS हमारे पास आया है सारिमपुर बक्सर से। भेजने वाले भाई हैं राज SD अंसारी और इनका परिवार, डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी और इनका परिवार, बक्सर बिहार से ही सरफुद्दीन अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: ये SMS हमारे पास में आया है गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा से। भेजने वाले हैं राधे श्याम शर्मा और इनका पूरा परिवार। वडिंगखेड़ा पंजाब से हमें फरमाइश भेज रहे हैं मिंटू टॉम्स और इनका पूरा परिवार। चंडीगढ़ से हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं सतीश अनेजा और इनका पूरा परिवार। गाँव रावत खेड़ा, जिला हिसार, हरियाणा से फरमाइश भेज रहे हैं सियाराम भादू और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है दादरी गेट भिवानी से, भेजने वाले हैं कृष्ण मेहरा और इनका पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से भी हमारे पास में फरमाइश आई है कमलेश कुमार साहू और इनके पूरे परिवार की। गांव फरासी, जिला हिसार से फरमाइश भेज रहे हैं राजकुमार डूडी और इनका पूरा परिवार।
0: पलारी छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजी है नितेश कुमार देवांगन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से हमें भेजी है मोहम्मद अनवर अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से ये फरमाइश आई है विनोद बरासा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। साथ ही साथ ग्राम ममाना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भी हमें फरमाइश भेजी है रामशरण विश्वकर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है विजेंद्र विश्वकर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की, और ये फरमाइश हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें फरमाइश भेजी है।
1: भोला कलोनी घरौना, जिला करनाल, हरियाणा से फरमाइश भेज रहे हैं विजेंद्र कुमार जयजान और उनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है भटिंडा रोड मंडी डब्वाली से, भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग और इनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं रजाक मोहम्मद और इनका पूरा परिवार। और मकड़ ज्योति, ये हमें फरमाइश भेज रही हैं भाई पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से। जसपुर उत्तराखंड से फरमाइश भेज रहे हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी और उनका पूरा परिवार। गुलाम रोड हर गोविंद नगर नवा शहर पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेंद्र संधू और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, भेजने वाले हैं सुरेश ग्रोवर और इनका पूरा परिवार। भोपालगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं धर्मेंद्र छीपा और इनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश आई है हमारे पास रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। भेजने वाले भाई हैं लालगिरी गोस्वामी और इनके परिवार के सभी सदस्य। जनकपुरी सहारनपुर से हमें फरमाइश भेजी है डॉन जॉन डिकेस्ट्रो और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ और परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू, और इन्होंने ये फरमाइश हमें भेजी है कलेर बिहार से, और इनके सभी परिवार के सदस्यों ने भी सुनना चाहा है बाली राम को। और ये फरमाइश हमारे पास आई है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामणि से, और ये फरमाइश हमारे पास आई है टाणा नरसान भिवानी से। भेजने वाले भाई हैं जगदीश चिंडालिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनवाते हैं बाली राम से ये रागनी।

0: तो अभी हमारे भाई सुन रहे थे बालीराम से या रागनी, और जो हमारे अगले कलाकार हैं वो हैं ब्रजपाल सिंह। और ब्रजपाल सिंह के लिए भी अतुल भाई हमारे पास SMS आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, और ये SMS हमारे पास में आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से भेजने वाले हैं PS नहावकर, उनका पूरा परिवार। और ये SMS हमारे पास में आया है अनारकली बाजार जगराओं से भेजने वाले हैं सुनील पाठक और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है दुर्गा कलानी हांसी से भेजने वाले हैं राजू मिगलानी और उनका पूरा परिवार। शादुल शहर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं राम कुमार रेवाड़ और उनका पूरा परिवार। राजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं उदयवान पाल और उनका पूरा परिवार। पटेल नगर मैलोट से फरमाइश भेज रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया और उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं राष्ट्रपाल गजबीये और उनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमारे पास आई है नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका से भेजने वाले भाई हैं रमन वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमारे पास आई है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से भेजने वाले हैं मुसर्रत जहां नाज और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है आदर्श नगर मॉल मैलोट पंजाब से भेजने वाले भाई हैं राज शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से फरमाइश भेजी है रवि कुमार राहुल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। मेरठ से फरमाइश भेजी है दिग्दर्शन और कविता कौर ने। ये फरमाइश हमें भेजी है गोविंदगढ़ माझीवाला से भेजने वाले भाई हैं राजू टुटेजा खुशदिल और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश आई है हमारे पास लोहडाडा जिला बागपत से भेजने वाले हैं जगमोहन सिंह प्रजापत और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतौड़ और इनके परिवार के सदस्यों ने। चौधरीवास हिसार से राजू अग्रवाल केशव और इनके परिवार के सदस्य। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार और परिवार के सदस्य।
1: ये फरमाइश हमारे पास में आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से भेजने वाले हैं मुकेश बत्ता और उनका पूरा परिवार। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं विक्रम कटवासरा और उनका पूरा परिवार। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं देवशंकर तामुरिया और उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है भाई बलवंत जाखड़ की, जो भेज रहे हैं बहरवाला खुर्द सिरसा से। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है हनुमानगढ़ टाउन से भेजने वाले हैं सुल्तान सिंह तरार और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं दिनेश वर्मा उनका पूरा परिवार। जलालाबाद वेस्ट से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश गगनेजा उनका पूरा परिवार। कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से फरमाइश भेज रहे हैं ओम प्रकाश राय। तो भी है नेवादा जिला गाजीपुर से फरमाइश भेज रहे हैं प्रतीक राय। गाँव चौहलदा बागपत से फरमाइश भेज रहे हैं संजय ढींगिया उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में ही गाँव नथाना पंजाब से भेजने वाले हैं हरजिंदर सिंह छिंदा और उनका पूरा परिवार। ऊपरकोट मोहला चौकुंटी बुलंदशहर से भी फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी और उनका पूरा परिवार। और ये रावर करनाल से फरमाइश भेज रहे हैं ज्ञान भूषण शर्मा और इनका पूरा परिवार। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश भेज रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी और उनका पूरा परिवार। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से फरमाइश भेज रहे हैं अनिल मोहन और इनका पूरा परिवार।
0: गांव लोहगढ़ ठकरावाला से स्वर्ण सिंह गिल और इनके परिवार के सदस्य। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश भेजी है रोशन लाल देवांगन और इनके परिवार के सदस्यों ने। जटवाड़ा गाजियाबाद से फरमाइश भेजी है शीशपाल अकेला। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से फरमाइश आई है अनिल मोहन और इनके परिवार के सभी सदस्यों की।

0: आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से फरमाइश भेजने वाले भाई हैं ताज मोहम्मद अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर ब्रजपाल सिंह चनौरा की आवाज़ में ये रागनी।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे ब्रजपाल सिंह चरोरा की आवाज में ये रागनी।
1: और अतुल भाई, ये किस्सा था श्रवण कुमार का और इस मौके की रागनी, जब राजा दशरथ ने जो है शब्द भेदी बाण चलाया श्रवण कुमार के पानी भरने की गढ़े की आवाज़ पर, तो उस मौके की रागनी हमने अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाई।
0: बिल्कुल। और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं बिशन सिंह, और बिशन सिंह के लिए भी हमारे पास में SMS आ गए हैं पायल बहन। ये SMS हमारे पास में आया है गांव माई चागरे टिंडा गौतम बुद्ध नगर से, भेजने वाले हैं कंचित शर्मा, शतपाल शर्मा, मास्टर बनी सिंह, मास्टर देवेंद्र सिंह, सर्विस गिरी महाराज, कुमारी तनु, शिव कुमार शर्मा और पवन शर्मा का हमें SMS मिला है। और ये SMS हमें मिला है गाँव चंदन की मंडैया पोस्ट गुलावठी जनपद बुलंद शहर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं बुल्ले प्रधान, संजू सिंह, सुभाष सिंह, सुरेंद्र सिंह, दिगराज सिंह और भाई करतार सिंह का हमें SMS मिला है, जो सुनना चाहते हैं बिशन सिंह की आवाज़ में ही रागनी। और ये SMS हमारे पास में है गाँव नत्थुगढ़ी पोस्ट गुलावटी जनपद बुलंदशहर से, भेजने वाले इंद्रवीर सिंह तेवतिया, मधु देवी, शीतल देवी, साक्षी, प्रिंस, छोटू, प्रत्यक्ष और निष्कर्ष तेवतिया का भी हमें SMS मिला है।
1: अतुल भाई, हम जो अब रागनी सुनवाने वाले हैं अपने सभी श्रोताओं को, सभी भाई बहनों को, बिशन सिंह की आवाज़ में उसका जो किस्सा रहेगा वो रहेगा नल दमयंती का, और उस मौके की रागनी रहेगी जब जंगल में नल दमयंती दोनों जो है वो अपने नगर से बाहर निकल जाते हैं, और जंगल में जब राजा नल दमयंती से अलग हो जाते हैं, जो कलयुग की माया होती है उस माया से राजा नल की मति भ्रमित हो जाती है, और वो दमयंती को सोती हुई छोड़ के जंगल में और चल देते हैं, और जब जंगल में थोड़ी दूर जाते हैं और चले जाते हैं तो तब उन्हें दमयंती का ख्याल आता है, और दमयंती के ख्याल में तब वो इस रागनी का, उस मौके की ये रागनी बिशन सिंह द्वारा हम सुना रहे हैं। बोल हैं, सर पे धरा पाप का भार, सूती छोड़ जाई बेकार। तो आइए सुनते हैं बिशन सिंह की आवाज़ में ये रागनी।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
8: राम राम, राम।
7: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता थे तुषार पारासा।

0: अभी आप ग्राम संसार कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नामित मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारमैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री डी के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प।

0: और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबोरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबोरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड़ी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांचा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाई बहनों को हमारी
1: राम
0: राम राम।
1: तो भाई बहन हम हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के, और देखिए आज हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए लेकर के आए हैं एक रेडियो रिपोर्ट, रेडियो रिपोर्ट ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कंपेरिजन 2026। तो सुनते हैं ये रेडियो रिपोर्ट।
2: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय

0: कृषि सम्मेलन का आयोजन 28 मई से 29 मई 2026 तक NASC कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में किया जा रहा है। आज दिनांक 28 मई 2026 को इस सम्मेलन का उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्यों के कृषि मंत्रियों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICAR, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। राष्ट्रीय खरीफ अभियान 2026 सम्मेलन देश के कृषि क्षेत्र की दिशा और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। कार्यक्रम के स्वागत अभिभाषण में श्री आतिश चंद्रा, सचिव कृषि मंत्रालय ने दो दिनों के सम्मेलन की रूपरेखा और यह सम्मेलन किन मायनों में खास है यह बताते हुए कहा,
1: आदरणीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री भगीरथ चौधरी जी, यहाँ उपस्थित ICAR के DG एवं सेक्रेटरी डेयर डॉक्टर ML जाट जी, एडिशनल सेक्रेटरीज ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मनिंदर, प्रमोद एंड अंकिता, जॉइंट सेक्रेटरी संजय, यहाँ उपस्थित राज्यों से आए सभी सचिवगण, वरीय अधिकारीगण, कृषि विभाग और ICAR के अधिकारीगण, देखिए इस साल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, सर्वप्रथम मैं आप सभी का इसमें हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये आयोजन है, इसका Day 1 थीमेटिक डिस्कशंस के लिए डेडिकेटेड है और सेकेंड डे में हम पॉलिसी लेवल डिस्कशंस करेंगे। तो Day 1 में अभी इनॉग्रल फंक्शन है, इसके बाद हम लोग 3 थीम्स पर आज का डिस्कशन उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो पहली थीम है वो आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो सेकंड थीम है वो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और जो थर्ड थीम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये ब्रॉड थीम्स पर हम स्टेट वाइज इसमें डिस्कशन होगा। जैसे डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्शन ग्रोथ में हमने वो स्कीम्स ली हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड भारत सरकार की डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं और स्कीम्स हैं। जो Theme 2 है वो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, और उसमें खेत बचाओ एक अभियान हम लोग जो शुरू करेंगे 1 से 15 तारीख तक, उसके बारे में भी इसमें चर्चा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट है वो कवर करता है फार्म क्रेडिट, KCC सैचुरेशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, PM आशा जिसे हम दलहन तिलहन का प्रोक्योरमेंट करते हैं। जो कल का कार्यक्रम है वो ये है कि सुबह तो इनॉग्रेशन का एक पोर्शन है, उसके बाद आज की जो डिस्कशंस होंगे उसका समेशन होगा हमारे और DG ICAR के द्वारा, कि हम लोग आगे के जो खरीफ मौसम में जो प्रिपरेशंस के लिए आवश्यक क्रॉप एडवाइजरीज है उसके बारे में प्रेजेंटेशंस होंगे। उसके बाद फिर हम लोग ने थीम्स रखे हैं जिसपे हमारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार की प्रायोरिटी और फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उस पर प्रेजेंटेशन करेंगे, और वो कवर करेगा पल्सेस का और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पे, उसमें क्या प्रगति हुई है और क्या हमारी अपेक्षा है। उसके बाद एक विशेष सत्र रखा गया है जिसमें माननीय गवर्नर गुजरात श्री आचार्य देवव्रत जी आएंगे और उनका नेचुरल फार्मिंग पे एक डिटेल प्रेजेंटेशन है। फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस हैं, माननीय मंत्रीगण कल उपस्थित होंगे, उनके हम लोग सुनेंगे और समेशन फिर लास्ट में हमारे मंत्रीगण लोग करेंगे। तो ये कल की एक डिटेल रूपरेखा है। देखिए मेरा आप लोग से यही अपेक्षा है कि अभी देख लीजिए पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और क्या चैलेंजेस नेशंस को आ रहे हैं। एग्रीकल्चर हमारा बहुत स्ट्रांग बैकबोन है हमारी कंट्री का। हम राज्यों के साथ मिल के हम लोग काम करें, माननीय मंत्री जी को डायरेक्शंस है कि स्टेट्स की इश्यूज को बहुत सीरियसली टेकअप किया जाए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
0: महानिदेशक ICAR और सचिव डेयर डॉक्टर मांगीलाल जाट ने अपने संबोधन में कहा,
2: माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में एक टीम कृषि की, उसने जो किया है कि इस साल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड प्रोडक्शन 376.6 मिलियन टन, एवर हाईएस्ट, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि पिछले साल और उससे पिछले साल 2 साल में हमने 40 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया है, और मुझे नहीं लगता कि 20 मिलियन टन एवरेज की स्पीड से कभी भी प्रोडक्शन बढ़ा होगा। इस प्रोडक्शन के बढ़ने में टेक्नोलॉजी, साइंस, पॉलिसी, सारी चीजें

0: हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक चीज ये भी है, वन टीम वन नेशन वन एग्रीकल्चर, जो ये टीम एग्रीकल्चर है, ये सब इकट्ठा होके और मंथन करके और एक साथ मिलके काम करते हैं, उसकी बहुत बड़ी भागीदारी है। और मुझे लगता है उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, कुछ आंकड़े जो हमें 47 तक चाहिए फूड ग्रेन में, वो ऑलरेडी अचीव कर लिए। मुझे लगता है राइस का आंकड़ा तो ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया। इसका मतलब ये है कि हमें ये सोचना पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और हमने सारे देश का डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक अभी एनालिसिस चल रहा है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है। हमें राइस 50 मिलियन हेक्टेयर नहीं चाहिए, हमें राइस 2047 में 35 मिलियन हेक्टेयर ही चाहिए। 15 मिलियन हेक्टेयर को लोड शेड करना है तो वो कहाँ हो सकता है, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि आत्मनिर्भरता अलग अलग तरीके से है, जो फर्टिलाइजर की बात हो रही है, यदि हम 15 मिलियन हेक्टेयर लोड शेड करते हैं राइस से, ऑयल सीड पल्सेज में ले जाते हैं, तो एक तरफ हमारी पल्सेज ऑयल सीड की आत्मनिर्भरता होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो उसमें फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज हो रहा है उसको कम करके भी हम कर सकते हैं। फर्टिलाइजर के कॉन्टेक्स्ट में हमें मल्टीप्रोंज स्ट्रेटेजी भी काम करने की ज़रूरत है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। हमें रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंट ब्रीडिंग प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी टारगेटिंग डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण कड़ी है सीड की, और आज भी मुझे लगता है कि यदि हम क्वालिटी सीड किसान तक पहुंचा दें तो हमारा 15% 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। और उसके लिए हम लोग सब मिलके, हमारे पास में जितने भी रिसोर्सेज हैं, स्टेट के फार्म्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के फार्म्स हैं, हमारे ICR इंस्टीट्यूशंस के फार्म्स हैं, मुझे लगता है उन सबको सीड के लिए यूज़ करने की ज़रूरत है। उसकी भी एक रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है। एक्सटेंशन जैसे पहले था वो बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, मुझे लगता है हम सब लोगों को, और काफ़ी AI भारत विस्तार जो लॉन्च हुआ उसके साथ में और भी चीज़ें, लेकिन वो सारा जो AI है उसके बैकग्राउंड में डाटा इंपॉर्टेंट है, और डाटा इकोसिस्टम डेवलप करना, रोबस्ट डाटा इकोसिस्टम डेवलप करना, मुझे लगता है ये भी हमारी एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सोयल हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन सोयल हेल्थ पे सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं है, हमें फिजिकल और बायोलॉजिकल के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इसी सीजन में हमें शुरू करना, हमारे अपने सोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक के सोर्सेज हैं, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जितने भी हैं, इंडिजिनस जितना मटेरियल है, हमें 2047 में खाद आयात ना करना पड़े, उस दिशा में काम करने की भी जरूरत है, तभी हमारी जमीन भी अच्छी रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी।
1: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए अपने संबोधन में कहा,
2: देश के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे रहे। 140 करोड़ का देश हमारा आज दुनिया पर डिपेंड नहीं रह सकता, और वो खाद्यान्न के भंडार भरने का, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व हमारे किसान भाइयों और बहनों का है। और इसलिए मैं कहता हूँ अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और हम उनको सहयोग करने वाले हैं। वो दिन का ये कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और देश की जनता का सपना पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। खाद्यान्न का उत्पादन हो, फलों का हो, सब्जियों का हो, दलहन का हो, तिलहन का हो, किसान दिनों रात मेहनत करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में हमने कई योजनाएं किसानों के लिए बनाई हुई है, और वो योजना सीधे केंद्र इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, लेकिन राज्य के माध्यम से ही हमको करना पड़ेगा। वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, और इस टीम ने बेहतरीन काम किया है, सबसे बड़ा योगदान किसानों का है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अभी जाट साहब बता रहे थे खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, कल ही हमने तृतीय अनुमान जारी किए हैं। मुझे फिर दोहराते हुए खुशी है कि इस वर्ष जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित जो है 3,765.63 लाख टन है, जो पिछले साल की तुलना में 188 लाख टन अधिक है। ये अब तक का रिकॉर्ड है, और इसके लिए मैं भारत के किसानों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में, बढ़ते तापमान में, क्लाइमेट चेंज के इस वातावरण में उन्होंने अद्भुत परिश्रम किया है। मैं हमारे ICR के वैज्ञानिक मित्रों को भी आज हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। हमने जो अलग अलग किस्में बीजों की विकसित की है, अलग अलग जो कृषि की पद्धतियां बनाई है, उसका भी इसमें अतुलनीय योगदान है। हमारे ऐसे

0: कि कई संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं उनके बारे में भी मैं कहता हूं, क्योंकि मैं तो साफ कहता हूं कि गड़बड़ है तो ठीक करना चाहिए उसको, उनके भी हम समीक्षा करेंगे। बहुत बेहतर काम हुआ है ये। मैं राज्य के सभी अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं, आपने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि केंद्र कहां काम करेगा, हम तो राज्य को सहयोग करते हैं, कृषि राज्य का विषय है, लेकिन आगे करने की गुंजाइश बहुत है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं गेहूं और चावल भंडार भरपूर है, देशवासियों चिंता मत करना, दुनिया में कितना भी बड़ा संकट आ जाए भारत में कोई भूखा नहीं रहेगा, भंडार भरे हुए हैं, हमारे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन दलहन तिलहन हमारे लिए चिंता का विषय है, क्यों मंगाए बताओ हम, क्यों हम इम्पोर्ट करें, हमारे किसान में सामर्थ्य है, हमारे पास योजनाएं हैं, हमको बैठ के यही विचार करना है। आज हम बैठेंगे ग्रुप्स की बात पर, तीन ग्रुप में बैठेंगे, उसमें दलहन तिलहन मिशन पर भी बात होगी, आत्मनिर्भरता कैसे, कई मॉडल ICR ने बनाए लेकिन वो मॉडल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो हम कैसे अलग अलग गतिविधियों में किसान को लगा पाए ताकि उसकी आमदनी बढ़े। भाई अन्नदाता सुखी भवा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है लेकिन उसकी भी तो हालत सुधारना है जो दिन और रात मेहनत कर रहा है। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे आपके विचार चाहिए मुझे। एक राज्यों को जिस पे काम करना है वो नकली पेस्टिसाइड, खाद और पेस्टिसाइड अगर कोई नकली बेचता है तो पाप करता है, अपराध करता है, उसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। इसमें बड़ी भूमिका राज्यों की है। पहले भी मैंने कहा पेस्टिसाइड एक्ट, सीड एक्ट, इस पर तैयारी चल रही, सलाह मशवरा विचार विमर्श चल रहा है, वो भी लाएंगे, लेकिन हमारे पास जो आज मौजूदा व्यवस्था उसके अंतर्गत गड़बड़ करने वाले को ठीक करने का काम हमको करना ही पड़ेगा। बीज सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग विचार कीजिए सब, सीड रोलिंग प्लान कैसे उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करें। माफ करना कई बार तो मिनी किट बीज के बटते हैं जब बोनी हो जाती है पूरी, अभी हमारे पास समय ये है, इस समय हम पूरी तैयारी करें क्योंकि मानसून आने में भी देर है, और इस समय मैं तो कहता हूँ अगर जमे तो खेत बचाओ कार्यक्रम में ही सीड मिनी किट का वितरण हो जाए, बीज के टाइम पे पहुँचाएं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो, राज्य के हमारे बीज निगम हो या बाकी एजेंसीज हो, ये प्लान पूरा बनना चाहिए, सही समय पर सही बीज पहुँच जाए किसान के पास। आखिर हमारा काम किसानों का हित है, इसलिए उस व्यवस्था को हम कैसे ढंग से बनाएं। एक बात और जिस पर विचार, फार्मर ID का टारगेट पूरा करना है भाई। कई राज्यों में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ राज्यों में अभी शुरू होना है, और इसलिए फार्मर ID मतलब एक फार्मर ID है तो कई योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी को किसान को दिया जा सकता है। इस काम में पूरी ताकत के साथ जुटें, अभी KCC भी बाकी है, हमारे लगभग 7 करोड़ के आसपास KCC बने हैं, अभी लगभग 7.5 करोड़। आपको पता है योजनाओं को अब काफ़ी लचीला कर दिया गया है, RKBY और कृषि उन्नत की 18 योजनाएँ, आपको जरूरत है 2 योजनाओं की 3 योजनाओं की आप ले लो पूरा पैसा उसमें, अब ये लचीलापन है। हर एक राज्य का मेरे मित्रों हमें कृषि रोड मैप बनाना है, हर एक राज्य, हम पूरा सहयोग करेंगे, यहाँ आपके कृषि का रोड मैप बनाइए, आपकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, माटी माटी में उपस्थित तत्वों को ध्यान में रखते हुए कौन सी फसल आपके लिए उपयुक्त है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन सी उपयुक्त है, और उसके साथ साथ फसलवार भी रोड मैप बनेंगे। खेत बचाओ अभियान के बारे में आज आपको गंभीरतापूर्वक सोचना है, प्रधानमंत्री जी विजनरी लीडर हैं, उनको धरती के स्वास्थ्य की भी चिंता है, भारत की जनता के लिए उनकी हर सांस चलती है, किसानों के विहित ऐसी है, लगातार खेत बचाओ अभियान पे जोर दे रहे हैं। कल प्राकृतिक खेती पे भी चर्चा होगी, संतुलित फर्टिलाइजर के उपयोग पर बात करना है, अंधाधुंध क्यों चाहिए, मिडिल ईस्ट के संकट के कारण दिक्कतें भी है, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी उपलब्धता में, लेकिन भाई जितना जरूरी उतना ही डालो ना, तो उसके लिए खेत बचाओ अभियान गांव गांव जाना है, वो पूरी ताकत से करना, मैं भी जाऊंगा भाई, जैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान में हम लोग जुटे थे, सारे हमारे वैज्ञानिक जाएं, ICR की टीम, KVK की टीम, कृषि विभाग के राज्य का अमला, एक्सटेंशन का आपका अमला पूरा, प्रगतिशील किसान, FPOs, पैक्स के लोग मिलकर हमको प्रयत्न करना पड़ेगा।
1: खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन एक विकसित भारत और समृद्ध किसानों की परिकल्पना के अनुरूप एक टिकाऊ, सशक्त और किसान केंद्रित कृषि इकोसिस्टम के निर्माण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इसी के साथ खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम पर आधारित यह रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है। प्रस्तुति सहयोग विशाल कुमार, दिनेश कुमार, संयोजक शिवनंदन लाल, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर।
2: तो अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों ने सुनी ये रेडियो रिपोर्ट और एक बातचीत भी हम अपने सभी किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं। सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती, बुवाई की उन्नत विधियां, और इसकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर
3: आंचल दास, और इनसे बातचीत कर रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक पूसा नई दिल्ली से शशि कपूर की बातचीत।
4: किसान बहन भाइयों राम राम। किसान बहन भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सोयाबीन की। सोयाबीन का पोषण महत्व बहुत ज़्यादा होने के कारण आजकल सोयाबीन का दूध प्रयोग में किया जाने लगा है। सोयाबीन पनीर, टोफू की भी वर्तमान में बहुत मांग है, लेकिन ये सब काम होंगे तब जब आप सोयाबीन का उत्पादन करेंगे, यानी कि खेती करेंगे। तो सोयाबीन की खेती कैसे की जाती है, कौन कौन सी इसकी किस्में होती हैं जिनका आप बिजाई कर सकते हैं, और इसकी पोषण का महत्व क्या होता है, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, खेत की तैयारी आप कैसे करें, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंचल दास जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं ICAR IARI नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी जानना चाहेंगे कि पोषण महत्व कितना ज़्यादा है सोयाबीन का।
5: सोयाबीन का पोषण महत्व बहुत अधिक है। इसको पोर मैन्स मीट भी कहा जाता है और इसको साथ में गोल्डन बीन भी कहा जाता है। तो इनको इतना ज़्यादा महत्व देने का कारण यह है कि सोयाबीन का जो दाना है उसमें 40-45% तक प्रोटीन होता है, 18-22% उसमें ऑयल होता है, या उसको हम तेल कहते हैं, तेल होता है, और साथ में इसमें पोषक तत्व होते हैं, 4-5% मिनरल्स रहते हैं उसमें, साथ में विटामिन रिच होता है, विटामिन से पूरा ये डेंस रहता है, राइबोफ्लेविन और थायमिन जैसे इसमें विटामिन रहते हैं, और विटामिन ई भी इसमें पाया जाता है। साथ में सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, इंसानों के लिए ही उपयुक्त नहीं है, लाभदायक नहीं है, ये हमारी भूमि जहाँ पे इसको उगाया जाता है उसके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसकी जड़ों में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, उन ग्रंथियों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है, जिसकी ये कैपेसिटी है कि जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, नत्रजन है, उसका यह स्थिरीकरण करता है और भूमि को उर्वरता शक्ति है बढ़ाने में काम करता है। साथ ही में जब सोयाबीन पक जाती है तो उसकी जो पत्तियाँ हैं वो जड़ने लगती हैं, तकरीबन 1-1.5 टन तक तो इसकी पत्तियाँ ही हैं, जिसमें वो भी न्यूट्रिएंट रिच रहती हैं, उसमें पोषक तत्व रहते हैं, उस पूरे जमीन में मिलते हैं, और ये एनिमल की फीड के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मैं कहूंगा इसका बहुत ज़्यादा महत्व है पोषण के हिसाब से।
4: तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके लिए भी पोषण के लिए बहुत अच्छा है सोयाबीन, और साथ ही साथ हमारी जो खेती है उसकी मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका सोयाबीन निभाता है। अगर हम बात करें अपने देश की, तो कहाँ कहाँ पर सोयाबीन की खेती ज़्यादा होती है?
5: सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, जो कि टोटल प्रोडक्शन का 45% मध्य प्रदेश से आता है, और 40% जो उपज है सोयाबीन की वो महाराष्ट्र से आती है, साथ में कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और इनको पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो असम, मेघालय में, साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आदि स्टेटों में इन सोयाबीन को उगाया जाता है।
4: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, तो जो सही समय है कब तक इसकी बिजाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिस खेत में वो सोयाबीन करना चाहते हैं तो किस तरह से खेत का चयन करें?
5: बुवाई का समय सोयाबीन का अलग अलग इलाकों में अलग अलग से होता है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें, तो उसमें मई से जून के अंदर इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। अगर हम उत्तरी मैदानी इलाकों की बात करें तो 15 जून से 5 जुलाई तक इसकी बुवाई कर सकते हैं। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो उसमें 15 जून से लेके 15 जुलाई तक इसकी बुवाई हम कर सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो 15 जून से लेके हम 31 जुलाई तक हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। लेकिन बुवाई करने से पहले हमको खेत का चयन करना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर तो हर तरह की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त जो भूमि है वो रेतली दोमट से दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकासी पर्याप्त हो, और इसको काली मिट्टी, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में, जो कुछ इलाकों में महाराष्ट्र में काली मिट्टी है, उनमें भी सोयाबीन को अच्छे से उगाया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें जल निकासी का प्रबंधन अच्छे से किया हो, और जो सॉइल का पीएच है क्षारीय नहीं होना चाहिए, 6-7.5 तक पीएच मिट्टी की है, तो उसमें इसको आराम से अच्छे से उगाया जा सकता है।
4: डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने जो खेत का चयन भी कर लिया है, लेकिन अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपने खेत

0: 958, SL744 आदि किस्मों को उसमें उगाया जा सकता है। और अगर हम उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की बात करें जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उसके लिए जो किस्में हैं PUSA 97, PUSA 12, PS जो पंतनगरी वरायटी है, PS 26, PS 27, PS 1347, और हम थोड़ा नीचे जाएं मध्य भारत की ओर जाएं तो इसके लिए JS 9305, NRC 30, NRC 37, NRC 130, NRC 138, NRC 142 आदि किस्मों को अच्छे से उगाया जा सकता है। और हम और नीचे जाएं दक्षिण भारत में जाएं तो उसमें भी JS 9305, साथ में हम उसमें MACS 1460, MACS 1281, 1188 और DSB 34 आदि किस्मों को उसमें उगाया जा सकता है। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो उसमें DSB 21, JS 93-5, JS 97-52, DSB 32 आदि किस्मों को हम उगा सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ही उन्नतशील किस्मों के बारे में आपने बताया है। अब बात आती है कि जो हमारे किसान भाई हैं किस्में ले आएँ अच्छी उन्नतशील, तो खेत की तैयारी भी आवश्यक हो जाता है। तो खेत की तैयारी कैसे करें, उस समय किस तरह से खाद का प्रबंधन करें, और साथ ही साथ बीज उपचार का कितना महत्व है?
0: देखिए, सोयाबीन के लिए बीज उपचार का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप बीज को उपचार नहीं करेंगे तो कीट और फफूंद जो बीमारियां हैं, फंगल बीमारियां हैं, वो उसमें लगती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जो महीन दानों वाली जो किस्में हैं उसके लिए 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपने बीज लगाना चाहिए। अगर मध्यम साइज की वेराइटी हैं, किस्में हैं, तो उसमें 70 से 75 किलो प्रति हेक्टेयर। अगर मोटा दाना है तो उसके लिए 80 से 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमको बीज की मात्रा।
2: तो पायल बहन, अभी हमारे भाई सभी भाई बहन ही सुन रहे थे ये बातचीत, सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती, बुवाई की उन्नत विधियाँ, और इसकी जानकारी दी डॉक्टर आंचल दास, जो कि प्रधान वैज्ञानिक पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे थे शशि कपूर। और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी राम राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल, और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 7:30:14 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गज़ल कव्वाली। कार्यक्रम की पहली कव्वाली जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये हमने ली है फिल्म अनोखी अदा से और इसे आवाज़ दी हैं किशोर कुमार साहब ने। गीत रचना है मजरूह सुल्तानपुरी साहब की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूँ।

ये जो अभी आप कव्वाली सुन रहे थे, इसको स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी ने और संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। फिल्म है अमर अकबर एंथोनी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं एक और गज़ल फिल्म ओमराव जान से। गायक कलाकार हैं बेला सुलाखी।

0: बेला सुलाखे के स्वर में अभी ये गज़ल आपने फिल्म ओबराब जान से सुनी, और इसी के साथ गज़ल कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को हैं, कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। दिल्ली एनसीआर में निर्बाध यातायात के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई आधुनिक सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की। पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष मनोनीत। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर कचरा प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली एनसीआर को जाम मुक्त, यातायात को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर कई आधुनिक सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में एक्सप्रेसवे, सुरंग और एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी विस्तार सड़क 2 के माध्यम से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा, जिससे पश्चिमी दिल्ली और गुरुग्राम से उत्तराखंड तक सीधा संपर्क मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने के लिए 65 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को शहरी विस्तार सड़क 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे भारी वाहनों का बेहतर डायवर्जन होगा और जाम में कमी आएगी। वहीं एम्स से गुरुग्राम तक 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे धौलाकुआं और महिपालपुर क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव कम होगा। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली को विश्व स्तरीय हरित और जाम मुक्त बनाना है। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। दिल्ली भाजपा कार्यालय पर श्री मल्होत्रा ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आभार व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दायित्व उनके लिए संगठन और जनसेवा के प्रति और अधिक समर्पण तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि वे पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा दिल्ली के विकास में पूर्ण निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी को श्री मल्होत्रा के अनुभव से फायदा होगा।
5: पार्टी में हर दायित्व बड़ा होता है और ये जो दायित्व हर जी को मिला है कि उनको अनुभव बहुत है, प्रशासनिक भी है और संगठन का भी है, तो निस्संदेह उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा और पार्टी को और ऊंचाइयों तक वो उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे।
3: एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से दिल्ली में भाजपा को नई ऊर्जा मिलेगी और जनसेवा के कार्यों को और सशक्त बना सकेंगे। दिल्ली विधानसभा में आज देश की लोकतांत्रिक विरासत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकलन जारी किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि लोकतंत्र संवाद, बहस, सहमति और असहमति पर फलता फूलता है। इस अवसर पर 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के संकलन का विमोचन किया गया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह आने वाली पीढ़ियों और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए एक सार्थक मार्गदर्शक साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र वैश्विक मंच पर एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा भवन का निर्माण मात्र 11 महीनों में 22 एकड़ क्षेत्र में किया गया था, जो आज भी आश्चर्य का विषय है।
6: वैसे इन्होंने एक साल में इसकी सुंदरता को, हमारे इतिहास को ये पूरा जीवित करके रख। तो यहाँ पे जब बच्चे हमारे जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जब वो आके इस पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, हम सब आपके ऋणी हैं न स्पीकर महोदय कि आपने छोटा काम नहीं किया। ये सब कहीं पे किसी कमरे में धूल मिट्टी खा रहा था, आप उसको लेकर आए, आपने उसको पढ़ा, आपने टीम लगाई और आपने इतिहासकार लगाए, उसके बाद में ये सारे इतिहास को संयोजना, उसको लेकर आना छोटा काम नहीं है, और वो भी इतने कम समय में। इसलिए हम सभी आपके प्रति ऋणी रहेंगे।
3: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये सदन देश की ऐतिहासिक लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक है। श्री गुप्ता ने कहा कि हाल ही में प्रदर्शित डॉक्यूमेंट्री इस बात की पुष्टि करती है कि ये सदन ऐतिहासिक महत्व रखता है।
7: जो सदन है ये एक ऐतिहासिक स्थल, जनवरी 1926 में पहली परंपरा वीर विट्ठल भाई पटेल जी ने अध्यक्ष बनने के बाद जो स्थापित की, हर वर्ष वायसराय साल के पहले सिटिंग पर सदन को एड्रेस करने आते। विट्ठल भाई जी अध्यक्ष थे, उन्होंने वायसराय को मैसेज किया कि वो आने से पहले विचार कर ले कि जो परंपरा थी मैं उसको समाप्त कर रहा हूँ। परंपरा ये थी कि जब वायसराय आते थे तो अध्यक्ष जाकर नीचे बैठ जाते थे, खड़े होकर उनका स्वागत करते थे बाकी सदस्यों के साथ, और मंच पर सिर्फ एक कुर्सी लगती थी। उन्होंने संदेश भिजवाया कि मैं इस सदन का कस्टोडियन हूँ, इसलिए मंच पर एक नहीं दो कुर्सी लगेंगी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonaia.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर वहां चल रहे पुराने कचरे के बायो माइनिंग और बायो रेमिडिएशन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने कहा कि भलसवा लैंडफिल साइट पर स्थित कूड़े के विशाल पहाड़ समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पुराने कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया को तेज किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा और

0: नागरिक सुविधाओं में लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। इस अवसर पर छात्राओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता, मानसिक सशक्तिकरण और स्कूलों में बेहतर सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि छात्राओं के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भूमिका केवल प्रशासक की ही नहीं बल्कि अभिभावक की भी होती है। उन्होंने कहा कि कई छात्राएं मासिक धर्म के दौरान असहज महसूस करती हैं और ऐसे समय में उन्हें संवेदनशीलता, विश्वास और सहयोग की आवश्यकता होती है।
1: दिल्ली सरकार ने स्कूलों में स्वच्छ टॉयलेट, मेडिकल रूम और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी स्कूलों में साफ सुथरे शौचालय और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैटर्स अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक शौचालय और आरोग्य मंदिर में लगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों के नियमित मेंटेनेंस और समय पर रिफिल सुनिश्चित के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे दिल्ली में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही कक्षा 6 से 9 तक के पाठ्यक्रम में मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के बाद दिल्ली सरकार छात्राओं को निःशुल्क साइकिल भी उपलब्ध कराएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी यादव।
0: दिल्ली सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण केंद्र सरकार के निर्धारित वित्तीय ढांचे, तकनीकी दिशा निर्देशों और स्वीकृत मानकों के अनुरूप किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण और उन पर किए गए व्यय को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट पर सरकार ने कहा कि ये दावा गलत है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में तय सीमा से ज्यादा खर्च हुआ है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर मॉडल के तहत हर केंद्र के लिए भवन सुधार पर 25 लाख रुपए और फर्नीचर तथा जरूरी सुविधाओं के लिए 1 लाख रुपए तय हैं। सभी काम इसी निर्धारित बजट के भीतर किए गए हैं। विभाग ने बताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिल्ली में कुल 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनः मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनः निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया है कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून को परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा है कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upseonline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य नमाज ईदगाह जामा मस्जिद और

फतेहपुर मस्जिद में अदा की गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये पर्व समाज में शांति, भाईचारे और करुणा की भावना को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सावरकर जी ने भारत माता के अनन्य भक्त, एक प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और अदम्य साहस के प्रतीक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र सर्वप्रथम के संकल्प, सांस्कृतिक गौरव और अखंड भारत की भावना को समर्पित था। उर्दू साहित्य की एक महान आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उनके परिवार के अनुसार उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें आज भोपाल टॉकीज के पास स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दिल्ली में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा है और राजधानी में आज शाम कुछ इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली NCR में निर्बाध यातायात के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई आधुनिक सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की। पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष मनोनीत। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर कचरा प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: This all-too-familiar tune, sung by a well-known singer, Shibani Kashyap, became a big hit too, and everyone hummed the tune.
1: Whoa, we gotta let the music play.
0: All India Radio Delhi, FM Rainbow. The FM station was launched in Delhi, changing the way radio broadcasts happened till then. The sober announcers were replaced with radio jockeys who had a chatty style, with a focus on interaction with the audience via phone-in requests and chat shows, playing the current trendy international hits. It also led to major mainstreaming of popular Western music in India, happening long before private FM arrived in India. These Western music shows were literally the lifeline of music lovers. Many of today's top RJs literally learned to talk on the mic here. Fondly recalling his early days is the famous radio jockey Nitin.
2: मैं हूँ खुराफत नितिन. देखिए मेरी शुरुआत जो है रेडियो के करियर की मेरी वो हुई ऑल इंडिया रेडियो से विद 102.6 जब शुरुआत हुई थी. I was very naive और मुझे पता नहीं था कि कैसे होता है रेडियो पर शो. पर आई रिमेम्बर कि दो तीन लोग थे जिन्होंने मेरी बहुत मदद की. एक ज्योति जी हुआ करती थी, फिर एक शैंडी शीर्षेंदु बैनर्जी और वंदना वडेरा यानी वैंडी. इन तीनों ने बहुत मदद की मेरी एंड दे ट्रेन्ड मी एंड दे टॉट मी हाउ टू स्पीक ऑन रेडियो. कैसे गाने चलाए जाते हैं, कैसे लिसनर से बात की जाती है. सो आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था वो. तहे दिल से शुक्रिया टू ऑल इंडिया रेडियो एंड टू ऑल माई मेंटर्स इंक्लूडिंग संजीव एंड लिंडा मैम. उन्होंने बहुत सिखाया मेरे को. एंड आई जस्ट फील दैट यू नो जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, किसी और जगह पर जाके काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपको अपनी पुरानी जगहों का नहीं भूलना चाहिए. और मैं कभी नहीं भूला हूँ. बहुत फॉन्ड मेमोरीज है ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड आई एम जस्ट थैंकफुल टू एवरी वन एट ऑल इंडिया रेडियो. बिकॉज मैं 26 साल से जो रेडियो कर रहा हूँ उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो ऑल इंडिया रेडियो का है. सो थैंक यू फॉर ऑल द ट्रेनिंग यू गेव मी. थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट फर्स्ट चांस. गॉड ब्लेस यू ऑल. मैं हूँ कुर्रा फादर देन. गॉड ब्लेस.
0: Another famous

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है बरसात की रात, और इसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

गीतमालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चेतन के साथ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म श्री 420 से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफ़ी।

फिल्म श्री 420 से ये बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना, और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में एक गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जो कि हमने लिया है, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है, और ये इसी फिल्म का शीर्षक गीत है, और इसको आवाज़ें दी हैं अलका याग्निक और साथियों ने, और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: आदमी खिलौना है, इसी फिल्म के शीर्षक गीत के साथ ये गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को हैं, कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले

0: सिद्धरामैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4,00,00,000 बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में एआई पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में एआई शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग

0: के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
1: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दाखला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मुल्क में हर गैर कानूनी इमिग्रेंट का पता लगाने और उसे उसके वतन वापस भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो आज गांधीनगर लोकसभा हलके में 340 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: जनाब अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को भी याद किया। कर्नाटक में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहने वाले सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में गवर्नर के दफ्तर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे कबल उन्होंने अपने काबीना साथियों के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बाद में नामानिगारों से खिताब करते हुए डीके शिवकुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने गवर्नर मौसूफ से कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नामजद वजीर आला को

0: मदू किया जाए। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: दो मरतबा के वजीर आला और दो मरतबा के अपोजिशन रहनुमा सिद्धारमैया ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 17 रियासती बजट पेश किए थे। उन्होंने रियासत में अहिंदा तहरीक शुरू की थी जो पसमानदा तबकों और अकलियतों की नुमाइंदा थी। सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान की मर्जी के मुताबिक इस्तीफा दिया है। आज अहिंदा ग्रुपों की तरफ से इस्तीफे के खिलाफ रियासत के बहुत से इलाकों में मुजाहरे किए गए। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के हामियों ने खुशी मनाई। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही कानून साज पार्टी के एक नए रहनुमा को चुनने और काबीना में इम्कानी रद्दोबदल के मजीद इकदाम पर बातचीत के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बेंगलुरु से सुदिंद्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है कि मुल्क में कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,91,00,000 मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि निशाना 4,95,00,000 मकानों का है। जनाब चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मरबूत करके देही इलाकों के कुनबों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन मकानों को मंजूरी दी गई है उनमें से तकरीबन 75% मकान या तो खवातीन के नाम पर हैं या मुश्तरका मिल्कियत में हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकों, खासतौर पर खवातीन, गरीबों और बच्चों के मामलों से निमटते वक्त हसास और ऐसा रवैया अख्तियार करे जिससे शहरियों को और ज्यादा मरकजी हैसियत हासिल हो। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू आज सुबह गैंगटॉक में अलंकरण परेड के दौरान सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने अमन व कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने में सिक्किम पुलिस के रोल की सताइश भी की।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: इधर सिक्किम को उल्लास पहल के तहत मुकम्मल तौर पर खानदान रियासत होने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन कल से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो कल बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवनगिरे में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। हफ्ते के रोज जनाब राधाकृष्णन पनाजी में गोवा के यौम तासीस की तकरीबात में शामिल होंगे और समंदरी उलूम के सीएसआईआर कौमी इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। नायब सदर इतवार के रोज कर्नाटक में ही श्री सनती पार्क का इफ्तिताह करेंगे और श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजूनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा है कि जमहूरियत मुज़ाकरात, बहसो मुबासे, इत्तफाक राय और इख्तलाफी राय की इजाजत देती है। उन्होंने ये बात दिल्ली कानून साज असम्बली में 1930 तक मरकजी कानून साज असम्बली की सभी 407 नशिस्तों की कार्रवाईयों पर मुश्तमिल मुनफरिद 89 जिल्दों का इजरा करते हुए कही। जनाब बिरला ने कहा कि इस मजमूए से आने वाली नस्लों और जमहूरी इदारों के लिए एक बेशबहा रहनुमाई फराहम होगी। उन्होंने कहा कि यह हुकूमतों का फर्ज है कि वो तारीख, विरासत और उन रहनुमाओं की रिकॉर्ड की हुई तकारीर का तहफ्फुज करें जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जद्दोजहद की थी। लोकसभा के स्पीकर ने दिल्ली कानून साज पार्टी के विधान चेतना नाम के एक पहले सैमाही जरीदे का भी आगाज किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, दिल्ली काबीना वजीर प्रवेश साहब सिंह और दिल्ली कानून साज असम्बली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी इस तकरीब में शिरकत की। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तेलंगाना में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगले 5 साल में 200 इंटरसिटी रेलगाड़ियां बनाएगा। इन ट्रेनों को कम दूरी के सफर के लिए पूरे मुल्क में लगाया जाएगा। जनाब वैष्णव ने रेलवे के वजीर ममलिकत रवनीत सिंह बिट्टू और आला एहलकारों के साथ मीटिंग में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अमली शक्ल देने के मंसूबों का जायजा लिया। ये रेलगाड़ियां तकरीबन 300 किलोमीटर तक चलेंगी और हर ट्रिप में ये कई जगह रुकेगी ताकि लोग कस्बों और शहरों के दरमियान आसानी के साथ सफर कर सकें। इस तरह इन ट्रेनों के जरिए लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में सफर के लिए नया कम खर्च मुतबादल मिल जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो ने ट्वेशा शर्मा की सास गिरी बाला सिंह को भोपाल में गिरफ्तार कर लिया है, जो एक रिटायर्ड जिला और सेशन जज हैं। उन्हें ट्वेशा शर्मा की मौत से मुतालिक केस में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने उनकी रिहायशगाह पर सुबह तकरीबन 10:30 बजे पहुंचकर तलाशी ली और उनसे तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें सपहर 5:10 पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें सीबीआई की एक अदालत में पेश किया गया और इससे पहले उनकी तिब्बी जांच की गई। ये गिरफ्तारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से इस केस को तश्वीशनाक बताते हुए और जारी तफ्तीश के पेश नज़र उनकी पेशगी जमानत मनसूख किए जाने के एक दिन बाद की गई है। ट्विशा शर्मा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 12 मई को मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई थी। उनके ससुराल के अफराद ने इसे खुदकुशी का केस बताया था, जबकि ट्विशा के कुंबे ने कत्ल का इल्जाम आयद किया था। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में डोरेमल के मकाम पर घने जंगलों में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई का ये छठा दिन है। हिफाजती दस्तों ने इस इलाके का मुहासरा कर लिया और यहां दहशतगर्दों के छिपने की मुश्तबा जगहों पर ताजा फायरिंग की और ग्रेनेड लॉन्चर से कई हमले किए। इब्तदाई सुराग रसानी से मालूम हुआ था कि 2 या 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द यहां छुपे हुए हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पेचिंग में भारत चीन सरहदी मामलात पर मुशावरत और तालमेल से मुतालिक वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान यह तबादला ख्याल किया गया। तरफेन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीक़ेकार तय करने और सरहद के दोनों तरफ इश्तराक से मुतालिक मामलात पर बातचीत की। आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू शायर और अदबी शख्सियत बशीर बद्र का आज भोपाल में इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। उनके कुनबे के अफराद ने बताया कि वो एक तवील अलालत के बाद आज दोपहर दुनिया से चल बसे। उनकी तदफीन भोपाल टॉकीज के नज़दीक कब्रिस्तान में आज शाम की गई। बशीर बद्र एक तवील अरसे से निसियान की बीमारी में मुबतला थे। वो उर्दू शायरी को जदीद तर्ज में ढालने और आसान लबो लहजे में शेर कहने के लिए जाने जाते थे। उनकी गजलें भारत और बैरून मुल्क काफी ज्यादा मकबूल हुई। पेश है एक रिपोर्ट।
3: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। ये लाफानी अशार बशीर बद्र की शायरी की जान है। नहायत सलीस अल्फाज मगर तासुरात बहुत गहरे, गुरबत पर मबनी जज्बात लेकिन ख्यालात आफाकी। उनकी शायरी में मोहब्बत, फुरकत, रिश्ते, अलहदगी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खामोश पोशीदा जज्बात पाए जाते हैं। बशीर बद्र ने उर्दू शायरी को एक ऐसी ज़बान अता करके एक नई जहद बख्शी जो आम लोगों के दिल के बहुत करीब है। उनके अशार मुशायरों में तो गूंजते ही थे, साथ ही अक्सर व बेशतर गुफ्तगू में भी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने बहुत से मुशायरों की निज़ामत भी बड़ी दिलचस्प अंदाज में की। बशीर बद्र को 1999 में पद्मश्री से नवाजा गया था और उनके मजमूए कलाम आस पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड अता किया गया था। न्यूज़ डेस्क से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मौसमियात महकमे के साइंसदान डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि अगले 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोगों को शदीद गर्मी से काफी राहत मिल जाएगी।

वियतनाम के शहर डनांग में 17 साल तक की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गए। 45 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में यूनान रोम जुमरे में सचिन कलप्पा शिरोले ने 110 किलोग्राम के जुमरे में उर्दुन के समी अहमद अलावेद को 11-4 से शिकस्त दी, जबकि रुद्र किरण निमहान ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया के सियोक मोसिम को 8-0 से हरा दिया। बैडमिंटन में भारत की पीवी संधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि एचएस प्रणॉय टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: countrywide.
1: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
1: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
2: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, जिस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल, खास तौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं, खास तौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून है या उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
2: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पर सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना

0: आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए। तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए, और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
1: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया आंखों के सामने, धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
0: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी आ रही है, या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ओआरएस का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ओआरएस का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है, क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें, क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान, जैसा आपने कहा, बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहाँ भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना ज़रूरी है?
0: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा, जैसे मैंने बताया, नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है, या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं और जूस वाले फल आते हैं, जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें, जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं, क्या ये शरीर के लिहाज से, स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
0: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव

0: चले जाते हैं वहाँ उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी दादा दादी। तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे और बुज़ुर्गों में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलें। जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसपे से वेपोरेशन काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाएं, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए। धूप रहते, मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं। अगर धूप है उस समय तो छतरी का लें, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सकें।
0: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
1: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं, गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के रोग ले सकते हैं, लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आए, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खासतौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, लेकिन गर्मी में ना जाए। और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर के डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
0: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
1: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं, वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ जाता है गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
0: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
1: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें, तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटे नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं, तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। आपने सुना कव्वाली, कलाकार अब्दुल हमीद साबरी और साथी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 होने को है। अब सुनिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गायन। कलाकार हैं पंडित मधुप मुदगल। आप सुनेंगे राग भोपाली। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत आपने सुना गायन, कलाकार पंडित मधुप मुदगल। आपने सुना राग भोपाली। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को है। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ DK शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही

1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: colleagues. Addressing the media persons later without naming D.K. Shivakumar, he asked the governor to invite the CM-designate for taking up the mantle of chief ministership in the state. The governor, who is on tour, has to return to decide on the resignation submitted by Siddaramaiah. The National Testing Agency has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid al-Adha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of ntacuet.nta.nic.in. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। समय है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत आपकी फरमाइश। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम को। फिल्म संगीत आपकी फरमाइश में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। और चूंकि आपकी फरमाइश है तो चलिए नाम लेते हैं आपका कि आपने क्या फरमाइश हम तक पहुंचाई है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं गगनदीप थांडी, तृप्ता थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी और बेबी वामिका और साथ में हैं वाणी थांडी। इन्होंने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है टोरवाल गाँव से, ज़िला नवांशहर, पंजाब से। फिल्म संगीत की फरमाइश भी बहुत खूबसूरत है, ज़रूर प्ले करेंगे। अगला मैसेज हमारे पास आया है लिखने वाले हमारे श्रोता हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती, सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरावन शिंदे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल सुनते हैं आप लोगों के ही पसंद से ये गीत।

फिल्म संगीत में इतनी खूबसूरत अगर फरमाइश हो तो बजाने में का मज़ा ही कुछ और होता है। वाकई में सुंदर गाने, खूबसूरत गाने हमेशा ही संगीत के समा को और खूबसूरत बना देते हैं। फिलहाल आपके मैसेज को लेंगे। लिखने वाले हमारे श्रोता है महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, दर्श राजपूत लिख रहे हैं और फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक तो पहुँचाई है, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है, हमारे लिखने वाले हमारे श्रोता है कमल जी हैं और इनका, हाँ, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। आपको बता दें कि मजनू का टीला से लिखा था कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा ने। फिल्म संगीत की फरमाइश भी अपने खूबसूरत गीत हम तक तो पहुँचाई है, धन्यवाद आपका। अगला मैसेज हमारे पास आया है हमारे श्रोता का, लिख रहे हैं सुदर्शन शाह जी। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह लिख रहे हैं पद्मा टॉकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से, और फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने पहुँचाई हम तक, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज आया है, डियर एंकर, आपको विनम्र निवेदन है कि 3-4 लिसनर्स एक दूसरे का और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम बिगड़ कर लिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो इस बात की हो रही है कि वो फीमेल मेंबर्स का नाम भी बिगड़ कर लिख रहे हैं और गलत नाम लिख रहे हैं तोड़ मरोड़ के हैं। तो लिखने वाले में हमारे श्रोता है संदीप कौर, असली नाम संदीप मकड़ जालंधर, संदीप जाटव, संदीप जटौलिया, राधिका जाटव, मन्नत जाटव और सुरेश जाटव लिख रहे हैं और असली नाम भी लिख रहे हैं सुरेश नारंग और चंद्र नगर सहारनपुर से लिख रहे हैं ये। सुरेश डोम, सुरेश शर्मा, सोनाली डोम, अभिजीत यादव जाटव, असली नाम अभिजीत गुहांकर, अभिजीत शर्मा, टुक टुक शर्मा, सिर्फ टुक टुक और छोटा सा बच्चा है वही अल्लाह डोम, साथ ही साथ वली अल्लाह बेलदार, एक दूसरे के नाम गलत लिखने के संदिग्ध संवादित लिसनर्स हैं। तो चलिए, आपने सबके जो सही से नाम है आपने हम तक तो पहुंचाई है और आपके आपका मेल बहुत ही लंबा सा है। आपने कहाँ से ये मैसेज हमें लिखा, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा जी लिख रहे हैं। नाम अगर गलत है तो आपने सुधार कर तो लिखा है, लेकिन अलग अलग आप इसको लिख कर भेज सकते हैं, लेकिन सभी के नाम आपको पता है और सही नाम भी पता है, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल आगे चलते हैं और अगला मैसेज लेते हैं हमारे दूसरे श्रोता का। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं राजेश सांवले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश लिख रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर से और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है चंडीगढ़ सिटी से, सतीश अनेजा, विमला अनेजा जी लिख रहे हैं। फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक तो पहुंचाई है। फिलहाल सुनते हैं आप लोगों की ही फरमाइश में से एक गीत।

फिल्म संगीत फरमाइश आप सुन रहे हैं मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और आपने तो गाने खूबसूरत भेजे हैं लेकिन बहुत लंबे ड्यूरेशन के गाने कई सारे हैं, और इससे क्या हो जाता है कि कुछ गाने ऐसे ही रह जाते हैं फिलहाल। लेकिन आपके नाम तो ले लें फटाफट। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से, बंडू लोहार पोपलघट, चंद्रकला पोपलघट और देवीदास देवीदास पोपलघट। आपका धन्यवाद हम तक मेल पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है गांव फरान से, हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे श्रोता का, आपके मैसेज को हमने ले लिया है चंडीगढ़ सिटी से, सतीश हनेजा, बिमला नेजा। आपके सॉन्ग भी हमारे पास आ चुके हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सबके प्ले जैसे जैसे होते जाएंगे आपका भी नंबर आ जाएगा। अगला मैसेज हमारे पास आया है, लिखने वाले हैं गांव कुम्हार हेरा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाक, अदीब हसन, एनी सॉन्ग लिख कर भेज रहे हैं। ओके, ज़रूर कोशिश है कि आप लोगों के पसंद के सॉन्ग प्ले हो। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक लिख रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी धाड़ा से, और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने हम तक पहुँचाया है तो हम इसे ज़रूर कोशिश करेंगे ये भी प्ले हो जाए। फिलहाल आप लोगों की पसंद से एक सॉन्ग और ले लेते हैं।

बहुत खूबसूरत सा गीत आपने हम तक पहुंचाया। फिलहाल आपका मैसेज लेते हैं। गांव लोहरगढ़ ठाकुरवाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोत्रे गुरनूल सिंह शुभदीप सिंह लिख रहे हैं। फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक पहुँचाई है। बहुत ही खूबसूरत गीत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है पटेल नगर मलौद से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप जजौरिया, आरजू जजौरिया गुड्डू लिख रहे हैं और फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक पहुँचाई है। कोशिश करेंगे, ज़रूर प्ले करें। अगला मैसेज हमारे पास आया है नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से लिख रहे हैं हमारे श्रोता अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुवीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा कलेर बिहार से, मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन लिख रहे हैं। धन्यवाद आपका। अगला मैसेज हमारे पास आया है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ सतीश अनेजा जी ने हम तक मैसेज पहुँचाया है और उनका सॉन्ग काफ़ी देर से कोशिश में है कि वो प्ले हो, तो ज़रूर आपको बता रहे हैं कि आपका सॉन्ग ज़रूर प्ले होगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसे मिस मत होने दीजिएगा। अगला मैसेज हमारे पास आया है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया जी लिख रहे हैं और फिल्म संगीत की फरमाइश भी हम तक पहुँचाई है। फिलहाल चलते हैं आपकी पसंद से सुनते हैं ये गीत।

अगला मैसेज हमारे पास आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहांकर, निर्मला नोहांकर, विशाल नोहांकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरहरे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए। अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है आर कुमार जी का, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज लेंगे हमारे श्रोता टी जी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, इन्होंने सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से मैसेज किया है, कालका से सुभद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप सभी का इनफैक्ट। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है हमारे श्रोता का, फिल्म संगीत की फरमाइश

के साथ लिखने वाले छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले दुखनी सदप आरजू, जूही इकबाल फूल वाले इमरान अहमद फूल वाले कापस हेरा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसीन, आसमा परी राबिया मंतशा अंशु आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए। राम राम जी प्लीज़ एनी सॉन्ग जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित जी लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ राजपाल शर्मा जी का भी मैसेज ले लें, आदर्श नगर मलौत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, मैंडी शर्मा लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ एक और मैसेज लेना चाहेंगे नारायण खर्चे जी का, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे लिख रहे हैं, साथ ही साथ कार्तिक खर्चे, परी खर्चे भी हैं, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, फिल्म का नाम भी लिखकर भेजा है आपने और गाने के बोल भी लिखकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैसेज हमने आपका ले लिया है, अब जो लंबी तादाद जो लिस्ट है आपकी वो शायद कम हो जाए, फिलहाल चलते हैं और सुनते हैं आप ही लोगों की पसंद से ये गीत।

और फिल्म संगीत में कुछ गाने बहुत ही लंबे हैं, जिससे आप लोगों के सभी के गाने प्ले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिखने वाला हमारा श्रोता लिख रहे हैं, पूजा जी प्लीज़ कोई भी गीत संगमित्रा श्रोता संघ से लिख रहे हैं, वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमान से, जयराम सिंगणकर, निशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, लिख रहे हैं हमारे श्रोता, किनका नाम है ये जरूर लेना चाहेंगे, लेकिन वही होता है भीड़ में कभी कभी नाम भी इधर उधर हो जाते हैं। बागवान मंजिल छोटी बलिया से, न्यू आश आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ बागवान और छतरी टोल तेघरा बाज़ार बेगूसराय से, अदीब अफसरी, इस्माइल आज़ाद, नन्हे राजा, फैयज फिरोज़ आलम, भाई साहब, भाई शाह आलम, वली आलम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज हम तक तो पहुंचाने के लिए। लिख रहे हैं हमारे अगला श्रोता, जिनके मैसेज को लेना चाहेंगे, लिखने वाले हमारे श्रोता का नाम मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक वंश बत्ता, कनेरा मोहल्ला पटियाला से, ये मैसेज हम तक आपने पहुँचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है, नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, बीच शहर महाराष्ट्र से, इन्होंने हम तक ये मैसेज पहुँचाई है। साथ ही साथ फिल्म संगीत की फरमाइश भी हम तक पहुँचाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज लेना चाहेंगे, आदरणीय बहन जी प्रणाम, वंदना फिल्म का सॉन्ग सुनना चाहते हैं, अकोला से विजय वडालकर, लता वडालकर और अंजिक्य वडालकर लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, इनके मैसेज को ओपन होने में टाइम लग रहा है। लिख रहे हैं MLB रोड ग्वालियर से, सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, SK पप्पी जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक तो पहुंचाई है, शुक्रिया आपका। साथ ही साथ सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु जी लिख रहे हैं, फिल्म संगीत की फरमाइश भी लिखकर भेजी है, इन्होंने नाभा ज़िला पटियाला पंजाब से ये मैसेज पहुँचाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिल मोहन जी को ने पहाड़गंज मुल्तानी ढाडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक लिख रहे हैं, नमस्कार पूजा भारती जी, कार्यक्रम का आरंभ आपने एक ऐसे गीत से किया जो हमें सीख दे रहा था जीवन के उन चुनौतियों से लड़ने की, जहाँ थोड़ा सा संघर्ष आते ही हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। बिल्कुल सही कहा अनिल मोहन जी आपने, और वाकई में जब आप ऐसे मैसेज हम तक तो पहुँचाते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मजहर अली अंसारी, राज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरपुर गंज गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ऐसा करते हैं एक और गीत सुनते हैं और फिर आपके मैसेज को लेते हैं, राजेश वर्मा जी का मैसेज अब आने वाला ले ही लेते हैं फिलहाल तो आपके नाम को। राजेश कुमार जी लिख रहे हैं कहाँ से, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से, राज पैलेस मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकाल स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पिहू स्वर्णकार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज पहुंचाने के लिए। फिलहाल आप लोगों की पसंद से सुनते हैं ये गीत।

जल्दी से आपके नाम लेना चाहेंगे हमारे श्रोता जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर लिख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास रश्मि पांड्या जी का मैसेज आया है, एक मसाला चाय पियोगे? बिल्कुल पियूंगी रश्मि जी, और बहुत मन कर रहा है। रश्मि झरना लिख रहे हैं राजकोट गुजरात से, और वाकई में इस खूबसूरत मैसेज का मैं क्या ही कहूँ। फिलहाल आप सभी के नाम जल्दी से लेना चाहती हूँ। भारद्वाज खोरवाल लिख रहे हैं फिल्म संगीत के फरमाइश के साथ, उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश ने लिखा ये मैसेज। अगला मैसेज अश्विनी चुग जी का आया है, नमस्कार जी, पंचकुला से आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ हमारे पास मैसेज रियासत हुसैन सिद्दीकी जी का आया है, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मजहर जी का आया है, मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, अस्तुपुरा ज़िला मऊ से, बहादुरगंज गाज़ीपुर से, आज़ाद अली अनवर, रिया, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अगला मैसेज लेंगे फारूक अली खान जी का,

लिखने वाले हमारा श्रोता किसी भी गीत में शामिल करें। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फरजान, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ उषा मोहन जी का आया है, पूजा भारती जी हम बिल्कुल आपके करीब से ही आपको सुन रहे हैं और नाइट शिफ्ट में अपने कार्य को भी सुचारू रूप से कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी सही है कि किसी भी कार्य में यदि मनपसंद गीत संगीत सुनने को सुनते हुए किया जाए तो उसका अपना अलग ही आनंद होता है। आप बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी। अनिल मोहन जी, हम आपके मैसेज का लास्ट वीक भी इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी शिफ्ट होगी और आप हमें मैसेज करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत मैसेज के लिए। अगला मैसेज रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, इन्होंने जसपुर उत्तराखंड से ये मैसेज हम तक पहुँचाया है। प्रकाश वर्मा जी भी मैसेज लिख रहे हैं। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से मैसेज कर रहे हैं। फिल्म संगीत की फरमाइश भी साथ में आपने पहुँचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा लिख रहे हैं चौटाला हरियाणा से, और गाने के बोल भी लिख कर आपने हम तक तो पहुँचाई है, धन्यवाद आपका। दातार सिंह जी लिख रहे हैं, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, संगीता कंवर, दातार सिंह शेखावत, इन्होंने गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से ये मैसेज हम तक तो पहुँचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किशन सपकाल जी का मैसेज आया है। किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, सहरा सपकाल, विशाल सपकाल, शास्त्री नगर बीच शहर से ये मैसेज पहुँचाए हैं आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक तो पहुँचाई थी। वरिण खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा लिख रहे हैं, नमस्कार पूजा भारती दीदी जी, और बहुत आपको भी नमस्कार। अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, रवि कुमार राहुल रवि जी लिख रहे हैं, कस्बा बराड़ा, ज़िला अंबाला, हरियाणा से, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज लेना चाहेंगे जिनका नाम हमने नहीं लिया हो उस नाम को जरूर लेना चाहेंगे। अनिल वर्मा जी का नहीं लिया, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा, सदर बाज़ार कुरावली से ये मैसेज आपने पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और किसी का नाम अगर रह गया हो तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन एक कोशिश रही है। किशन सपकाल जी का मैसेज हमने ले लिया है और किन का नहीं लिया है ये देखना चाहेंगे। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीव सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदेव सिंह लिख रहे हैं, गांव लोहरगढ़ ठाकुरवाला, ज़िला फिरोजपुर, पंजाब से, बहुत बहुत धन्यवाद। रियासत हुसैन सिद्दीकी जी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, जसपुर उत्तराखंड से मैसेज हम तक आपने पहुँचाया, आप सभी का इतना तहे दिल से शुक्रिया मैसेज हम तक पहुँचाने के लिए। साथ ही साथ बोधराज खोरवाल जी, आपके मैसेज को शायद हमने ले लिया है, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, इन्होंने उत्तम नगर दिल्ली से ये मैसेज पहुँचाया, बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। फिलहाल ये कहेंगे कार्यक्रम में अब समय समाप्त हो रहा है, उम्मीद है आप सभी को कार्यक्रम पसंद आया होगा, सभी के नाम हमने शामिल किए हैं, हो सकता है गाने शामिल ना किए हों। फिलहाल मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 12 बजने को है। अब समाचार होंगे। समाचारों के बाद 12:10 पर इन मीटरों पर

हमारे प्रसारण संपन्न होंगे। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी है। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की और रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित व्यापार सहयोग पर चर्चा की। दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के मंदिर और सामुदायिक भवन पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की घटना के बाद करीब 30 धार्मिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने कहा कि पूजा स्थल शांति, प्रार्थना और सामुदायिक एकता के प्रतीक हैं। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के अध्यक्ष संजय गोविंद ने कहा कि लाउडियम और आसपास के क्षेत्रों में लोग पीढ़ियों से मिलजुल कर रहते आए हैं और ये एकता आगे भी कायम रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

0: for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. Two Indian wrestlers advanced to the semifinals of the Asian Under-17 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam yesterday. In the men's 45kg Greco-Roman category, Sachin Kalappa Shirole defeated Sameen Ahmed Al-Obaid of Jordan 11-4, while in the 110kg category. That is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 12:10 हो चुके हैं, समय है कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कलाकार विनोद राठौर के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं उन महान हस्तियों को जिन्होंने हमारे जीवन को अपनी कलाकारी से खूबसूरत बना दिया। जी हां, उन्हीं में से आज हम बात करेंगे विनोद राठौर के बारे में। विनोद राठौर संगीत की दुनिया के उन चुनिंदा गायकों के शुमार में शामिल हैं जिन्होंने अपनी सुरों की जादूगरी और रूमानी आवाज़ से एक पीढ़ी को प्रभावित किया। गायक आज भी शाहरुख खान की बाजीगर से लेकर संजय दत्त की मुन्ना भाई MBBS तक में गाए गए गानों से दर्शकों के दिलों में राज करते हैं।

विनोद कुमार राठौर, विनोद राठौर एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जिनका संगीत से गहरा लगाव था। गायक का जन्म 13 सितंबर 1962 को मुंबई में हुआ था और उनके पिता का नाम चतुर्भुज राठौर था, जो शास्त्रीय संगीतकार थे। परिवार के माहौल में विनोद के अंदर बचपन से ही संगीत के प्रति एक अलग ही जुनून पैदा करने का काम किया, और यही एक कारण है कि राठौर साहब खींचे चले आए अपने संगीत की दुनिया में।

1986 का साल था जब विनोद राठौड़ ने आवाज़ को प्रसिद्ध संगीत निर्देशक उषा खन्ना के एक कैसेट में सुना गया। उनकी आवाज़ सुनकर म्यूज़िक डायरेक्टर ने गायक के दो यार फिल्म में कव्वाली मेरे दिल में अंधेरा कोई शमा जला दे गाने का मौका दिया। इसके बाद गायक ने करीबन 40 गाने उषा खन्ना के लिए गाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में अजय स्वामी और सुरेंद्र कोहरी जैसे संगीतकारों के लिए भी गाने गाए। इन सब गानों की वजह से विनोद राठौड़ को संगीत की दुनिया में पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। कुमार शानू और उदित नारायण जैसे दिग्गज गायकों के दौर में विनोद राठौड़ ने एक अलग मिसाल पेश की। सिंगर विनोद के संघर्षों ने उन्हें सुरों की बुलंदी तक पहुंचा दिया।

गायक विनोद ने अपने शुरुआती करियर में कई गाने गाए, लेकिन उन्हें अगर सबसे ज़्यादा किसी गाने से पहचान मिली तो वो है वो गाना रोमियो नाम मेरा। सिंगर ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें ऑफ़र किया था, जो रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म से है। इस गाने के बाद अभिनेता संगीत की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन गए थे। इसके एक लाइन को ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि गीतों के बोल और इनकी आवाज़ दोनों का एक तालमेल कुछ अलग सा ही है।

विनोद राठौर ने जब अपने संगीत करियर की शुरुआत की उस समय कुमार सानू, उदित नारायण जैसे दिग्गज गायक अपने सुरों की जादूगरी बिखेर रहे थे। उनका वर्चस्व उस वक्त संगीत के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन विनोद राठौर ने अपनी रोमानी आवाज़ से दर्शकों को कायल बना दिया और धीरे धीरे वो भी एक जाने माने गायकों की सूची में शामिल हो गए। विनोद की आवाज़ में गाया एक छम्मा छम्मा गाने में मशहूर खलनायक दिवंगत अमरीश पुरी ने भी डांस किया था, जो बहुत मशहूर हुआ था। आइए सुनते हैं इस गीत को।

जी हाँ, विनोद राठौर के बारे में बात कर रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। मैं हूँ पूजा भारती। विनोद राठौर ने अपने करियर में सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि नेपाली, अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, राजस्थानी, भोजपुरी और फारसी जैसे विभिन्न भाषाओं में 3,500 से भी अधिक गाने गाए हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और सब में वो पहचान देना, वो कशिश देना हर एक अलग लैंग्वेज में कितनी बड़ी बात होती है। हालांकि गायक ने लोगों के बीच में कुछ चुनिंदा गानों के कारण कुछ ज़्यादा ही मशहूर हो गए थे, जैसे कि वो गाने, उन गानों को सोचिए, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, या फिर कोई ना कोई चाहिए, या फिर आँखियों से गोली मारे, या फिर अंग से अंग लगाना, या फिर वो गाना नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, बहुत हिट हुआ था ये। और ये वाकई में इन गीतों को अगर हम लोग सोचें तो आज भी तो सारे के सारे गाने अच्छे से याद है। क्यों? क्योंकि उसकी खूबसूरती ही कुछ अलग है।

विनोद राठौर, इतना खूबसूरत गीत संगीत सजीव दर्शन के चाचा संगीतकार गायक रूप कुमार राठौर के भाई और संगीत निर्देशक श्रवण राठौर के भी भाई हैं। इनके अलावा आपको बताते चलें कि गायक ने लगभग 2019 से कोई भी गीत नहीं गाया। उन्होंने संगीत की दुनिया से अब दूरी बना ली है। एक इंटरव्यू में विनोद राठौर ने फिल्म इंडस्ट्री से अलग होने के लिए अपने फैसले के बारे में बात की। उनकी गहरी निराश भरे लहजे थे। क्यों, उनसे जब पूछा गया कि आप मुझे हाल ही में आई किसी ऐसी बॉलीवुड फिल्म में का नाम बता सकते हैं जिसके गाने आप दिन भर लगातार गुनगुना सकते हैं, तब उन्होंने कहा, नहीं बता सकते, इसलिए मैंने बॉलीवुड को छोड़ दिया है। आजकल बन रहे गाने संगीत की गुणवत्ता मुझे पसंद नहीं आती, मुझे नहीं भाते। और अपने अपने तरीके और अपने अपनी सोच गानों को लेकर हर किसी की होती है। राठौर साहब को अपने गाने और उस समय के गाने बेहद पसंद थे। गीतों में बदलाव आया और समय के साथ इन्हीं बदलावों को लेकर कुछ आगे बढ़े और कुछ वहीं ठहर गए। उन्हीं में से राठौर साहब हैं। आज के शुरू के सफ़रनामा में बस इतना ही। मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आप सुनिए राठौर साहब के स्वर में एक और गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुरू का सफरनामा। आप सुन रहे हैं EIR लाइव न्यूज़ 24x7। 1 बजने को है, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की और रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित व्यापार सहयोग पर चर्चा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली है। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के मंदिर और सामुदायिक भवन पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की घटना के बाद करीब 30 धार्मिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने कहा कि पूजा स्थल शांति, प्रार्थना और सामुदायिक एकता के प्रतीक हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के युद्ध विराम विस्तार को लेकर समझौते के मसौदे पर सहमति बनी है। हालांकि इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान हार्मुज जल डमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए बिना किसी रोक टोक के खोल देगा और वहां बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को 30 दिनों के भीतर हटाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार।

जी हाँ, मुझे मिल गया बहाना तेरे दीद का। मुझे भी तो एक मौका मिल गया आपसे बात करने का। गीतों का वो दौर जब गीत के बोल आपके आम जिंदगी को भी छू जाते थे, और यही कारण है कि उस वक्त के गीत आज भी तो हमें याद हैं। और गीतों का वो सफ़र जब शुरू होता है तो कहाँ ही रुकता है, क्योंकि उस ज़माने में एक एक फिल्म में तकरीबन 6-6, 7-7 गीत होते थे, वो भी सारे के सारे हिट, यानी बहुत ही खूबसूरत।

और जब गोल्डन एरा की बात हो रही है तो वो गाना कैसे हम भूल सकते हैं जब आवाज़ देकर कह रहा है कोई कि हमें तो बुला लो। जी हाँ, वो गीत, उसमें ऐसा कशिश, ऐसी मोहब्बत, गीत के हर एक बोल ने अपने हर एक शब्द से आवाज़ लगाई है।

आवाज़ देकर जहाँ पर बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है हमें बुला लो, वहीं पर कहीं ये भी कहा जा रहा है कि चलो मैं हार गई हूँ, अब मान जाओ। जी हाँ, दोनों में मोहब्बत को रोका ही तो जा रहा है। मोहब्बत भरे नगमे आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे, फिल्म संगीत गोल्डन एरा के, पूजा भारती के साथ।

गीतों का वो समय भी रहा जब हार मान गए, लेकिन कहीं कहीं ये भी रहा कि जब दूरी हो जाती है तब वो याद, वो प्यार, वो मोहब्बत, सब कुछ इस तरह लगता है जैसे सब झूठ तो नहीं। और ये लगने लग जाता है कि मुझे शायद भुला दिया गया है, लेकिन मोहब्बत कभी भी किसी के दिल से जुदा नहीं हो सकता।

यूं ही तो जीवन ना जिए, यूं ही तो जीवन ना जिया, जिया तो बस तुम्हारे प्यार में पिया। प्यार यूं ही जीवन में बना रहे, मेरे जीवन में पिया तेरा प्यार रहे।

ठीक उसी तरीके से ऐसा लगने लग जाता है कि मोहब्बत जिससे कर रहे हैं उसके जैसा तो कोई भी नहीं। जी हाँ, मोहब्बत तो उसी से हो जाती है जो बिल्कुल अलग लगता हो, और हर एक नज़र में वो मोहब्बत, वो प्यार, वो इंसान वाकई में सबसे अलग है।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

और फिर कहा जाता है कि जहाँ मोहब्बत है वही तकरार है, और वहीं पर ऐसी उलझन भी है जहाँ पूरी दुनिया शामिल हो जाती है। तब तो मोहब्बत का कह लीजिए एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में बहुत कम लोग ही पास हो पाते हैं। लेकिन जो पास हुए, मान लीजिए सच्ची मोहब्बत है ये। मोहब्बत की दुनिया कुछ अलग ही होती है। उन्हीं दुनिया में जब गीत के झनकार गूंजते हैं तो मोहब्बत और खूबसूरत नजर आने लगते हैं।

0: यूं ही तुम्हें देखते रहें और मोहब्बत बढ़ती जाए। मोहब्बत का एक समय ऐसा भी होता है जब आँखों में, सपनों में, ख्यालों में, दुनिया में हर एक जगह वो ही नज़र आता है। मोहब्बत में डूबे हुए लोग किसी को न जानते हैं न पहचानते हैं, सिर्फ एक ही भाषा उन्हें पता होती है, मोहब्बत। और वो उन सारे मोहब्बत करने वालों के साथ होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है ये प्यार, ये मोहब्बत दिल से किस कदर जुड़ा है और दिल के कितने करीब है। इन्हीं मोहब्बत में डूबे हुए कई गीतों में एक गीत ये भी है।
1: न झटको ज़ुल्फ़ से

यूं ही कहते सुनते मोहब्बत में दिन गुजरते रहते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, टकरार होता है, और फिर देखा गया है मोहब्बत और प्रगाढ़ हो जाता है। कहते हैं कि मोहब्बत पर मौसम का अलग ही असर होता है। हर एक समय, हर एक जन्म, हर एक पल, हर एक दिन मोहब्बत, मोहब्बत और मोहब्बत, मोहब्बत के यही अफसाने, यही गाने जिन्हें हम गुनगुनाते हैं, और मोहब्बत में पड़े हुए दीवाने इन्हीं गीतों को अपना जीवन मानते हैं। मोहब्बत के ऐसे ही कई गाने, कई अफसाने हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कि मोहब्बत के इन समा को यहीं पर रोक दिया जाए। जी हाँ, गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम का अब समय संपन्न होता है। एक आखिरी गीत है आपके लिए, लेकिन मुझे पूजा भारती को इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7। 2 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बना

0: का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। ये कार्रवाई दक्षिणी ईरान पर अमेरिका के ताज़ा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया। इससे पहले अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी हमलों की निंदा की और इसे युद्ध विराम उल्लंघन करार दिया। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. Union Home Minister Amit Shah yesterday held a meeting to review preparedness

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 2:10 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक कार्यक्रम। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। नॉन स्टॉप फिल्म संगीत कार्यक्रम, खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: इसी के साथ गीत बहार फिल्म म्यूजिक नॉनस्टॉप का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया।

0: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। ये कार्रवाई दक्षिण ईरान पर अमेरिका के ताज़ा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। इससे पहले अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी हमलों की निंदा की और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन करार दिया। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week. Union Home Minister Amit Shah yesterday held a meeting to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Shah said that Narendra Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. He said, keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sports facilities are being developed in accordance with

कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। गालिब गजल के सरताज थे और हैं। उनका कलाम आज भी उतना ही ताजा लगता है जितना उनके अपने दौर में था। उनका मुहावरा और बयान आज के दौर में भी मॉडर्न लगता है, इसलिए गायकों के लिए गालिब सदाबहार हैं। वो किसी भी लिबास में सज जाते हैं। जगजीत ने उन्हें मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया।

जी हाँ, पूरा दुख और आधा चांद, बहुत ही खूबसूरत गज़ल ये अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाज़ में। गुलूकार यानी कि जो गज़ल की रचना थी वो थी परवीन शाकिर की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और गज़ल जगजीत सिंह के स्वर में।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं एक और गज़ल। कलाकार हैं शुमोना रॉय विश्वास।

0: जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: इसी के साथ गजल गीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
2: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। नाद ब्रह्म के कार्यक्रम कर्नाटक संगीत में आइए अब सुनते हैं उषा विजय कुमार का गोटू वाद्यम, राग है चारू केसी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उषा विजय कुमार का गोट्टू वादम। राग था चारू केसी। वंदे मातरम।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम यानी कार्यक्रम विवरण के बारे में जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा योगबद्ध पद्मासन। 5:30 पर स्वर रंजनी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे प्रसेनजीत रॉय का सितार पर बजाया गया राग ललित। 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं।

सुबह 7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रभाकर नारायण पाठक के भजन। 8:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे कृष्ण शर्मा का गिटार पर बजाया गया राग चारुकेशी। गांधी चर्चा का समय रहेगा सुबह 9:15, जिसमें एक वार्ता प्रसारित की जाएगी जिसका विषय होगा स्वरोजगार और खेती के महत्व पर गांधी जी के विचार। वार्ताकार होंगे गौरव कांत शर्मा। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा मिट्टी दी महक, पंजाबी कार्यक्रम, और दिन में 10:10 पर सुबह आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

0: सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11:10, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत आप सुनेंगे प्रसन्नजीत राय का सितार वादन। दोपहर 12:10 पर कार्यक्रम होगा महिला कार्यक्रम घर आंगन एक कदम बुजुर्गों की ओर। दिन में दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से, फिल्म होगी गाइड। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह को के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। वो कर्नाटक के दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भी शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन कल पणजी के गोवा में स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड्डी स्थित CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। वो केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वीं स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी बधाई दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान शिलांग में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। वो इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। कल श्री मांडविया मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ राज्य की राजधानी में 132.9 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। हांगकांग में 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन कल भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said, "The dedication to the tribal community is truly commendable." He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of the tribal communities and their empowerment. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Mr. Shah said, "Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. Keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sports facilities are being developed in accordance with the global standards. In line with this, review meetings were held in Ahmedabad regarding the progress of sports infrastructure and related projects," he said. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate COET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid al-Zaha. NTA said that admit cards for candidates

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 5:10 और 22 सेकेंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय है योग बद्ध पद्मासन।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें। यह करने के बाद इस मुद्रा में एक से दो बार सांस अंदर और बाहर लें। और अब यही क्रिया दाएं हाथ से भी दोहराएं। बहुत से लोग ये आसन उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए
जहां तक आपके हाथ जाते हैं पद्मासन में बैठे हुए, पीठ के पीछे से क्रॉस करते हुए जितनी दूरी तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक ले जाएं। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ेगा और आप इस आसन को पूरी तरह से कर पाएंगे। जिन लोगों का बद्ध पद्मासन लग चुका है, अब आप उस मुद्रा में थोड़ी देर बैठें और कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप आसन में 30 से लेकर 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे, आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं, परंतु कभी भी इस आसन को 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड से ज्यादा ना करें। 5 बार सांस लेने के बाद आप इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। अब बद्ध पद्मासन करने के लाभ के बारे में बात करें। बद्ध पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। कंधों, कलाइयों, पीठ, कोहनियों, घुटनों और टखनों में

खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। यह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और रीढ़ की नसों में रक्त परिसंचरण बढ़ाता है। पद्मासन पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और कब्ज आदि से राहत दिलाता है। पद्मासन का दैनिक अभ्यास गठिया में भी आपको फायदा देता है, लेकिन इस आसन को करने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये आसन निषेध है। जिनके घुटनों में तीव्र दर्द हो उन्हें बद्ध पद्मासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में चोट हो तो बद्ध पद्मासन ना करें। कंधों में चोट या दर्द हो तो ये आसन आपके लिए वर्जित है। और हमेशा की तरह एक सुझाव, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर ना लगाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी एक नए आसन के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय था योग बद्ध पद्मासन।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 5:20 और 15 सेकंड। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं प्रसेनजीत रॉय का सितार वादन, राग है ललित। तबले पर आपकी संगति कर रहे हैं बलजीत सिंह।